0: हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम
1: दर्शन भिक्षा दे दो दर्शन भिक्षा दे दो आगे दो
0: मनोहर मोहन के दर हरिओ थोड़ी मनोहर मोहन के दर हरिओ थोड़ी मनोहर मोहन के दर हरिओ थोड़ी मनोहर मोहन के दर हरिओ

0: उनके श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है, क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं, एकता की डोर में सबको बांधता। पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमैटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट की जब हमने बात की थी तो हमें लगा था कि अच्छा सेल्फ को मैनेज करने की बात होगी, लेकिन इस पूरी श्रृंखला में जिस तरह से हम देख रहे हैं सेल्फ कहीं बाहर की बात नहीं बल्कि अपने ही अंदर जो मैं हूं उसको पहचानने की बात थी। और अगर पिछली कड़ी को देखें तो हम सारे लेबल्स, सारे पर्दों को हटाकर, सारे बाहरी आवरणों को हटाकर खुद तक पहुंचे थे कि मेरी अपनी सही पहचान क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि फिर जहां मेरी अपनी पर पहचान हुई, कौन हूं मैं ये जाना, तो उसके बाद वैल्यूज कौन सी होंगी मेरे पास और फिर जीवन का पर्पस क्या होगा। और इस पर बातचीत करने के लिए

0: professional, to meri values kya hai? If I am a mother, to meri values kya hai? If I see myself only as an Indian, to meri values kya hai? Similarly, apne purpose ko bhi dekhe usi ke saath, right? Ab aapke itne sare labels hain. Let's say, aap ek label le, I am a mother. The purpose of life kya ban jata?
1: To take care of my children in the right way, yeah. In the right, you know, direction.
0: Yeah, to kisi bhi aap housewife ko poochhe, ki aapke jeevan ka purpose kya hai? Mere bachchon ko bada karna, unke andar achhe sanskar dalna, turan. Which is fine, very fine. Aap ek doctor se milte hain, poochhe aapke jeevan ka purpose kya hai? To turant kya answer nikal kar aayega?
1: Mera apna kaam achha karna, patients ko theek karna.
0: Which is very noble. Nobody is denying that. Lekin is this my purpose of life? Or is this the role that I am playing in life? Healing. Is this the purpose of my life? Ya is this my job, my profession, my role? Ab kai baar hum samajhte ki ye hai mera job, lekin usme main itna passionate hoon, main usko itna dil se kar raha hoon, and which is true ki main puri sincerity se kar raha hoon, to yehi mera purpose of life hai.
1: Main mission bhi bana leta hoon kai baar,
0: mere jeevan ka
1: mission,
0: yes. The whole my answer ke upar hi hamara purpose aur values depend karta. To aaj jo ek choti si hum galti kar baithe wo ye ki apne roles ko, apne rishton ko, apne zimmedariyon ko hi apna purpose of life bana liya. Jo job mein hum the wohi mera purpose of life ban gaya. Ek professional ko dekh lo, what's your purpose of life? To become so and so in the corporate ladder, reach here and there. That can be my goal. Let me not mix ki mera goal kya hai aur mera purpose of life kya hai, kyunki aapka profession bhi time to time change ho sakta hai, lekin purpose of life kiska hai? Mera purpose of life kya hai? That's very important. To fir humne kya kiya, jo hum, I hope everyone did it with us yesterday, ki apne labels ko jaise jaise hum side par rakhte gaye, to we came to the final answer ki main kaun hu. Ye sab kuch mera hai, yahan tak ki ye sharir bhi, ye mera hai. Main hu wo shakti, energy, consciousness jo isko chalati hai, jo ye sare roles play karti hai, jo ye sare rishte निभाती है. लेकिन मैं, आई कौन है? वो आई का आंसर आ गया. तो जो हमने तीन क्वेश्चंस देखे थे कि जो अपने जीवन में बहुत फोकस्ड होकर चलेंगे, उनके तीन क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, हु एम आई, वेयर एम आई एंड व्हाई एम आई हियर. दीज थ्री आंसर्स वी वांट. तो हु एम आई आया कि आई एम दिस प्योर बींग एनर्जी. जैसे हम ये कॉन्शियसनेस में बैठते कि मैं ये वो चैतन्य शक्ति हूं, अगर रोज इसको थोड़ा बार बार करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, तो यू विल रियलाइज कि जो व्हाई एम आई हियर, यू नो, एंड वेयर एम आई, तो जो जब हु एम आई आता, तो उसका नेचुरल इम्पल्स ये आता कि थॉट क्रिएट करना, कर्म में आना और लोगों के साथ एनर्जी एक्सचेंज करना, दिस इज वेयर आई एम इन द फील्ड ऑफ रिलेशनशिप्स. मेरा इस सृष्टि पर शरीर लेकर आकर ये पर्पस क्या है, मैं क्यों हूं? टू कम इन टू रिलेशनशिप और टू कम इन टू एक्शन विद अदर सोल्स. आत्मा का नेचुरल इम्पल्स है एनर्जी लेना,
1: टू इंटरैक्ट.
0: टू इंटरैक्ट, ये नेचुरल इम्पल्स है. लेकिन वो मुझे तभी समझ में आता जब मुझे याद आता कि हु एम आई एंड वेयर एम आई. आई एम इन दिस फील्ड ऑफ रिलेशनशिप्स एंड व्हाई एम आई हियर. कि ये जो मेरा नेचुरल सेल्फ पता चला, तो मेरी जो क्वालिटीज है, मेरी जो वैल्यूज हैं, उनको औरों के साथ शेयर करना, ये मेरा नेचुरल संस्कार बन जाता है. इफ आई रिमेम्बर दैट आई एम अ कॉन्शियंट बीइंग, देन टू गिव लव टू पीपल विल बिकम माय नेचुरल. दैट्स व्हाई आई एम हियर. लेकिन जब वो आंसर नहीं हो रहा,
1: पर्पस ऑफ माय लाइफ बिकम्स लाइक टू गिव लव टू पीपल,
0: व्हाट डू यू थिंक?
1: यस, दैट मेक्स सेंस.
0: व्हाट डू यू थिंक? नाउ थिंक अबाउट इट, बिकॉज अ पर्पस ऑफ लाइफ किसका ढूंढना है?
1: The being.
0: Who am I? I am a human being. I am not a human doing. Abhi tak purpose of life kiska dhoond rahe the? Jo doing tha. Mujhe kya karna hai, kya karna hai, kya karna hai? Kyunki who am I? Mother. To purpose of life usse connected. Who am I? Doctor. Purpose of life usse connected. Who am I? A pure being. Purpose of life
1: usse connected.
0: Usse connected. Isiliye jab tak wo who am I answer nahi

0: रहा था द पर्पज ऑफ लाइफ ढूंढना वॉज इम्पॉसिबल. सो नाउ वेन आई सिट बैक, सो इट डजेंट मीन दैट आई एम नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस मेडिसिन, या इट डजेंट मीन कि मैं अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखने वाली.
1: इतना ईजी हो जाता है पता है पर्पज ऑफ लाइफ को समझ पाना फिर. और हम सारा टाइम ढूंढते रहते हैं, उसी में इन्वॉल्व रहते हैं और हर चीज में उसी को ढूंढ रहे होते हैं कि ये मेरा पर्पस है, ये मेरा पर्पस है. इन द वे यू सेड वेरी ट्रू, कितनी बार हम अपने प्रोफेशंस बदल रहे होते हैं, कितनी बार
0: हमारी
1: बार बार बदलता जाएगा.
0: नहीं, और कई बार लगता है ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है, मैं अपना जॉब बदल कर देखता हूँ, आई विल फाइंड इट देयर. इट वॉन्ट कम टिल आई रिमेम्बर पर्पस ऑफ लाइफ किसका. आपको याद हो जब हम बचपन में खेलते हैं आपस में तो हम अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, यू नो, मैं ये बनूंगा, आप ये बनोगे, एंड ऑल दैट. वी ड्रेस अप इन डिफरेंट डिफरेंट वेज, और हमें वो खेल खेलना अच्छा लगता है. लेकिन खेल खेलते खेलते हमें ये तो याद रहता है ना
1: कि हम कौन हैं,
0: और ये हमारा खेल है. और हमें ये भी पता होता है कि थोड़ी देर के बाद ये सारे जो हमने ओढ़े हैं अपने ऊपर, ये सारे उतर जाएंगे. यही खेल हम अपने जीवन की यात्रा में खेलते हैं. जैसे जैसे जैसे वी आर ग्रोइंग, हम एक एक लेबल अपने ऊपर ओढ़ते जा रहे हैं, विच इज पार्ट ऑफ द जर्नी. लेकिन सिर्फ ये था कि बचपन में ये याद था कि मैं कौन हूं और ये मैंने सारा कुछ ओढ़ा है. लेकिन अब क्या हो गया, जो मैं ओढ़ा है वही मैं हो गया, और उसको ही हमने मैं ये हूं. तो सारा कुछ जो मेरे जीवन में कनेक्टेड था अब वो उससे हो गया. एंड देन जो हमने पहले डिस्कस किया, जो हम कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि फॉर माई फैमिली आई हैव टू डू दिस जॉब. Why? Because my values and my purpose of life was first taking care of family. लेकिन जहां मुझे समझ में आया कि मैं कौन हूं, तो फिर मुझे अपना पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढना बहुत इजी हो जाएगा. तो जब हमें परमात्मा ने आकर ये स्मृति दिलाई, ये सब कुछ आपका है, आप एक चैतन्य शक्ति, और वो भी कैसे, प्योर लवफुल. क्योंकि परमात्मा ने आकर हमें अपनी ही पर्सनालिटी, जो कि हमें पता थी लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल गए थे, उसकी स्मृति में नहीं थे, तो परमात्मा ने, शिव बाबा ने आकर हमें याद दिलाया, प्योर बींग, लवफुल बींग, हैप्पी बींग, ब्लिसफुल बींग, पावरफुल, शक्ति स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप. जब आप एक मदर हैं तो पर्पस ऑफ लाइफ था बच्चों को बड़ा करना. जब आप एक पीसफुल बींग हैं तो पर्पस ऑफ लाइफ
1: टू क्रिएट पीस. ओह यस,
0: सिंपल. जब आप एक हैप्पी ब्लिसफुल बींग हैं, पर्पस ऑफ लाइफ
1: टू क्रिएट दैट हैप्पीनेस.
0: आंसर चेंजेस. नाउ आई एम अ पीसफुल बींग playing the role of a mother. The sentence change ho gaya.
1: It becomes so easy to create happiness then, you know, playing mother also.
0: Yeah.
1: पहले क्योंकि वो
0: सारा कुछ चेंज हो जाएगा आपका.
1: क्योंकि पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को देखनी इतनी ज्यादा है कि बच्चे ने दूध पिया या नहीं पिया, बच्चे ने होमवर्क किया या नहीं है, ये तो याद ही नहीं रहता कि हैप्पीनेस भी क्रिएट करनी है. टेंशन इस बात की होती है कि वो दूध पी ले या वो खाना खा ले या वो अपना होमवर्क कर ले, एंड उसमें हम कितना एंग्री और कितनी बार कितने परेशान.
0: अब ये जो हम एंगर क्रिएट कर देते, दर्द क्रिएट करते, हर्ट क्रिएट करते, ये सब करते करते हम क्या भूल गए, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या था. और इसलिए वो बार बार बीच में वो क्वेश्चन ट्रबल करता, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ. क्योंकि सब कुछ करते हुए मैं अपना पर्पस ऑफ लाइफ अचीव नहीं कर रहा था. क्योंकि मैं जो हूँ उसको मैं भूला हुआ हूँ ना, मैं खुद अपने को ही भूला हुआ हूँ, और मैंने वो जो ओढ़ लिया अपने अराउंड बॉडी, फिर रिलेशनशिप, प्रोफेशन और लेबल्स, तो वो सबको ओढ़कर उसी को बचाने में और उसी को प्रोटेक्ट करने में मैंने जो अपने आप को कहा कि इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस और इतने सारे एडजस्टमेंट्स हम करते गए, और अंदर ही अंदर मैं जो था वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट होता गया. एंड दैट्स व्हाई द बिगेस्ट प्रॉब्लम एवरीबडी हैज टुडे इज डिससैटिस्फैक्शन. दे लुकिंग फॉर सैटिस्फैक्शन. व्हाई आर वी लुकिंग फॉर सैटिस्फैक्शन?
1: इफ आई एम डूइंग द रोल, इफ आई एम डूइंग द कैरेक्टर,
0: Why am I not satisfied? अपना तो हर एक चीज कर रहे हैं ना, अच्छी तरह से निभा रहे हैं, संतुष्टता क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअली मैं जो हूं, आई एम नॉट बींग एबल टू एक्सपीरियंस दैट, आई एम नॉट बींग एबल टू एक्सप्रेस दैट. तो अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा, यू नो, जैसे लेट्स लुक एट इट लाइक अ लिटिल गेम, कि अंदर कोई है जो बंद है, ठीक है, ऊपर से किसी ने सारा उसको ढक लिया, तो जो अंदर वाला है वो तो अंदर बिल्कुल अपने आप को कैसा फील कर रहा है, सेल्फ्लोकेटेड, कि मैं जो हूं मैं अपने आप को
1: एक्सप्रेस
0: नहीं कर पा रहा, मैं सारा दिन इन्हीं का

0: ध्यान रख रहा हूँ, तो फिर मेरे अंदर वो घुटन होती है कि मैं असंतुष्ट हूँ, मैं डिससैटिस्फाइड हूँ। सब कुछ कर लिया जीवन में, प्राप्त भी कर लिए वो सारे गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ बन गए, बच्चे भी वेल सेटल्ड हो गए, प्रॉपर्टी भी सारी है, क्या चीज नहीं है आपके पास? सैटिस्फैक्शन। कॉमन आंसर है आज, सैटिस्फैक्शन अंदर वो एक वैक्यूम है। क्यों? ये सब डूइंग पार्ट सारा कर लिया। क्यों वैक्यूम है? क्योंकि पूरी जीवन कैसे बिता रहे हैं, हु एम आई, ये लेबर, तो पर्पज ऑफ लाइफ क्या समझा, ये करना, वैल्यूज क्या समझे, इसका ध्यान रखना, इसको सेफ रखना। मैं निग्लेक्ट हो गया पूरी तरह से, तो मेरे अपने ही जीवन की यात्रा में अपनी वैल्यूज और अपना पर्पज नहीं एक्सपीरियंस किया, तो संतुष्टता संतुष्टता कहाँ से आएगी?
1: नहीं आ सकती।
0: आई विल फील सफोकेटेड
1: एंड यू आर ओवर फीलिंग दैट। यस,
0: अब हम गुस्सा कर रहे हैं, जस्टिफिकेशंस भी दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बात हमें तकलीफ तो देती है, बिकॉज हु एम आई इज अ पीसफुल बीइंग। तो जैसे ही
1: ओ, हमने अपने साथ ही कितना अन्याय किया है,
0: क्योंकि हम अपने आप को जानते नहीं थे इसलिए, तो न जानने के कारण हम बाहर ही ढूंढते रह गए सारा कुछ, और हमने सोचा कि पता नहीं क्या होगा मेरा।
1: हम अदरवाइज कितने अच्छे हैं, मतलब अब देखें
0: सारे बहुत अच्छे हैं,
1: इसलिए कि हमारे पास जो जो जिम्मेदारी थी, जो जो हमने अपना पर्पस माना, जो जो हमने देखा कि हम ये चीजें हैं, लेबल्स को समझा, तो वो तो हमने अच्छी तरह से निभाया ही,
0: लेकिन निभाते हुए अपना ध्यान नहीं रखा। कल से भी हमने वही निभाना है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि मेरा रोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो सारी चेंज हो जाएंगे, बट सिर्फ पर्पज ऑफ लाइफ होगा टू क्रिएट हैप्पीनेस, टू क्रिएट लव, क्रिएट नॉट टेक, अगेन
1: क्रिएट।
0: अभी क्या था, क्योंकि मैंने अपने को नहीं पहचाना, तो मैं अपनी वो वैल्यूज और पर्पज कहाँ ढूंढ रहा था, चाहिए तो था मुझे, क्योंकि दैट्स हु एम आई, लेकिन मैं उसको फिर कहाँ ढूंढ रहा था।
1: मेरा बच्चा अच्छा होमवर्क कर ले तो मेरे को खुशी होगी, उसके अच्छे मार्क्स आ जाए तो होगी,
0: तो क्योंकि मैंने अपने पर्पज ऑफ लाइफ डूइंग में डाल दिया कि कुछ करने से मैं अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करूंगा, तो मैंने सोचा वो लक्ष्य प्राप्त करने से मुझे खुशी मिलेगी। क्योंकि फाइनली एट द एंड ऑफ द डे क्या चाहिए?
1: खुशी,
0: संतुष्टता, शांति। कहां ढूंढ रहे हैं कि ये पूरा होगा लक्ष्य तो मुझे मिलेगा, ये लक्ष्य को मैं प्राप्त कर लूंगा तो मिलेगा। क्योंकि वन थिंग इज वेरी क्लियर कि जब हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तभी संतुष्टता होती है, नहीं तो देयर विल ऑलवेज बी अ कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन हमने लक्ष्य क्योंकि बाहर बना दिए, तो फिर हम खुशी को भी कहां ढूंढने लगे?
1: बाहर। इनफैक्ट वही, क्योंकि पहचान ही नहीं थी, पहचान ही जिसको माना उसी से जुड़ा हुआ तो लक्ष्य बनाया। और हम अमेजिंग, यस वी बीन टॉकिंग अबाउट, हम ये बार बार कहते हैं कि मैंने अचीव तो कर लिया, लेकिन फिर एक अचीवमेंट के बाद इसीलिए हम दूसरे अचीवमेंट की तरफ भागते,
0: बिकॉज खुशी तो मिली नहीं थी ना।
1: तब हम ये कहते हैं कि हम तो भागते ही रहेंगे फिर इस चक्कर में।
0: तो अब क्या हुआ, एक कॉन्शियसनेस शिफ्ट से कि मैं ये सब नहीं, मैं आत्मा हूं, मेरा पर्पज ऑफ लाइफ सिंपल हो गया, एंड माय पर्पज इन लाइफ इज टू एक्सपीरियंस माय क्वालिटीज एंड टू एक्सप्रेस देम। शांति, प्यार, पवित्रता, इसका अनुभव करना, और अनुभव कब होगा, जब हम उनको अपने इंटरैक्शंस में एक्सपीरियंस कर रहे थे। अब हम ना अनुभव करते हैं ना उनको हम एक्सप्रेस करते हैं, हम एक्चुअली उनकी डिमांड करते हैं। मुझे शांति दो, मुझे प्यार दो, मुझे रिस्पेक्ट दो, मिल नहीं रहा, अगेन क्वेश्चन, मैं यह क्या कर रहा हूं? सो नाउ द ट्रांजैक्शन साइड हैज टू चेंज, ऐसा नहीं ऐसा, एंड नाउ लेट्स ट्राई एंड पुट दिस एज द पर्पज ऑफ माई लाइफ, पर्पज ऑफ माई लाइफ टू बी हैप्पी एंड देन प्ले माई रोल्स, पर्पज ऑफ माई लाइफ बी पीसफुल देन प्ले माई रोल्स,
1: इट्स माई कोर वैल्यू, इट्स माई कोर वैल्यू।
0: अब अपनी वैल्यूज की लिस्ट निकालिए, जब हमने पहले लेबल के आधार से वैल्यूज की लिस्ट निकाली तो निकली पावर, पोजिशन, फैमिली, ये सब वैल्यूज की लिस्ट, आई केयर फॉर देम। लेकिन जब मुझे ये समझ में आता कि मैं तो चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, तो आत्मा की वैल्यूज की लिस्ट क्या निकलेगी?
1: पीस,
0: हैप्पीनेस, लव। अब आने दो सिचुएशन आपके सामने, अब प्रायोरिटाइज करना।
1: आई कैन एक्चुअली जस्ट विजुअलाइज, यू नो, कि अब अगर बच्चे को पढ़ाना है या बच्चे ने खाना खाया या नहीं खाया, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ अब अगर हैप्पीनेस क्रिएट करना है, लव क्रिएट करना है।

0: है वो क्रिएट करके अगर मैं खिलाती हूँ,
1: क्रिएट करते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्ले करना है, तो सारा जीवन जीने का तरीका चेंज हो जाएगा.
0: एंड इन फैक्ट इट विल बिकम मच इजियर टू डू ऑल दीज थिंग्स यू नो.
1: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि सब कुछ करते हुए भी अंदर से कैसा फील करेंगे.
0: बहुत अच्छा. और इनफैक्ट हमारी एनर्जी उतनी वेस्ट नहीं होगी, बिकॉज हमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करना पड़ रहा होगा.
1: एंड फॉर जो चीजें हम अनुभव करना चाहते हैं हम उनको बाहर नहीं ढूंढेंगे. एंड वी विल बी वेरी क्लियर कि मेरे जीवन का पर्पज है अपने को पहचान दिया, अब उसको हर संबंध में, हर रोल में, हर प्रोफेशन में. आई एम अ डॉक्टर, हीलिंग इज माई प्रोफेशन, लेकिन पर्पज ऑफ लाइफ
0: लव,
1: लव और हैप्पीनेस के साथ वो करना. हॉस्पिटल गए, बहुत सारे मरीजों को ठीक तो कर दिया, लेकिन इन द प्रोसेस कई बार गुस्सा क्रिएट किया, कई बार दर्द क्रिएट किया, किसी और को डांट दिया, ये किया, तो आई विल नॉट फील कंटेंटेड इवन आफ्टर हीलिंग सो मेनी पीपल.
0: उस वक्त जब वो सर्जरी करके दैट मोमेंटरली जो हैप्पीनेस है वो डेफिनेटली
1: वो अचीवमेंट है. अचीवमेंट है विच इज वेरी गुड. मैंने एक टास्क लिया, एक जिम्मेवारी उठाई, वो अचीव कर लिया, वेरी नाइस. लेकिन करते हुए एक्सपीरियंस क्या किया, एक्सप्रेस क्या किया, इस पर अब ध्यान रखना शुरू करना है कि एनर्जी कौन सी है. क्योंकि माई पर्पज ऑफ लाइफ इज द बींग, उसका पर्पज ऑफ लाइफ नॉट द डूइंग. बस वो छोटी सी एक जो कहे ना कंफ्यूजन जो हो गई, उससे हर स्टेप पर गलती होती गई. हर स्टेप पर. इसीलिए परमात्मा ने आकर कहा सिर्फ एक छोटी सी भूल कि मैं आत्मा हूं, ये भूल गया, और मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, और शरीर से जुड़े हुए जो सारे लेबल्स थे, इस एक विस्मृति से, इस एक भूल से एवरीथिंग वेंट all over wrong. Today all our anger, stress, pain, everything is only because of this one illusion. And that's why one correction, bahut mehnat nahi hai gusse ko khatam karna, isko no one correction.
0: Actually wo wahi baat hai na ki jaise hame ye kahe ki hame ye cheeze hatani hai wo bahut mushkil ho jata hai, lekin agar ye thought create hona hai ki ye mere jeevan ka purpose hai. You know, to create happiness.
1: Simple है. मेरे जीवन का पर्पज क्या, खुश रहना. खुशी चाहिए नहीं. अभी तक क्या था जीवन में, क्या चाहिए, खुशी चाहिए, खुश रहना. और फिर खुश रहकर क्या करना, ऑटोमेटिकली औरों को वो तो मुझसे ट्रांसमिट होती जाएगी. टुमारो लेट्स गो बैक टू आर ऑफिस
0: खुश खुश.
1: Yeah. In this purpose, very clearly written here, purpose of life, to be happy, to be peaceful and do the work. Answer yourself in the evening. आज का दिन कैसा बीता, और कंटेंटमेंट कहाँ ढूंढ रहे हैं बाहर.
0: पर्पस लेकर अगर जाएंगे तो हम कर भी लेंगे,
1: कर भी लेंगे, क्योंकि जो भी पर्पस हम उठाते हैं उसको हम कर लेते हैं. सिर्फ वो फिल इन द ब्लैंक पर ही अगर गलत आंसर लिख दिया था तो फिर उसी के ऊपर सारा फोकस था. तो पर्पस ऑफ लाइफ टुमारो मॉर्निंग, राइट फ्रॉम सुबह जब अपने बच्चों को उठाना है,
0: हैप्पीनेस से उठाना है.
1: No, that's not challenging. That's the purpose of your life. Purpose of life situation dependent तो नहीं होता. लोग अपना purpose achieve करने के लिए बड़े से बड़े challenges को cross करते हैं. इसलिए purpose of life बहुत important. ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि मैं कौन हूँ. मैं आत्मा हूँ, तो मेरा लक्ष्य क्या हो सकता है, मेरे से ही तो जुड़ा हुआ हो सकता है,
0: मेरी वैल्यूज को एक्सप्रेस करना. यस.
1: तो कल से बस ये वही काम करना है सारा जो पहले कर रहे थे. नथिंग एल्स इज चेंजिंग आउटसाइड, फोकस इज चेंजिंग इनसाइड.
0: मुझे लगता है सचिन शिवानी इसमें काम सिर्फ ये करना होगा,
1: ध्यान रखना, ध्यान रखना है,
0: सिर्फ याद रखना है, बाकी सारी चीजें तो अपने आप ही होनी है.
1: इसीलिए तो परमात्मा बार बार कहते हैं एक छोटी सी बात, सोल कॉन्शियसनेस.
0: अच्छा, हमने क्या किया, ऑटोमेटेड हमने ये चीज कर ली और उन पे काम करते गए, वो जो सारे काम है वो ऑटोमेटेड हो जाएंगे.
1: वो ऑटोमेटेड हो जाएगा, यहाँ ऑटोमेटिक नहीं होगा. अपना क्रिएट हमें करना है, काम तो अपने आप हो जाएगा. क्योंकि जब राइट अभी भी काम तो वैसे भी हो रहा है, संतकारा काम तो हमें करना ही आता है, सिर्फ क्या करना नहीं आ रहा था, क्रिएट कैसे करना है. और क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था कि शांति कैसे क्रिएट करनी, खुशी कैसे क्रिएट करनी, मैं औरों से मांगने लगे, आई विल अचीव दिस, तब मुझे ये होगा. और वो अचीव, लाइक मेनी पीपल आई हैव मेट, दे विल से मेरे जीवन का पर्पस है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे इस रोल तक, यू नो, इस टाइटल तक पहुंचना है. और टेंशन हुई हुई है उस बात की कि मैं पहुंचूंगा नहीं, करूंगा नहीं, पहुंच पाया या नहीं, रास्ते में कौन से ऑब्स्टिकल्स आएंगे. तो पर्पस ऑफ लाइफ चैलेंजिंग.

0: मैं कौन ध्यान में रखकर अब जीवन की यात्रा पर कल चले, तो देखते हैं कल का दिन कैसा बीतता है।
1: बिल्कुल, लेकिन सिस्टर शिवानी एक बात यहाँ ये जानना चाहेंगे कि मुझे अपने आप को पहचानते हुए मैंने अपने वैल्यूज और पर्पस ऑफ लाइफ को तो समझा, लेकिन मैं जो अभी तक जिंदगी जी रहा था या जी रही थी उसमें बहुत सारे चीजों को मैंने पर्पस बनाया हुआ था और वो एक ऐसा ट्रेंड पे जी रहा था, तो ये पर्पस ऑफ लाइफ मेरे साथ हमेशा हर पल याद रहे मुझे। इसके लिए हाउ शुड आई,
0: इसके लिए मुझे सुबह अपने आप के साथ बैठकर, जो हम कहते हैं मेडिटेशन, तो हम मेडिटेशन में अपने आप के साथ बैठकर अपने आप को फिर याद दिलाते। शुड वी डू इट नाउ फॉर अ फ्यू मिनट्स?
1: दैट विल बी नीडेड।
0: लेट द बॉडी सिट वेरी रिलैक्स्ड कंफर्टेबल, और शरीर को हल्का रखते हुए अपने आप को महसूस करने की, देखने की कोशिश करें। ये शरीर तो जड़ है, मैटर है, ये हाथ तो वही करता जो मैं इससे कराता हूं, ये आंखें वही देखती जो मैं इसके द्वारा देखना चाहता हूं, मैं कौन हूं जो चूज करता है इस शरीर के द्वारा क्या करना है? शरीर को चलाने वाली शक्ति, एनर्जी, कॉन्शियसनेस, मैं आत्मा हूं। आई एम एन इटर्नल एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट, द सोल। अपने आप को धीरे धीरे देखने का प्रयास करें। शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, अति सूक्ष्म छोटा सा टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, जस्ट लाइक अ लिटिल स्टार इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। दिस इज मी, ये मैं हूं जो ये शरीर धारण कर अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। आई एम अ पावरफुल बींग, हर परिस्थिति का मैं मास्टर हूं। शांति, खुशी मेरी अपनी प्रॉपर्टी, मेरी अपनी नेचर है। दिस इज हु आई एम। आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ ब्लिसफुल सोल। मेरे जीवन का लक्ष्य अपनी वैल्यूज को, अपने गुणों को अनुभव करना और अपने संबंधों में लेकर आना। टू एक्सपीरियंस पीस एंड टू एक्सप्रेस इट इन एवरी इंटरेक्शन, टू फील लव एंड टू एक्सप्रेस इट इन एवरी इंटरेक्शन, बिकॉज दिस इज हु आई एम। टुमारो एज आई गो ऑन इन द जर्नी ऑफ माई लाइफ, मुझे सिर्फ यही याद रखना है कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। आई एम अ ब्लिसफुल बींग एंड आई विल एक्सप्रेस इट विद एवरीवन आई मीट, बिकॉज दिस इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। ओम शांति,
1: ओम शांति। लाइफ बिकम्स एक्चुअली सो ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच कि आज हम जो अभी तक इतने पर्पस ढूंढ रहे थे, सचमुच में एक क्लैरिटी के साथ न सिर्फ अपनी वैल्यूज, अपनी पहचान, बल्कि पर्पस ऑफ लाइफ समझ में आता है। शांति। आज तक जो भी हमने बीड़ा उठाया, जो भी हमें कर्तव्य निभाने को कहा गया, हमने बहुत अच्छी तरह से निभाया। हमें पर्पस मिला लाइफ का, जो भी रोल था उसमें, जो भी पर्पस था उसे बहुत अच्छी तरह से निभाया। हम कर्मठ लोग हैं, अच्छा काम करते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। लेकिन जब अपनी पहचान हुई तब समझ में आया कि सबसे बड़ा अन्याय तो अपने ही साथ हो रहा था, क्योंकि जो मेरी अपनी पहचान है, जो मैं हूं, उसकी कोर वैल्यूज को ना समझते हुए मैं अपना ही पर्पस नहीं जान पा रहा था। सो आज जब ये पता चला है, एक ऐसा पर्पस जो मेरा रियल पर्पस है लाइफ का, वो जब समझ में आ रहा है तो उसे भी मैं उसी खूबी से निभाऊंगा, ये मैं समझ सकता हूं। सो कौन हूं मैं, मेरी वैल्यूज क्या है, मेरा पर्पस क्या है, ये अब समझ में आया। निभाऊंगा कैसे, वो भी उसी शिद्दत से और उसी कर्मठता से।

कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सवाल आपके मन में उठता है, आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 09993446 09873666555 09997444555। हमारा ईमेल आईडी है om shanti studio@pkmail.org।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन नाउ, इवन अगर कल बीत गया इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: आवाज
1: सामाजिक सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद
2: और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
0: आओ भा...

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकताहत रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुण्याचा आवाज तुमच्या हृदयाचा साते। पुणे आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशिया बाटो।
1: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर हैं। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुणे री आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ।

0: बात कर रहे हैं हम लाइफ स्किल्स की। कितनी स्किल्स हमने सीख ली इस पूरे जीवन में, नहीं सीख पाए थे तो लाइफ को कैसे जीना है, इस स्किल को हम इस श्रृंखला में जान रहे हैं। बहुत कुछ हमने जाना अपने विचारों के बारे में, और अगर पिछली कड़ी देखें तो एक बहुत बड़ा रिवलेशन था कि मैं जो भी थॉट क्रिएट कर रही हूं, जो भी फीलिंग्स क्रिएट कर रही हूं, वो मेरे बॉडी के ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, और कई बीमारियां जिन्हें मैंने लाइफस्टाइल मान लिया था, वो बहुत कुछ मेरे इन थॉट्स इन फीलिंग्स के कारण क्रिएट हो रही थी। आज बात को आगे बढ़ाते हैं, क्या इस प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है? बीमारियां हैं तो क्या थॉट और फीलिंग क्रिएट करके उन बीमारियों से मैं मुक्त हो सकती हूं? हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, दोनों का स्वागत। डॉक्टर पटेल, एक छोटा सा रिकैप आपके साथ करना चाहेंगे, क्योंकि इट्स समथिंग न्यू, यू नो, ये तो अभी तक सुना था कि हाँ अगर गुस्सा करते हैं वो बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है, लेकिन वी नेवर थॉट, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था कि उसको ठीक किया जा सकता है, कि कौन सी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं हमारी बॉडी के जो हमारी जो स्ट्रांग और टॉक्सिक इमोशंस हैं उन पर इफेक्ट पड़ता है।
1: जब तक हमने देखा है कि मेनली तीन सिस्टम्स, एक तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक है, जिसका संतुलन होना चाहिए, परंतु इन टॉक्सिक इमोशन से वह संतुलन हो जाता है, सिंपैथेटिक सिस्टम बहुत ज्यादा काम करने लगती है और बहुत सारी बीमारियां होती है। दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इम्बैलेंस आता है और वो थोड़ा सा भी इम्बैलेंस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और तीसरी बात कि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के द्वारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारे रेजिस्टेंस पावर पर नेगेटिव इफेक्ट होता है, और उससे भी न केवल अनेक बीमारियां होती है परंतु कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है बॉडी को ही दुश्मन मान लेती है और उसको डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो तीन मुख्य बातें हैं
0: जी, उसके अलावा भी बॉडी के किसी सिस्टम पे ये इमोशंस वर्क करते हैं।
1: और एक जो इससे भी गुह्य, शायद इससे भी सूक्ष्म है, यहां भी डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, परंतु हम उसके बारे में सजग हो जाए इसलिए बता रहा हूं, कि ब्रेन में 900 से ज्यादा केमिकल्स है और वह केमिकल्स बड़ी सूक्ष्म मात्रा में, उनका भी सही मात्रा में वह केमिकल्स होने चाहिए, अगर कम हुए तो भी समस्या होगी, बढ़ गए तो भी प्रॉब्लम होगा, और इस टॉक्सिक इमोशन से उन केमिकल्स पर बुरा असर होता है। कभी आपको कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो और आप डॉक्टर के पास जाओ और पूछो कि डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, तो उसका स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है कि भी केमिकल इम्बैलेंस,
0: मतलब हम भी इतनी बार सुन चुके हैं कि हाँ कुछ केमिकल इम्बैलेंस हुआ है,
1: तो ये एक एक इमोशंस भी वो केमिकल में इम्बैलेंस क्रिएट करता है, जैसे कि
0: ये तो उसको थैलेमस, उसको ब्रेन को टच करती है क्या?
1: हाँ, पहले तो हाइपोथैलेमस पर इफेक्ट करेगी और फिर जो सारे ब्रेन के केमिकल्स है उन सब में भले इनिशियली माइनर डिस्टर्बेंस होगा, परंतु अगर कंटिन्यू हो तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, साथ साथ फिजिकल प्रॉब्लम्स होने की संभावना भी बहुत बढ़ सकती है।
0: क्या पर्टिकुलर इमोशंस पर्टिकुलर ऑर्गन्स पर इफेक्ट डालते हैं, जैसे हेट्रेड है या यू नो लाइक बहुत ग्रीड है, एंगर है, वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स पर काम करते हैं?
1: हाँ बिल्कुल, कुछ तो रिसर्च हुई है, मैं तो समझता हूँ और भी इसके बारे में अगर कोई सिस्टमेटिक रिसर्च हो तो बहुत बड़ी बात लोगों के सामने वो रिवील हो सकती है, परंतु अब तक जो रिसर्च हुई उसमें पता चला है कि जिनकी टाइप ए पर्सनालिटी होती है, कि जो लोग परफेक्शनिस्ट है, सब कुछ उनको टाइम पर चाहिए, एक चीज यहां से यहां ना होने तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसे जो टाइप ए पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं उनमें माइग्रेन बहुत ज्यादा होता है, उनको ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक होने की संभावना भी बढ़ जाती है।
0: पर क्यों होता है ऐसे?
1: अभी यहां भी मैकेनिज्म तो सेम है कि सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगी तो ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट होगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, माइग्रेन हेडेक हो सकता है, ब्लड वेसल्स पर इफेक्ट होगी उससे भी माइग्रेन होगा, परंतु स्पेसिफिक इमोशंस की जहां तक बात है, यह भी प्रूव हुआ है कि जो लोग हाइपर क्रिटिकल है, कि छोटी छोटी बातों में क्रिटिसाइज करेंगे, नेगेटिविटी कोई दूसरे में देखेंगे, उनको कुछ पॉजिटिव दिखाई नहीं देता है, इस प्रकार की जिनके मेंटेलिटी है उनको भी हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है।
0: हर एक में बुरा ही देखते हैं जो हम।
1: और ये भी देखा गया है कि जो सप्रेशन में जीते हैं, ये जो दबाव में जीते, जिनको लगता है कि परिस्थिति मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, उनको हाइपोथायराइड होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब देखना, हाइपोथायराइड अधिकतर महिलाओं में है, क्योंकि किसके अंडर में जीना पड़ता है,
0: सफोकेटेड जब फील कर

0: हाँ, जब भी ये फीलिंग हो तो हाइपोथायराइड होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। डायबिटीज के लिए भी माना गया है कि जो लोग बहुत ग्रीडी है, ये चाहिए एक्यूमुलेट करना चाहते हैं,
1: ना केवल फिजिकली। हाँ, कई बार ये इनसिक्योर भी लोग भी तो ग्रीडी हो जाते हैं।
0: हाँ हाँ, बस इनसिक्योरिटी फिर ग्रीडीनेस में लाएगी और ग्रीडीनेस के कारण भी डायबिटीज होने की संभावना बढ़ेगी।
1: अच्छा, वो
0: लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी है। हाँ, परंतु ये सूक्ष्म फैक्टर्स है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। यह भी देखा गया है कि जो लोग असंतुष्ट है जीवन में, सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ में, उनको पेट के प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। एक होता है कोलाइटिस, एक है माइल्ड एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम, ये सब पेट की बीमारियां हैं। वो पेट की बीमारियां होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। इस पर अगर और अच्छे से रिसर्च किया जाए तो सचमुच गहरी बातें सामने आ सकती है कि भी कौन सी फीलिंग्स, इमोशंस वो कौन सी बीमारियां निर्माण करते हैं।
1: जैसे शिवानी, अभी तक हम फीलिंग्स को ये मानते थे कि वो नेचुरल है, मतलब उनका ऐसे सिस्टम पे, बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ना, तो आई कुड एक्चुअली नेवर इमेजिन। मैं अभी भी रिलेट नहीं कर पा रही हूँ कि अगर मैं ग्रीडी हूँ या एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ तो मेरे को डायबिटीज होने के चांसेस हो सकते हैं।
2: एक्चुअली ऑल द मोर इम्पोर्टेंट लग रहा है ये सुनने के बाद कि अपने इश्यूज को रिजोल्व करना कितना जरूरी है। यू नो, सप्रेस्ड फील कर रहे हैं, और सप्रेस्ड फील करना भी मतलब क्या कि सिचुएशन के रिस्पॉन्स में पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ थॉट्स क्रिएट करना, एंड वी कैन लिव विद दैट थॉट पैटर्न फॉर अ लाइफ टाइम। अब ये जो बीमारी है, दिस माइट यू नो डिवेलप 25 के बाद, 35 के बाद, 45 के बाद, लेकिन उसकी शुरुआत तो फिर कितने साल पहले शुरू हो गई थी। तो आज अगर हम अपने थॉट पैटर्न का बच्चों के लेवल से ही ध्यान रखना शुरू करें, इट्स नॉट गोइंग टू बी कि हाँ हम तो अपना तो ध्यान रखें।
1: yes, बच्चों को अगर हम देखें तो कितना सप्रेस्ड फील करते हैं,
2: क्योंकि उनके अभी एक एक ऑर्गन डेवलप हो रहा है एंड उनकी वो जो फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, एंड अब अगर वो इतनी यंग एज से ये सारे इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इफ वी गो बैक टू स्टूडेंट लाइफ, तो हमारे पास स्ट्रेस कोई वर्ड नहीं था वोकैबुलरी में, ये सब जो अब फील हो रहा है। तो अगर हमारी जो जेनरेशन थी जिनकी इमोशनल लाइफ फिर भी काफी बैलेंस्ड थी, लेकिन फिर भी आज हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो इट इज स्केरी टू थिंक कि अब के जो बच्चे हैं जिनकी इमोशनल लाइफ ही अभी से इतनी अनबैलेंस्ड है, आफ्टर 30-35 इनकी फिजिकल हेल्थ कैसे होने वाली है। इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ, क्योंकि इनकी इमोशनल भी वीक है और इमोशनल के कारण फिजिकली अभी से वीक हो रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट।
1: ऑर्गन्स ही वीक डेवलप होंगे, इसका मतलब
0: यही बात है। कई लोग इसमें ये भी प्रश्न पूछते हैं कि भी ये टाइप ए पर्सनैलिटी तो बहुतों की है, तो सबको क्यों ना हार्ट अटैक हुआ, क्योंकि जिनका हार्ट ऑलरेडी वीक है और कोई कारण से भी, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, उसके कारण हार्ट पर ऑलरेडी इफेक्ट हुई है, तो उनमें इमीडिएटली टाइप ए पर्सनालिटी की इफेक्ट होगी और हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा। वैसे भी किसी में ऑलरेडी उनका थायराइड वीक है, जेनेटिकली उनमें ऐसे जीन्स है कि जिससे थायराइड 100% कार्य नहीं कर रहा है, परंतु और बातें आ गई साथ में, सप्रेशन फील कर रहे, तो थायराइड की समस्या होने की संभावना बढ़ जाएगी। वैसे जो ऑर्गन जेनेटिकली वीक है और कोई एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण वीक है, उन पर इमीडिएट इफेक्ट होगी।
1: और लेकिन अदरवाइज आप कह रहे हैं कि अगर जेनेटिकली स्ट्रांग है तो ग्रेजुअल तो उन पर
0: होगा, भले टाइम लगेगा परंतु इफेक्ट तो हो ही रही है।
2: लेकिन आजकल जो बच्चों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ रही है, डायबिटीज यंग एज पे हो रहा है, डिप्रेशन भी हो रहा है, आपने जैसे कहा केमिकल इम्बैलेंस है, लेकिन वो केमिकल इम्बैलेंस इमोशंस के कारण है। डिप्रेशन स्टूडेंट लाइफ में होना, दैट मीन्स वो इमोशनल इम्बैलेंस तो शुरू हो चुका है ना, एंड दिस इज सो मच बिकॉज ऑफ हम भी अपनी जो इमोशनल एनर्जी उन पर डाल रहे हैं सारा दिन, एंड फिर जो आपने कहा ये हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं। हम तो अपने बच्चे को टूडे नाउ आई फील के सिर्फ इमोशनली वीक नहीं कर रहे, फिजिकली भी वीक कर रहे हैं, एंड दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क टू ईच वन ऑफ अस।
1: ओबेसिटी भी किसी इमोशन के कारण?
0: हाँ हाँ, एक तो बहुत मुख्य बात तो ये है कि जो हम खाते हैं वो यही नहीं है कि भी आपको भूख लगी, बॉडी को जरूरत है इसलिए खा रहे हैं। एक है साइकोलॉजिकल हंगर ऑल्सो, इसको नहीं आम भाषा में हम कहते झूठी भूख। व्यक्ति भी समझता है कि मैं अभी खाया है, पेट भर के खाया है, फिर से मुझे आधे घंटे में भूख लग रही है, वो समझता है कि झूठी भूख है। ये झूठी भूख साइकोलॉजिकल है, क्योंकि अंदर में डिससेटिस्फेक्शन है और व्यक्ति खाने से सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने की कोशिश करता है और फिर ओबेसिटी भी हो सकती है। और बच्चों में भी यही कारण है बहुत बड़ा।
2: अब हम जब बच्चों के कारण के बारे में अगर आपस में सोचते हैं

0: या बात करते हैं ओबेसिटी की, वी ओनली से बहुत टीवी देख रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठ रहे हैं, बाहर आउटडोर नहीं जा रहे एंड जंक फूड खा रहे हैं, हु एवर थॉट कि उनका थॉट पैटर्न ये ओबेसिटी क्रिएट कर रहा है.
1: आई थिंक पेरेंट्स को रियलाइज ही नहीं हो पाते.
0: अब हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, बच्चे को जंक फूड से दूर करेंगे, टीवी से दूर करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम पर नहीं हिट करेंगे जो इंटरनल है, तो आउटवर्ड भी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती ही नहीं.
1: डिससेटिस्फेक्शन की तरफ जाया जाए,
0: क्यों मेरा बच्चा डिससेटिस्फाइड है, क्या उसको अंदर खालीपन लग रहा है, बाहर हमारे घर में सब कुछ है फिर भी क्या चीज की कमी वो महसूस कर रहा है. एंड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन टूडे आर मिसिंग देयर पेरेंट्स, है ना. तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है, वो खालीपन, वो एम्प्टीनेस. क्यों ये बीमारियां आज ही हो रही हैं? व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट ओबेसिटी इन चिल्ड्रन टुडे, व्हाई नॉट 20 इयर्स बैक? फिर हम हमेशा ब्लेम आउट पर डाल रहे हैं कि आज की लाइफस्टाइल ऐसी. इट मे बी वन फैक्टर, लेकिन दूसरे फैक्टर को भी तो हमें देखना पड़ेगा.
1: यू नो पेरेंट्स को मिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कई बार पेरेंट्स जितनी देर है उतनी देर भी उनके साथ.
0: हाँ, इट्स नॉट अबाउट द टाइम. देखो पेरेंट्स ने जॉब पे तो जाना ही है, चाहे दोनों ने जाना है, लेकिन जितनी देर है तो भी उनकी मेंटल स्टेट क्या है, और फिर जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन सी एनर्जी बच्चों को देनी है, वो तो नहीं उल्टा और ही उसके विपरीत दे रहे हैं, क्योंकि खुद ही इतने स्ट्रेस होकर आए हैं. इफ आई हैव नॉट टेकन केयर ऑफ माई सेल्फ द होल डे, आई कांट टेक केयर ऑफ समवन एल्स आफ्टर दैट. नॉट पॉसिबल.
1: इमोशनली नहीं कर पाते हैं. अब कैसे मुड़े? जो गलतियां हो चुकी, जो बीमारियां लग गई, क्या ये रिवर्स किया जा सकता है प्रोसेस?
2: बिल्कुल कर सकते हो. सबसे पहली बात है कि भी स्वीकार करो. मैं समझता हूं दिक्कत यहीं पर है कि कई लोग इस बात को स्वीकार ही नहीं करते. सचमुच में बाहर सबको पता चल रहा है कि भी इनमें बहुत गुस्सा है, ये टाइप ए पर्सन है, परंतु व्यक्ति गया नहीं, नहीं मैं तो अच्छा ही हूं. तो पहला तो स्टेप यही है कि आप स्वीकार करो कि भी मेरे में से नेगेटिव इमोशंस है.
1: मैं आपको ये बता रही हूँ, इसीलिए स्वीकार नहीं करते थे क्योंकि आज तक हम सोचते थे कि मेरे को गुस्सा मेरे कारण से नहीं आ रहा है, लोग ही ऐसा बोल रहे हैं, ऐसे बिहेव करते हैं, तो गुस्सा तो आएगा ही.
0: आज दिन तक हम गुस्से को इसलिए शस्त्र की तरह यूज करते आ रहे थे कि उनको ठीक करना है, वो बिगड़ जाएंगे अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे. तो फॉर देयर डिसिप्लिन वी वर यूजिंग एंगर विदाउट रियलाइजिंग कि अपना कितना नुकसान उस प्रोसेस में हो रहा है कि हम दूसरों को ठीक कर दें. द डैमेज डन टू मी वी नेवर थॉट अबाउट. अगर आज भी वो रोशनी आ गई है, मे बी वी कैन क्रिएट मैजिक विद आवर सेल्व्स नाउ.
1: आई नो. सो ये रोशन चलिए हम स्वीकार कर रहे हैं. आगे
2: अभी सेकेंड स्टेप ये है कि भी ये समझना चाहिए कि थोड़ा डीप है, सिर्फ सुपरफिशियली नहीं देखो. हम सुपरफिशियली देखते हैं कि मैं सवेरे उठा तो फ्रेश था, काम पे गया अच्छे से गया, मैंने ठीक से काम किया, घर पे आया तो बच्चों के लिए थोड़ा टाइम भी मैंने दिया, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. परंतु आप डीप में नहीं गए. अगर आप डीप में गए तो पता चलता कि भी सवेरे उठा तब इरिटेशन था कि ये चीज जगह पर नहीं थी, ये मुझे मिला नहीं, ट्रैवल कर रहा था तो ट्रैफिक जाम में डिस्टर्ब हुआ था, हाँ बॉस ने कुछ बोल दिया तो तब भी मेरे में फीलिंग आई थी. वो सेकंड लेवल होना चाहिए कि डीपर जो सूक्ष्म में भी संकल्प चल रहे हैं उसके बारे में भी सजग हो जाओ.
1: मुझे इसको भी कैच करो. बातें चलती जाती हैं कंटिन्यूअस कॉन्वर्सेशन.
0: हमने कई बार बात की ना, सुबह बच्चों को हम उठाते कैसे? सी द डे स्टार्ट्स ओनली विद एंगर एंड इरिटेशन. सिर्फ मेरे लिए नहीं, बच्चे के लिए भी. और ये हर रोज का पैटर्न है, ये भी नहीं कि कभी कभी ऐसा हो रहा है, इट्स अ डेली पैटर्न. तो अगर हमें ये अवेयरनेस आ जाए, हम छोटी छोटी बातों पर भी अगर शुरू कर लें, बड़ी बातों पर तो अपने आप हो जाएगा. फिर इट विल बी इजियर इफ वी स्टार्ट ऑन दीज स्मॉलर थिंग.
2: वो एक सेकेंड स्टेप होना चाहिए कि भी डीप उसको अंडरस्टैंड करें,
1: अवेयर हो जाए कम से कम.
2: हाँ या अवेयर हो
1: कॉन्स्टेंट,
2: और फिर उसको एनालिसिस करो, फाइंड आउट करो, उस चीज को चेंज कर दो. तो जब शुरुआत हो रही है ना, तभी कंट्रोल कर सके.
0: इसीलिए अवेयरनेस इम्पोर्टेंट होगी कि सारा दिन चेक करना क्या चल रहा है, क्या चल रहा है. थोड़ा सा भी राइट क्वालिटी का नहीं है, लेट मी रिमाइंड माई सेल्फ कि मैं अपना डैमेज कर रहा हूँ. दैट्स वाई कॉन्स्टेंट एक अवेयरनेस, फिर वो एक नेचुरल हो जाएगी. शुरू में थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ता है. वी हैव सीन विद एक्सपीरियंस कि आफ्टर सम टाइम आपके जब इस तरह के डिस्टर्बिंग थॉट्स चलने लगे, आपको खुद दिखाई देगा. जैसे बाहर कोई डिस्टर्बेंस हो आपको दिखाई देती है, ये आपको दिखाई देगी. जैसे ही दिखाई देगी, यू विल बी एबल टू वर्क ऑन इट.
1: वी फील गुड. हाउ यू फीलिंग, यू नो.
0: नहीं बट फीलिंग तक भी नहीं पहुंचेगी वो
1: थॉट पर।
0: हाँ फीलिंग में भी ना थोड़ी देर में आती है, जब एक

0: particular series of thoughts kuch time tak chal rahi hai, then I start feeling, you know, like this. But if I'm able to just look at it at the level of thought, why even go to the next stage of the process plan to the feeling?
1: Phir wapas lane mein aapko time lagega. Okay, humne ye sajagda rakhi sara din.
2: Fir abhi next step to ye hai कि भी इसको हम चूज करें. हमने काफी बार इसको डिस्कस किया है कि भी हम स्वयं अपने थॉट क्रिएट करते हैं. या तो दूसरी बात इससे भी बड़ी सिंपल है कि हम अपने थॉट्स को चूज करते हैं. जैसे हम खाना चूज करते हैं, कपड़े चूज करते हैं, ऐसे विचारों को भी हम चूज करते हैं.
1: तो इधर द बुफे ऑफ
2: थॉट्स या
1: यू पिक देम अप व्हिच आर गुड फॉर योर हेल्थ.
2: True.
0: Yes, ब्यूटिफुल.
1: सी बूफे में भी हम वो बड़ा हेल्दी फूड चूज करते हैं. तो सिमिलरली
2: हाँ, यहाँ पर भी हम वैसा ही फूड चूज करें कि जो आत्मा के लिए अच्छा है. है ना, जो आत्मा के लिए नरिशिंग फूड है वही फूड मुझे चूज करना चाहिए. और नरिशिंग क्या है कि जो बात आत्मा को पसंद है वही नरिशिंग होगा. आत्मा को क्या पसंद है? शांति चाहिए उसको, प्यार चाहिए, पवित्रता चाहिए. तो बस उसी प्रकार के थॉट्स को चूज करो, ऑटोमेटिकली आत्मा ग्रो होगी और बॉडी भी हेल्दी होने लगेगी.
1: जो अननेसेसरी हम यू नो इरिटेट होते रहते हैं दूसरों के बारे में, गलत अननेसेसरी करते रहते हैं. एक्चुअली अगर आप सोचना शुरू करो तो बहुत सारे थॉट्स जो हैं, जो अगर इतना मेरी बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं, यू नो जो हम बार बार कहते हैं वेस्ट थॉट्स, पास्ट हो गया, जो हो गया, वो हम कंटिन्यूस करते रहते हैं. अब ये प्रोसेस क्या होगा?
2: चूज करने के प्रोसेस में दो चीजें होगी. एक तो ये है कि मैं जो चूज कर रहा हूँ कोई एक्सटर्नल चीज मुझे कंट्रोल कर रही है. पहले भी हमने डिस्कस किया है कि लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल हो गया है. ये जो मैं थॉट ला रहा हूँ कोई एक्सटर्नल बात को लाके ला रहा हूँ. मेरे पड़ोस में एक परिवार था कि भी उनके आपस में काफी झगड़ा हुआ, डिस्टर्ब हो गए. भी रीजन क्या था कि भी उनकी ऑफिस में दूसरा जो फ्रेंड था वो सिंगापुर छुट्टियां मनाने के लिए जा रहा था, हम नहीं जा सकते, वी डोंट हैव सो मच सैलरी. उसी से डिस्टरबेंस हो गया. तो वहां ये चूज करना चाहिए कि भी मैंने गलत चूज किया. ना, सिंगापुर जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, पीस ऑफ माइंड इम्पोर्टेंट है. नहीं, अगर मेरे रिसोर्सेज को अलाउ नहीं करते हैं बस मुझे अब इसमें चूज नहीं करना है. भी माई चॉइस इज कि भी मैं पीसफुल रहूं. भले भारत में भी कहां गए, थोड़ा हमने एंजॉय कर लिया और थोड़ा समय हमने इंट्रोस्पेक्शन किया, मेडिटेशन किया, थोड़ा साइलेंस में गए, तो उससे और ज्यादा हैप्पीनेस बढ़ेगी और कोई प्रकार की बीमारियां नहीं आएगी, उसको मैं प्रिवेंट कर लूंगा.
1: तो ये एक चॉइस की जब बात आती है, अभी तक बहुत सारी चीजें जो है हम अपनी चॉइस से कर रहे थे, थॉट्स नहीं क्रिएट कर रहे थे.
0: सी अगेन, हमें जब तक उसका डैमेज नहीं पता था वी वर नॉट टेकिंग केयर. लेकिन अगर आज अगर डैमेज पता चल रहा है कि सिर्फ एक एस्पेक्ट पे नहीं, मेरे जीवन के हर एस्पेक्ट पे डैमेज हो रहा है, डोंट यू थिंक वी विल स्टार्ट टेकिंग
1: केयर?
0: जी को बैठे बैठे हम सोचते रहते हैं इसने ऐसा क्यों किया, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये भी कोई करने की बात थी, ऐसा कर दिया, मैंने उसके लिए इतना किया था, उसने मेरे साथ. इट कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. लेट मी जस्ट टेल माई सेल्फ There's something happening.
1: I think मेरे को ऐसे times I'm feeling कि we should do it the other way round, you know. Let's look at the disease which we have.
0: It's not necessary कि वो disease तक manifest हो चुका है. ये भी बहुत important है कि हो सकता है मुझे आज diabetes, thyroid इनमें से कोई problem नहीं है, लेकिन मेरी thoughts चलती हैं उस quality की, तो कहीं ना कहीं damage शुरू हो गया है. Why wait? कल आपने कहा कि भाई साहब ने कहा walk भी वो लोग कर रहे हैं जिनको कोई ना कोई बीमारी लग गई है. तो ये भी तो एक बिलीफ सिस्टम हमारा बना कि बीमारी होगी तब हम ध्यान रखेंगे. ध्यान रख लें, वाई गो थ्रू द प्रोसेस. वाई गो थ्रू द प्रोसेस. एंड इम्पोर्टेंट तो ये है, अगर मैं अपना ध्यान रख लेता हूँ तो मुझे भी नहीं होगी और मेरे आसपास जो एटलीस्ट मेरी क्लोज इमीडिएट फैमिली है उनका भी ध्यान हो जाएगा. सी मैंने ऑफिस में अपना ध्यान नहीं रखा तो मुझे गुस्सा आया, मुझे बीमारी हुई, मैंने बच्चों को गुस्सा किया उसका इफेक्ट उन पर आया, मेरी वाइफ परेशान हो गई उसका इफेक्ट उस पर आया, जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट टेकिंग केयर. एंड फिर हम कह रहे हैं इन सब का ध्यान रखना मेरी जिम्मेवारी. सो इट्स सच अ विशियस साइकिल.
1: एक्चुअली काम कराने के लिए, सी जो जैसे आपने टाइप ए पर्सनालिटी भी बोली, परफेक्शनिस्ट होना अच्छा माना जाता है. सी ही इज परफेक्शनिस्ट, उनका हर चीज एक्यूरेट होती है तभी तो वो एक्यूरेट बन पाता
0: है. लेकिन उनकी हर चीज एक्यूरेट होना, अब दिस डजंट मीन कि मैं लेट बैक हो जाऊं और मैं अपना काम एक्यूरेटली नहीं करूं, लेकिन सबसे पहले क्या एक्यूरेट होना, मेरी स्टेट ऑफ माइंड. अगर आई एम अ परफेक्शनिस्ट तो मैं सबसे पहले अपने परफेक्शन की लिस्ट पर ये रखूं ऊपर कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड परफेक्ट होनी चाहिए। एक छोटा सा दाग यहाँ से वहां मुझे इरिटेट ना करते तो वो वहां मैं परफेक्शन ले आऊंगा, लेकिन यहां मैंने इतनी गंदगी क्रिएट कर दी, कैन आई कॉल माई सेल्फ अ परफेक्शनिस्ट? तो अगर आप परफेक्शन को अपनी क्वालिटी भी लेकर चल रहे हैं तो फिर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में अपनी वेलबींग को सबसे ऊपर रखेंगे ना, कि मेरी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पहले परफेक्शन हो, कुर्सी टेबल सामान काम ये तो सेकंड स्टेज पर आएगा, उसको भी अगर रख लें तो सबसे पहले आप ध्यान किसको रखेंगे? आप काम करते जाएं, बेस्ट तरह से करवाते भी जाएं, डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें, दिस वी कैन टेक।
2: ये बात भी जो शिवानी बेन ने बताया ना बहुत गहरी है कि अचानक बीमारी नहीं होती है। आज लोग ध्यान क्यों नहीं रखते, समझे मैं बिल्कुल हेल्थी हूँ कुछ नहीं है, लेकिन आप में स्लोली डैमेज हो रहा है। कहते डिजीज वो एक आइसबर्ग की तरह है, नहीं उसकी टिप ही सिर्फ हमको दिखाई देती है। या तो ये भी कह सकते हैं कि बॉडी ऑर्गन्स को नेचर ने करीब 5 गुना ज्यादा कैपेसिटी दी है। हार्ट का ही उदाहरण ले, हार्ट में जरूरत से 5 गुना ज्यादा हेल्थ है या कैपेसिटी है। जब वो हार्ट 20% पर आ जाता है तभी आपको सिम्टम्स होते हैं।
0: मतलब कितना डैमेज हमने
1: पहले कितना कर दिया है हमने, बेचारा हार्ट जो ऑर्गन था वो तो काफी स्ट्रांग था।
2: इवन जो ब्लॉक्स कहते हैं ना कोरोनरी ब्लड वेसल्स है हार्ट में, वो 60% भी अभी मेरी ब्लॉक हो सकती है शायद, लेकिन मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, मैं 4 सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ आराम से। जब वो 75-80% होगा तभी अंजाइना का पेन शुरू होगा। तो ना 70% तो टू मच है, इवन 10% भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो मैं अगर इस बात को समझ लूं और ध्यान रखूं तो दिक्कत नहीं होगी।
1: तो क्या मैं अपने इमोशंस से, अपने इमोशंस पे काम करके मेरे को जो अब बीमारी है सपोज हो गई है उसको हैंडल कर पाऊंगा?
2: डेफिनेटली। मैं उससे पहले एक बात आपको बताता हूँ, इट मे बी नॉट क्वाइट मोटिवेटिंग। कुदरत ने अगर ऐसा किया होता कि मुझे एक थोड़ा सा नेगेटिव इमोशन आया, बीमारी हो गई है ना, मैंने थोड़ी सी गलती की, डाइजेशन बिगड़ गया, कुछ तकलीफ की, चेस्ट में पेन हो गया, तो मैं वो करता ही नहीं,
1: इतनी दूर तक लेकर ही नहीं जाता।
2: परंतु कुदरत ने हमें 5 गुना ज्यादा कैपेसिटी दे दी है सोच के कि भी व्यक्ति स्वस्थ रह पाए तो अच्छा है,
1: लेकिन तब तक हमने संस्कार बना लिया उसको, अपना हैबिट बना लिया,
2: फिर नहीं, वी टुक इट फॉर ग्रांटेड कि ये तो चलता है।
0: जैसे रिश्तों में हम करते हैं, जैसे रिश्तों में भी हम करते हैं ना, किसी एक व्यक्ति वो सहन करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता हम दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, हमें लगता है ये तो कर लेंगे, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, फाइनली व्हेन दे गो यू नो मोर देन उनकी जो लिमिट थी, देन दैट विल कम आउट एज एन आउटबर्स्ट। सो मे बी आवर बॉडी ऑल्सो जस्ट देन इट्स लाइक एन आउटबर्स्ट के बाद बहुत हो गया, इतनी कैपेसिटी थी मेरे पास, बट हम फिर उसको तब देख रहे हैं जब उसने अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड जाकर अपना डैमेज कर दिया है।
1: तभी वो कई बार रिपेयर के बियॉन्ड हो जाते रिश्ते भी
0: हो ही रहे और बॉडी में भी। इसीलिए देन वी से ब्लड प्रेशर की दवाई कब तक लेनी है, सारी उम्र लेनी है।
1: हार्ट की भी सर्जरी करेंगे तभी होगा, ओपन हार्ट सर्जरी होगी तभी ब्लॉकेजेस हटाने की कोई
0: और जब सर्जरी कर रहे हैं तब साथ में डॉक्टर ये भी कहता है कि कुछ सालों के बाद ये ब्लॉकेज फिर भी हो सकता है, फिर भी सर्जरी करेंगे,
2: होता है ना, तो 3-3 बार सर्जरीज हुए, ऐसे कितने सारे लोग हैं। और जो एक आप बात बता रहे हैं ना हेल्थ की, उसको इमोशंस के साथ एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। जैसे कि भी हमारे शरीर को कई न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे उदाहरण के रूप में हड्डियों को कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम अच्छा होगा हड्डियां स्ट्रांग बनेगी, विटामिन ए अच्छा होगा आपकी आई साइट अच्छी होगी, तो ऐसे ही ऑर्गन्स को भी सिस्टम को स्पेसिफिक इमोशंस चाहिए
1: स्ट्रांग करने के लिए।
2: हाँ, और वो अगर आप में है, वैसे भी सिंपल सी चीज, भी हार्ट का कनेक्शन प्यार के साथ है, जिनको जीवन में अच्छा प्यार मिला है तो उनका हार्ट भी हेल्दी रहेगा। कहते हार्ट फ्लो इज इक्वल टू लव फ्लो, लव फ्लो जितना ज्यादा है हार्ट का फ्लो भी, ब्लड फ्लो ठीक होगा। ऐसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम को सुख चाहिए कि भी जो सत्म जीवन में सेटिस्फेक्शन सुख का अनुभव करते हैं उनकी पाचन क्रिया भी बहुत अच्छी होती है। दिमाग को ज्ञान चाहिए, जितना नॉलेज होगा, भले और नॉलेज भी साथ साथ आध्यात्मिक नॉलेज, वो जितना अच्छा होगा आपका दिमाग अच्छे से कार्य करेगा।
1: स्टिमुलेंट्स हैं उनके लिए?
2: हाँ, उनके लिए कहेंगे न्यूट्रिशन है एक प्रकार का, नहीं न्यूट्रिश डिफरेंट ऑर्गन्स को। लंग्स को पीस चाहिए, आप स्वयं भी अनुभव करना कि जब आप पीसफुल है तो सांस की गति सही होगी, डीप होगी, रेगुलर होगी। जब पीसलेस है तो सांस तेजी से चलने लगेगा।
1: तो एस्थमेटिक अगर है लोग
2: तो

0: उनको जो पीस मिले जाएगा तो अस्थमा पर जरूर उनका विजय होगा, उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। इसी प्रकार से जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, आंख नाक कान आदि, उन सबको पवित्रता चाहिए। कहा भी गया ना कि भी आंख कमल नाक कमल, ऐसे देवताओं को उसके साथ कंपैरिजन किया गया, क्योंकि कमल पवित्रता का प्रतीक है। और हड्डियां और मांसपेशियों को शक्ति चाहिए, जितनी शक्ति होगी तो हड्डियां और मांसपेशियां भी मजबूत होगी। और जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनको आनंद चाहिए। आज ना एक्साइटमेंट मिल रहा है लोगों को, सच्चा आनंद नहीं मिल रहा है। अगर सच्चे आनंद का अनुभव करो तो ऑटोमेटिक आपकी सारी जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो सही कार्य करने लगे।
1: दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस पर काम करके हम अपनी सारी बीमारियों को एक्चुअली रिवर्स कर पाएंगे। ये तो बात रही, आज जो हमने रियलाइज किया कि ये सारे दिन में हम जो जो जो जो इमोशन क्रिएट कर रहे हैं अननोइंगली ही, यू नो, लेकिन क्रिएट एज बीइंग द राइट वर्ड नाउ, दैट वी आर क्रिएटिंग, वी आर चूजिंग, वी आर क्रिएटिंग। सो और दूसरी बात जो आपने कहा कि हर ऑर्गन को क्या चाहिए, उसका न्यूट्रिएंट क्या है, ताकि वो आज बीमारी नहीं भी है तो वो मजबूत रह पाएगा, उस पर और बात करेंगे। और हील अपने आप को, हम अपने ही शरीर को कैसे कर पाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल थैंक यू सो मच ओम शांति। आज एक और बात पता चली है, अभी तक इस प्लेटफॉर्म पर हमने जितनी बातें की उसमें रिश्ते हील हुए, हम खुद इमोशनली मन से हील हो रहे थे। शरीर एक ऐसा एस्पेक्ट था जो बहुत जरूरी था, उसकी दर्द उसकी जो बीमारियां थी वो हमें परेशान करती थी। आज ना सिर्फ अपने शरीर को स्वस्थ करने के प्रोसेस में है, बल्कि अपनों को अभी जो बड़े हो रहे हैं, चाहे बच्चे या परिवार के बाकी सदस्य, वो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप उनके साथ शेयर कर पाएंगे कि कैसे वो अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम जान रहे हैं, स्किल्स सीख रहे हैं लाइफ को जीने की। कोई बात मन में है, कोई सवाल है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें ईमेल पर या फोन पर संपर्क करें। हमारे फोन नंबर हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने

0: सबको जोर जोर से डांट लगाने शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं, बेड के सामने टेबल रखी, उठा, मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हूँ अनंत संभाजी और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो,

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ बीके काकोली जी हमारे साथ उपस्थित हैं और आप एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं पिछले कुछ समय से और ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी जुड़े हुए हैं। तो काकोली जी, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छी हूं।
0: जी जी जी, और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं, किस तरह का प्रोफेशन आपका है?
1: मैं शिक्षा विभाग में अपने कांकेर जिले में, रायपुर से 3.5 घंटे दूर है हमारा।
0: अच्छा, रायपुर से
1: 3.5 घंटे दूर है और वहां पे मैं एज ए लेक्चरर स्कूल में पढ़ाती हूँ।
0: अच्छा,
1: हाई स्कूल में।
0: तो कौन से सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ाते हैं आप, थोड़ा बताइए अपने बारे में।
1: मैं हिंदी और साइंस दोनों पढ़ाती हूँ। 11th-12th का साइंस 10 साल ली हूँ, लेकिन 97-98% आता था रिजल्ट उस समय। और केमिस्ट्री बहुत कठिन होता है, लेकिन सब बेसिक्स मुझे पूछते थे क्योंकि क्लास 1 से BSc तक मेरा फर्स्ट क्लास रहा, तो मेरी बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, तो इस हिसाब से पूछते थे, बताती थी। लेकिन अब जो स्कूल में आई हूँ, यहाँ पर जो है लड़कियां हैं 350 और आश्रम स्कूल है जो नक्सली पीड़ित होते हैं।
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा,
1: उनके
0: अच्छा।
1: बच्चों को विशेष जो है वहां पर रखने का प्रावधान है और सरकारी सहायता मिलता है वहां। और लड़कियों को मैं जिस साल गई 2012 में दिसंबर में, तो उस साल फर्स्ट डिवीजन नहीं था, तो वही 96-97 जो एवरेज होता है। और उनकी स्थिति को देखते हुए मैंने दूसरे साल उनको राजयोग मेडिटेशन सिखाया, जो मैं एक साल हुआ था सीखी थी, तो प्रयोग किया मैंने। तो जो प्रिंसिपल के घर में लड़की रहती थी, 9th तक तो करा दिया, अब 10th का कैसे करे, तो मैंने उसको एक प्रयोग किया, मैंने बताया जो है महाज्योति शिव बाबा को याद करना और जो तेरे बुद्धि में आए वो लिख कर आना। क्योंकि रहती है मैडम, मुझे तो देखकर भी लिखना नहीं आता, मैं क्या करूं।
0: अरे बाप रे।
1: हाँ, तो फिर मैंने उसको सजेशन दिया कि ऐसा करके देख,
0: बिल्कुल,
1: और
0: बिल्कुल।
1: आप यकीन नहीं मानेंगे कि उसका जो है सेकंड डिवीजन आ गया।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया।
1: तो जादू हो गया, जादूगर ऊपर बैठे जादू कर रहा है और हम जादू का अनुभव कर रहे हैं। तो उस साल जब पालक छोड़ने आया आश्रम में स्कूल, तो बड़ी मैडम ने जो है फूल बरसा के, जैसे देवताओं के ऊपर बरसाते हैं ना, वैसा पूरा जो है समारोह मनाया।
0: जी जी जी, चलिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। और मैं चाहूंगा कि शिक्षा विभाग माना छत्तीसगढ़ में किस तरह से वहां पर रिक्रूटमेंट कैसे किया जाता है, भर्ती कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, सिस्टम क्या है वहाँ का?
1: हाँ, जो हर जिले में एक स्कूल सरकारी जो है सहायता से चलता है, और रहने की व्यवस्था, जो दूर से गांव में रहते हैं, शहर में नहीं रहते, प्राइवेट स्कूल उपलब्ध नहीं होता है।
0: अच्छा अच्छा।
1: ऐसे बच्चों के लिए जो है सरकार, जो है छत्तीसगढ़ सरकार जो है हर जिले में एक स्कूल वैसे खोली है, आश्रम स्कूल, जहां लड़कियां रहती है। विशेष जो है लड़कियों को पढ़ने से रोका जाता है, घर का काम करो ऐसा माहौल है, तो इसलिए उनको जो है आगे पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मुफ्त में बुक भी देती है और इस साल तो कॉपी भी दी, और उनको जो है वैसे करके रख के पढ़ाया जाता है।
0: नहीं, वहां पर टीचर्स वगैरह का कैसे भर्ती होता है, उसके बारे में?
1: अच्छा, टीचर्स का जैसे मेरा तो परसेंटेज अच्छा था, तो उस समय क्या है जो है बुला करके जिसका परसेंटेज अच्छा देखते थे तो प्रॉपर जगह में रखते हैं।
0: अच्छा,
1: और
0: अच्छा।
1: अभी तो इंटरव्यू सिस्टम हो गया।
0: अच्छा।
1: उसमें मार्कशीट बेसिस पर हो रहा था।
0: तो
1: जैसे जैसे दिनों दिन जो है जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो प्रक्रिया कठिन होते जा रही
0: अच्छा,
1: है।
0: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
1: तो अभी इंटरव्यू होती है, फिर बीएड जरूरी है, डीएड जरूरी है। और हमारे समय में ऐसा था कि हम पहले ले लेते थे, उसके बाद में भले ट्रेनिंग कर लो।
0: बिल्कुल। अच्छा, पढ़ाई करते मना पढ़ाते हुए बच्चों को।

0: बाद में ट्रेनिंग करो, दोनों चीजें चलती थी साथ साथ में।
1: दोनों
0: अभी प्रॉपरली जो है बीएड वगैरह डीएड
1: डिग्री होगा एजुकेशन का तभी लेते हैं।
0: लेते हैं ऐसा है। अच्छा, जो वहां पर आदिवासी बच्चे वगैरह या नक्सलवादी इलाका वगैरह बहुत सारा है, तो अभी करंट सिनेरियो में किस तरह का सिचुएशन है वहां पर? अभी सब सुचारू रूप से चल रहा है या?
1: अभी पहले से काफी अच्छा हो गया है।
0: अच्छा अच्छा।
1: पहले जो है दूर दराज में जाने से लोग डरते थे, पोस्टिंग उधर होती थी
0: तो भी नहीं जाते थे,
1: प्रमोशन नहीं लेते थे।
0: अच्छा, प्रमोशन ही नहीं लेते थे।
1: नहीं लेते थे कि वहां जाना पड़ेगा करके। पर ऐसे सुकमा जिला है जहां बहुत ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाका है, पर वहाँ सरकारी सहायता से अभी बहुत अच्छा, मतलब वहाँ विकास भी हो गया है, तो लोग अभी जाकर के रहना पसंद करते हैं। बल्कि पहले से दहशत कम हो गया है। पहले दहशत का माहौल होता था, वो अब नहीं है।
0: अच्छा अच्छा। तो अब वहाँ पर जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र में मना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ही स्कूल है क्या, दो तीन स्कूल है?
1: नहीं, स्कूल तो अनेक है, प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी स्कूल भी है, मिडिल हाई प्राइमरी ऐसे स्कूल है।
0: अच्छा अच्छा।
1: और जो जिस स्कूल में मैं अभी हूँ तो वो ऐसा वाला स्कूल जो सरकारी से चलता है एससी एसटी ओबीसी के लिए।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: तो वो स्कूल हर जिले में एक है।
0: ओके ओके।
1: और मेरे जो स्कूल में जब एक साल 100% हो गया तो सेकेंड बार भी आया, थर्ड बार में जो है प्रिंसिपल मैडम 18 लोगों का स्टाफ था और उन्होंने मीटिंग लेके पूछा कि सब प्रिंसिपल को लगता है कि हैट्रिक हो उनके स्कूल का। तो वो जो है 18 लोग कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो जो है उनका ऐसे कि दूसरे स्कूल में जाके बच्चे परीक्षा देंगे, आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा वाला स्थिति था। फिर मैंने तो हमने जो भगवान से बात करना सीख ली है, राजयोग मेडिटेशन मतलब है ईश्वर से मुलाकात और ईश्वर से बातचीत, और परमात्मा से जब हम ऊपर वाले से डायरेक्ट कनेक्शन के थ्रू हम बात करते हैं तो वो हमें जो है वो टचिंग करते हैं। और मैंने उनसे बात की और मैंने कहा मैडम हो जाएगा।
0: अच्छा,
1: निश्चिंत रहिए। मैंने खड़े होकर जवाब दिया 18 लोगों के बीच में, सोचो। फिर मैंने बोला कि भाई अब हमने बोल दिया है, अब क्या करना नहीं करना है वो आप जानो।
0: जी जी।
1: शिव बाबा को बोला तो उसके बाद उस साल आया।
0: हाँ।
1: जब हैट्रिक आया तो मैडम को बड़ा
0: अच्छा लगा,
1: बहुत अच्छा लगा और एकदम से जो है उनको बहुत कॉन्फिडेंस आ गया।
0: बिल्कुर,
1: और स्कूल में मैं मेडिटेशन कराती हूँ, जैसे जाती हूँ ना 9th-10th के क्लास में 2 मिनट खड़े होते हैं तो उस समय ना उनको जो है सिखाए।
0: अच्छा अच्छा।
1: कि आप ऊपर से जो है सर्वशक्ति की किरणें आ रही है ऐसा सोचो और चारों ओर फैल रही है।
0: ठीक है, चलिए मैं चाहूंगा कि एक आध गीत आप जो है गीत भी गुनगुनाते हैं तो एक गीत को एक गुनगुनाइए।
1: मधुबन में आई हूँ तो मधुबन का ही एक गाना गा देती हूँ।
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: मधुबन

बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर विशेष काकोली जी को, और बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनाया है। और एजुकेशन सिस्टम में जो है, एजुकेशन विभाग में आप सेवा दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और वहां पर नक्सलवादी जो क्षेत्र है ज्यादातर, तो अभी उसमें काफी परिवर्तन आ गया ये भी आपने बताया है। और पहले लड़कियों को, बच्चियों को नहीं पढ़ाते थे, लेकिन अभी बच्चियों को जो है अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। और सरकारी स्कूल के साथ प्राइवेट स्कूल्स भी हर डिस्ट्रिक्ट में वहां पर अभी है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हां, करियर ऑप्शन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बीके काकोली जी से हमारी बातचीत हो रही है, शिक्षा विभाग से आप जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज के समय में जैसे कि आपने बताया कि सरकार जो है इंटरव्यूज वगैरह भी लेती है और प्रॉपर तरीके से जो है सिलेक्शन होता है, तो अभी बच्चे जो है जो करियर बनाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे, कैसी उसकी तैयारी करें?
1: उनको अपने रुचि के अनुसार जो है सब्जेक्ट का चॉइस करना पड़ेगा
0: जी।
1: पहले तो बच्चों को ये नहीं पता होता है कि जो है हमें वकील बनना है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, कई और भी साइड्स है, खेल है और आईटी सेक्टर जा सकते हैं, एमबीए करना है, उससे किससे क्या कौन सी डिग्री प्राप्त होती है और उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करना पड़ता है टेंथ में के बाद में, क्योंकि टेंथ तक ऑल सब्जेक्ट होता है और उसके बाद में जो सब्जेक्ट का चॉइस होता है वही उनके कैरियर को आगे बढ़ाता है। तो इसलिए सब्जेक्ट के चॉइस पर जो है विशेष ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए काउंसलर से जो है या तो जो उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं टीचर्स हो या पेरेंट्स हो, उनसे जो है सलाह परामर्श करके वो जो है सब्जेक्ट का चयन करें जिससे उनको जो बनना है उस सब्जेक्ट पर जो है फोकस हो। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो है डीएड कर लेते हैं, मतलब जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए डिग्री चाहिए होती है और उसके बाद में वो फॉरेस्ट में कर रहे हैं तो कहीं और जो है कर रहे हैं, क्योंकि उसको वो इंटरेस्ट ही समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है। तो इसीलिए पहले से ही उनका जो है वर्ष खराब ना हो, इसीलिए सब्जेक्ट का चॉइस और जो है परफेक्ट अपने को जान करके मेरी रुचि किस साइड है, मैं वो कर पाऊंगा या नहीं, उसको जो है कदम आगे बढ़ाना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे अभी जैसे आपने बताया कि कोई लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन फिर वो वहां पहुंच नहीं पाते, तो क्या ऐसा होता है कि जो डिग्री हासिल किया उस अनुसार वो जाना चाहिए था बच्चों को, तो फिर वो दूसरी जगह क्यों डाइवर्ट हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है?
1: उसको जो है पता बाद में चलता है कि मुझे तो इंटरेस्ट था, दे सब कर रहे थे इसलिए मैंने कर लिया, ट्रेनिंग कर लिया, खाली नहीं बैठे रहो, ट्रेनिंग करो और कॉलेज भी साथ साथ करो। लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होते हैं तो उनको पता चलता है कि ये जो है इससे ज्यादा अच्छा जॉब भी हम कर सकते हैं। टीचर लाइन तो सबके लिए नहीं है, टीचर हर कोई नहीं बन पाता है, बोल नहीं पाता, एक मजबूरी से करना अलग होता है, एक खुल के दिल से करना अलग होता है। तो किसी को बाबू का काम पसंद आता है तो बाद में वो फिर उसमें डीओबीओ में देखो जाकर वो कर रहे हैं, तो मैं हैरान होती हूँ कैसे, क्योंकि मैंने जो है वहां पर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में मैं 4 साल डेप्यूटेशन में वहां भी काम की हूँ, तो जो दायित्व में 4 साल के लिए जब पढ़ाई, वो बच्चे जो है अभी अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं जो कि वो शिक्षा के लिए है कि वो प्राइवेट पढ़ाएंगे, तो उसको देख करके इसलिए मैं जो है श्रोताओं से ये कहना चाहूंगी कि सब्जेक्ट का चयन खासकर 10वीं के बाद में वो जो है बहुत अपनी रुचि को ध्यान में रखकर, ताकि उनका जो है साल खराब नहीं हो, कोई अच्छा मार्गदर्शन से पूछ करके तो वो आगे बढ़े।
0: बिल्कुल,
1: तो उनका साल खराब नहीं होगा।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और इसके साथ में एक और बात आती है कि क्या वहां पर काउंसलिंग वगैरह सरकारी इसमें बच्चों का करियर के लिए कुछ प्रोग्राम्स होते हैं क्या?
1: हाँ, अभी जो कलेक्टर है वो शुरू करवाई है, पिछले 2-3 सालों से मैं देख रही हूँ कि बच्चों को ना काउंसलिंग दी जा रही है, तो क्या कौन क्या बनना चाहता है ये वाली हो रही है, और इसके पहले ऐसा नहीं था। उससे पहले तो हम ही क्लास में बताते थे, तो जो बच्चे हैं आज भी मुझे याद करते हैं कि मैम आप हमको जो बताते थे वो बहुत हमारे लाइफ में काम

0: आया और वो
1: शायद
0: कहीं ना कहीं से पता चला होगा कि करना चाहिए, तो मैं अपने जिले में बिल्कुल मार्गदर्शन देते रहती हूँ, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर जो है सलाह बहुत जरूरी है, तो पूछते रहते हैं। और जब से ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन की हूँ, 13 साल हो रहे, तब तो ऐसा हो गया है कि मेरे स्कूल का रिजल्ट देखकर 11 साल से 100% आ रहा है, फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन, नो थर्ड, नो फेल, नो सप्ली। जिले में कोई स्कूल में 4 साल तक आया था, लेकिन ये जो अनोखा प्रयोग जो है, अनुभव, ये जो है हमारे पूरे जिले में जो है, रायपुर में भी कोई बाहर की टीम आती है तो हमारे स्कूल भेजते हैं कांकेर के स्कूल को देखना, रहने की व्यवस्था जैसे है बच्चों के, फिर पढ़ाई का रिजल्ट अच्छा हो रहा है। और इस साल तो मैंने टॉप 10 में आएगा पहले से बोल दिया, किसके दम पर बोला है, कौन हमारा साथी है। तो जब ऊपर वाला हमारा साथ है तो फिर क्या डरने की बात है,
1: बिल्कुल
0: संकल्प करो। और बच्चों को भी ट्यूनिंग दे दी, ठीक
1: है, सही बात है,
0: बिल्कुल, घंटे में 1 मिनट जो है पावर लेते रहो, पावर हाउस से जुड़कर, और अपने को चार्ज करते रहो और पढ़ाई याद रखो,
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: दे दिया।
1: तो अभी जैसे कि आपने बताया काउंसलिंग का भी अभी जो है शुरू हो गया, नया कलेक्टर आया है, तो ये एक अच्छी चीज है कि बच्चों को पढ़ाते वक्त ही उनको अगर काउंसलिंग का भी अच्छा से मार्गदर्शन मिले और करियर में क्या क्या कर सकते हैं, किस किस तरह की चीजें हैं, ये अगर बच्चों को पहले से बता दे तो बहुत ही अच्छा होता है। और खास इलाका जैसे कि छत्तीसगढ़ है, नक्सलवादी इलाका है, तो वहां पर अभी ये सारा बदलाव हो रहा है, ये सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा। तो मैं चाहूंगा कि वहां पर अभी सिर्फ लड़कियों को ही सरकार पढ़ा रही है कि लड़कों को भी पढ़ाती है फ्री में?
0: लड़कों को जो है बुक्स बस मिलते हैं, बाकी उनको खर्चे करने पड़ते हैं घर वाले, क्योंकि लड़के लोग के लिए तो घर वाले ऐसे ही रेडी रहते हैं, तो सरकार उसमें खर्चा नहीं करे, लड़कियों के लिए करती है बस।
1: अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो अभी जैसे कि नई नई चीजें आ रही हैं, और क्या आपके स्कूलों में वगैरह कंप्यूटर्स वगैरह लगे हुए हैं क्या?
0: हाँ, कंप्यूटर शिक्षा तो जरूरी हो गया आज के डेट में, तो कंप्यूटर के लिए नए अभी मतलब हमारे स्कूल का रिजल्ट आने के बाद से सरकार इतनी बजट दे रही है, यहाँ से ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट, अब जो है कंप्यूटर के लिए अलग रूम हो गए, लाइब्रेरी के लिए अलग हो गए, और जो है क्लासेस के लिए भी अलग से मतलब सुविधाएं दे रही है, तो समझो मतलब पांचों उंगली घी में हमारे स्कूल का सिर्फ रिजल्ट की वजह से।
1: अच्छा,
0: और इस साल तो दूसरे जिले से भी आए, जैसे मैंने बताया ना, जिले में एक स्कूल होता है सरकारी जो है सहायता मिलता है उनको,
1: तो दूसरे जिले से,
0: हाँ, दूसरे स्कूल से भी हमारे स्कूल में आए, तो हम जो है काउंसिलिंग के समय पूछ रहे थे कि आपके स्कूल में है, जिले में स्कूल है तो आप वहां पास पड़ेगा, वहां क्यों नहीं जाते हो, तो चुप है, मतलब समझ जाओ कि एक दो लोग फिर पूछते हैं तो नहीं रिजल्ट है आपके स्कूल का, ये कहते हैं धीरे से। तो रिजल्ट तो देखो, पढ़ाई हर स्कूल में होती है, हर टीचर दी बेस्ट देता है, और हर बच्चा जो है अपना यथासंभव प्रयास करता है, लेकिन मैंने ये जो प्रयोग राजयोग का प्रयोग किया, इससे मुझे इतने ये समझ में आई है कि जो पावर है ना वो काम करती है, क्योंकि हर स्कूल में पढ़ाई होती है लेकिन रिजल्ट कैसे आता है
1: ये हर एक का अलग अलग है।
0: हाँ, तो
1: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हम लोग जो है रिजल्ट्स के कारण सरकार भी जो है अवेयर हो जाती है और उसके लिए अच्छा फंड देकर स्कूल को जो है समृद्ध संपन्न बना रही, ये आपने बताया। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सबको?
0: मैं यही देना चाहूंगी कि राजयोग मेडिटेशन अपने नियरेस्ट ब्रह्म कुमारी सेंटर जाकर, या यूट्यूब में अगर सुविधा नहीं हो, यूट्यूब में डला हुआ है डॉक्टर दामिनी सिस्टर शिवानी इनके जो कोर्सेस है day 1 day 2 करके, तो बिल्कुल जो ये जो है स्वस्थ रहने के लिए भी जरूरी है और याददाश्त तेज होने के लिए भी जरूरी है। और 7 दिन का जो कोर्स का तो अलग ही महत्व है, जो मैंने अभी बताऊंगी, जो छत्तीसगढ़ के बाल कलाकार कैसे बनी वो, तो तीनों क्षेत्र में मैंने प्रयोग किया, संगीत में, स्वास्थ्य में और शिक्षा में,

0: तो मैंने देखा कि ये 100% जो
1: काम
0: है
1: करता।
0: काम करता है और जो अपनाता है उसको जो है चारों तरफ से जो है फायदे ही फायदे होते हैं।
1: जी।
0: 7 days जरूर जो है कोर्स के, क्योंकि वो जो है पावर हाउस ऊपर बैठा है महाज्योति से जुड़कर अपने सोल को, जो तिलक बिंदी लगाते हैं, ये जो आत्मा यहाँ है इसका ज्ञान नहीं है मनुष्य को, तो जब चार्जिंग होती है तो उससे बहुत बेटर फायदे होते हैं, जिसको कि वो करके देखेंगे तभी पता चलता है।
1: जी जी,
0: जरूर सीखे।
1: तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने कोट किया आखिरी में। और राजयोग यानी ऊपर वाले से पावर लेने की विधि है, और इस विधि को सीखकर अगर आप अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा जो है बेनिफिट मिल जाता है। तो चलिए, आप सभी विद्यार्थी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करें आप और देश का नाम रोशन करें, इन शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। काकोली जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और आप सभी को भी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: शुक्रिया करते हैं परमात्मा का जो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। शुक्रिया करते हैं उन डॉक्टर्स और सुरक्षा कर्मियों का जो दिन रात सेवा कर रहे हैं। शुक्रिया करते हैं उन प्रत्येक देशवासियों का जो हरेक नियमों का पालन कर रहे हैं और घर बैठे एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं.
1: लकडी की काठी, काठी पे घोडा.
0: मनात बीट्स वाजल्या की शरीर अबॉब फिरकतं. त्याचसोबत
2: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध.
0: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा.
3: पहला नशा, पहला खुमार.
0: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
4: नमस्कार, मैं हूँ पेंटल. आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियाँ बांटो.
5: रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियाँ बांटो. प्रस्तुत है ज्ञान चिंतन.
6: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM. हमेशा की तरह मैं आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और आज का विषय है शांति. चलिए हम आज शांति पर चिंतन करते हैं. आज की इस दौड़भाग भरी जिंदगी में शांति एक ऐसी अवधारणा है जिसे हम सभी जीवन के विभिन्न पहलुओं में अनुभव करना चाहते हैं. यह केवल बाहरी स्थिति नहीं बल्कि यह आंतरिक मानसिक अवस्था भी है जो हमें संतुलित, सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीने में मदद करती है. शांति का अर्थ न केवल युद्ध या संघर्ष के अभाव से है बल्कि यह आंतरिक संतोष, मानसिक शांति और सुख का अनुभव भी है. शांति का अनुभव व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक दृष्टिकोण से समृद्ध करता है. वर्तमान समय में शांति की आवश्यकता और भी बढ़ गई है. समाज में बढ़ते तनाव, मानसिक दबाव, हिंसा, आतंकवाद और प्रतिस्पर्धा ने शांति की आवश्यकता को और भी स्पष्ट कर दिया है. लोग रोजाना की जिंदगी में नकारात्मकता, चिंता और तनाव का सामना कर रहे हैं जो उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं. इस स्थिति में शांति केवल बाहरी संघर्षों का समाधान नहीं है बल्कि यह मानसिक संतुलन और आत्मा की शांति की ओर एक मार्ग है. धार्मिक दृष्टिकोण से भी शांति का अत्यधिक महत्व है. हिंदू धर्म में शांति को एक सकारात्मक और पवित्र गुण के रूप में माना जाता है. भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यह कहा है कि जो अपने भीतर शांति रखता है वही बाहरी दुनिया में भी शांति का अनुभव करता है. बौद्ध धर्म में शांति को निर्वाणा की स्थिति मानी जाती है जो जीवन के सभी दुखों और क्लेशों से मुक्त है. इस प्रकार इस्लाम धर्म में भी शांति का महत्व है और इसे सलाम के रूप में व्यक्त किया जाता है जिसका अर्थ होता है संपूर्ण शांति. शांति प्राप्त करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं. सबसे पहले व्यक्ति को अपनी सोच और मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहिए. नकारात्मक विचारों से मुक्त होकर हमें जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए. योग और प्राणायाम जैसे मानसिक और शारीरिक अभ्यास शांति के लिए अत्यंत प्रभावी हैं. यह न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं बल्कि मानसिक शांति और स्थिरता भी प्रदान करते हैं. इसके अलावा आत्म मंथन और ध्यान भी शांति प्राप्त करने के उपाय हैं. जब व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनता है और आत्मा के साथ एकता महसूस करता है तो उसे वास्तविक शांति का अनुभव होता है. बाहरी संसार के संघर्षों और परेशानियों से ऊपर उठकर हमें अपने भीतर की शांति को खोजने का प्रयास करना चाहिए. अंततः शांति केवल एक व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं है बल्कि यह समाज और देश की भी आवश्यकता है. जब समाज में शांति होती है तो लोग एक दूसरे के साथ सहयोग और भाईचारे के साथ रहते हैं और समाज में अपराध, हिंसा और युद्ध की संभावना कम होती है. शांति का प्रसार समाज में समृद्ध विकास और सौहार्द का कारण बनता है. इस प्रकार शांति एक अमूल्य धरोहर है जिसे हमें अपने जीवन में स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए. शांति ही जीवन का वास्तविक सुख है और यही हमें आत्मिक संतोष और मानसिक शांति की ओर मार्गदर्शन करते हैं. तो दोस्तों, ये था मेरा आज का चिंतन शांति के ऊपर. फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ. बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहें इसी तरह प्यार से. खुश रहें, खुशियां बांटें.
5: हम आशा करते हैं कि आज की ज्ञान चिंतन ने आपके मन में नई सोच और नए विचारों को जगा दिया होगा. साथियों बने रहें और अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे. रेडियो पुनेरी आवाज पर खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया, और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो। कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड। जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार हैं गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: आप भी ऐसे ही एक किनारे पर खड़ी थी, वक्त के भंवर पैरों से लिपटे हुए थे, वक्त की गर्दिश तेज थी और पांव रोके नहीं रुकते थे।

0: नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. मी स्मिता जयकर, आनंदी रहा, आनंद वाटा.
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. सिस्टर शिवानी हमारे साथ है. वेलकम सिस्टर.
2: ओम शांति.
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन.
2: थैंक यू
1: सिस्टर. आपसे बात हो रही थी संस्कारों की, लेकिन उस पर वर्क करते करते मैं सोच रहा था कि भाई खाना पीने में आप वेजिटेरियन हो गए और सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ गए और मतलब जो थोड़ी बहुत आदतें थी ऊपर की छोड़ दी, लेकिन जो अंदर है संस्कार जिसे नेचर कहते हैं.
2: yes.
1: और मैं उसको समझता था ये तो मेरा बेसिक नेचर है यार, हाउ कैन आई चेंज माई सेल्फ, कांट आई बी नेचुरल. मतलब जो मेरा बेसिक नेचर है ना उसको मेरा मन बताता है और मुझे बड़ी अच्छी लॉजिक देता है, कहता है यू हैव टू बी नेचुरल ना. नेचर थोड़ी बदल सकता, आज पैदा ही ऐसा हुआ.
2: इस लाइन को आज पकड़ लेते हैं, यू हैव टू बी नेचुरल, दिस इज योर नेचर. तो मुझ आत्मा की नेचर जो है मुझे उस अनुसार ही व्यवहार करना है. दैट्स श्योर कि जो मेरी नेचर है मुझे उस अनुसार बिहेव करना है, लेकिन इम्पोर्टेंट इज टू नो कि मेरी नेचर क्या है. दैट इज इम्पोर्टेंट. ये कपड़ा व्हाइट है तो इसका कलर क्या है? ये व्हाइट है. अब हम कहें इसका ओरिजिनल कलर क्या है?
1: व्हाइट
2: है. अब पूरा दिन इसको पहना तो कहीं कुछ दाग, कहीं मिट्टी, कहीं कुछ चिकड़, कहीं कुछ और, कहीं कोई पत्ता गिरा, कहीं कुछ खाने की चीज गिरी, तो रात तक पहुंचते पहुंचते इस पर कई दाग लग गए. किसी ने आकर कहा कितने दाग लग गए, कितने मैले हैं, इसको साफ करो. लेकिन उस पूरे दिन के अंदर मुझे ये भूल गया अवेयरनेस कि ये ऊपर से लगे दाग है.
1: इससे पहले ये वाइट थी,
2: वो तो भूल ही गया. मुझे लगा ये ऊपर से जो लगे दाग हैं ये इसका डिजाइन है. तो मैंने बोला इसको क्या उतारना है, इस दाग को, ये तो इसका डिजाइन है. सामने वाले ने कहा ये इसका डिजाइन नहीं है, ये ऊपर से लगा दाग है. तो मैं कहा नहीं, जब से मैंने इसको देखा है तब से तो इसका डिजाइन ऐसा ही है. इसलिए जो आपने कहा जब से मैं पैदा हुआ, चाहे वो पेरेंट्स फैमिली से कुछ संस्कार मिले, किसी ने कहा आप किस मंथ में पैदा हुए तो उस जोडियक साइन के अनुसार आपके संस्कार हैं, ये संस्कार हैं, लेकिन ये आत्मा की ओरिजिनल नेचर नहीं है. दो चीजों में बहुत फर्क है. वो जो

0: बात सुन के देख रहा हूं कि एक चीज छोड़ने में ना एक कोई एक, एक कहीं एक कॉन्फिडेंस और शक्ति आते, ये तो बहुत आसान है।
1: क्योंकि एक आत्मा ने अपनी आदत पर विजय पाई है तो विल पावर बढ़ेगी, आत्मा की शक्ति बढ़ेगी ना। एक डिपेंडेंसी को छोड़ा अगर तो शक्ति बढ़ेगी। अब जैसे ही आत्मा की शक्ति बढ़ी और एक चीज आत्मा ने कर ली है तो दूसरी बार करना
0: आसान है,
1: आसान। तीसरी बार और आसान है, आपकी ब्रेन की वायरिंग हो जाएगी। रोज ने कहा ना, रिपीटेड बार बार करेंगे तो अगली बार फास्ट होता जाएगा।
0: और जैसे हमारी बुरी आदतें ऑटोमोड पे चले जाती है, हो सकता है ये भी चली जाए।
1: हो सकता है, नहीं
0: हाँ।
1: हो सकता है, क्यों?
0: मतलब
1: एनीथिंग डन रिपीटेडली हो सकता है, क्यों? ऐसे थोड़ी है कि बुरी आदतें ऑटोमेटिक मोड में जाती है और अच्छी वाली नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी? दे हैव टू गो। वो ऑटोमेटिक मोड में जाना ही है क्योंकि वो लूप बन जाएगा।
0: मैं आदतों की बात नहीं कर रहा था, मैं कॉन्फिडेंस ऑफ
1: संस्कार परिवर्तन करने की आदत भी हो जाएगी।
0: हाँ, उसकी बात कर रहा था। संस्कार परिवर्तन करने की जो शक्ति है इतनी बढ़ जाएगी कि मैं एक सेकंड में सोचोगे हटाने तो हटा दिया। आज से नहीं करना, नहीं करना,
1: नहीं करना।
0: आज से ऐसा नहीं बोलना, नहीं बोलना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आज से इससे ऐसा नहीं कहना, ठीक है, हो गया। क्योंकि आत्मा का अपने ऊपर जो कंट्रोल है, जो पावर है, वो बढ़ गई है। इसको कहेंगे आत्मा राजा मालिक।
0: पर सोचे जाए तो याद तो मेरे में पहले भी थी, ये वाली इतनी स्ट्रेंथ।
1: हाँ,
0: इस आदमी से बात नहीं करना, आई हेट हिम टू हेट हिम।
1: तो आदत तो होती
0: मतलब
1: है,
0: मतलब शक्ति तो थी ना।
1: आत्मा में शक्ति तो है ही। एनर्जी, एनी एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर अ गुड पर्पस, सेम एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर अ डैमेजिंग पर्पस ऑल्सो। वही आत्मा की शक्ति, केयर, कंपैशन, फॉरगिवनेस, लव, एक्सेप्टेंस, ये भी क्रिएट कर सकती है।
0: तो हम लोग एक एक्वायर करेंगे इनको, ये
1: नहीं, आत्मा की शक्ति है ना जो ये
0: बाय बर्थ होते हैं ना,
1: आत्मा की शक्ति है ना, लेकिन जो ये फीलिंग्स क्रिएट कर सकती है। ये आत्मा की शक्ति है और वो ही आत्मा की शक्ति एंगर, हेट्रेड, रिजेंटमेंट, फियर, वो भी क्रिएट कर सकती है। आत्मा तो सेम ही है, क्या क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है? न्यूक्लियर एनर्जी है, इलाज के लिए यूज करनी है या युद्ध के लिए यूज करनी है? शक्ति तो सेम ही है। शक्ति का उपयोग करने वाला डिसाइड करेगा कि शक्ति को किस डायरेक्शन में और किस कार्य के लिए उपयोग करना है। अब जैसे आपने कहा, अब इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये छोड़ना है, ठीक है, हो गया। ये करना है, ठीक है, हो गया। क्यों? क्योंकि एक बार दो बार करने से आत्मा को ये अपने ऊपर विश्वास हो जाता है कि मैं जो डिसाइड करूं मैं कर सकता हूं। वी स्टार्ट टेकिंग गारंटी ऑफ आर सेल्फ एंड दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट।
0: ऐसा हुआ था कि आज से कुछ साल पहले एक आयुर्वेद डॉक्टर के पास गया था, मैं स्किन में कुछ रैशेज प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो बोल रहा था कि आई कैन ट्रीट यू लेकिन आपको नॉन वेजिटेरियन छोड़ना होगा। मैंने बोला तुम पागल हो, फिर इंग्लिश दवा दे दो, कोई और दे दो, मेरे से ये नहीं होता।
1: जिस क्षण उस टाइम आत्मा ने कहा ये मेरे से पॉसिबल नहीं,
0: हाँ,
1: मैं कर नहीं पाऊंगा, उस क्षण आत्मा क्या कह रही है? मेरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, कि मुझे मालूम है ये मेरे लिए सही नहीं है लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा। मतलब मुझ आत्मा का अपने कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं, मैं गुलाम।
0: लेकिन अब क्या हुआ आफ्टर जो मेडिटेशन आपने कहा और ये अवेयरनेस की बात हुई और उसमें थोड़ा सा वर्क किया, ज्यादा नहीं, तो कुछ दिन पहले अबाउट लास्ट मंथ मुझे डॉक्टर ने बोला देखो मैं आपको 40 डेज का डाइट प्लान देता हूं लेकिन आप मीठी चीज नहीं लेना, शक्कर चाय में तक नहीं डालना। उस दिन से वो तो मैं ओके, तो ही सेड ओके, इतना आसान है? मैं हाँ, आज से नहीं लेना, आपने बोल दिया ना। तो फिर को फोन करके पूछता है दो तीन, आर यू श्योर? मैंने बोला, उसको मालूम था कि मिठाई खाए बिना मैं खाना नहीं खाता, मतलब मुझे चाहिए चाहिए। उस दिन से आज तक नहीं लिया।
1: वो आत्मा जो गुलाम थी, वो आत्मा अब क्या बन गई? मालिक। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इन हाउ वी फील व्हेन आवर लाइफ

0: comes like this?
1: First of all, I am feeling very light.
0: Light.
1: Ek heaviness jo thi na, ek achieve sa burden tha, I don't know what. Usko main experience kar sakta hun, lekin words mein itna nahi bol paunga. Ek lightness lagti hai, aur ek apne aap se pyar lagta hai. Which I never had before.
0: Yes.
1: I have realized this new thing.
0: Yes.
1: Main itni apne aap se nafrat karta tha, main kamzor, main ye, main wo, main jab out of time bol deta hun, jisse nahi baat karni usko bhi help kar deta hun, baad bhi yahi hota hai. I don't know when will I change, almost cursing myself. Apna in choti choti baaton se bhi na, thoda sa I have started liking my own self.
0: Why? Why is this happening? Kyunki atma ke jo daag hai, wo mitte ja rahe hai. To jo atma ki original color hai, वो इमर्ज हो रही है और वो ओरिजिनल कलर तो बहुत प्यारी है तो वो प्यारी ओरिजिनल कलर को देखकर हम खुद खुद से प्यार करने लग जाते हैं जैसे वो आत्मा की ओरिजिनलिटी हमें दूसरों में अच्छी लगती थी तो अपने में इमर्ज होगी तो अपने में भी तो अच्छी लगेगी ना
1: बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है अब तो बहुत मतलब विदाउट माई नॉलेज अभी पैकिंग कर रहा था शूटिंग में जाने के लिए तो उस पेटी जिसमें मैंने लड़के को बोला ये सामान डाल दे तो उसमें शॉल पड़ी थी मैंने हटाओ ना गर्मी हो
0: हाँ।
1: आप रहने दो ना आपको कौन सा उठाना है
0: हाँ।
1: प्लेन में ही जाना है
0: हाँ।
1: ये अगर कोई पहले बोलता
0: हाँ।
1: तो मतलब तुम मुझे सिखा रहे हो मतलब क्या क्या हो जाता
0: हाँ।
1: तो मैंने बोला अच्छा रहने दे हाँ। अभी तक पड़ी है
0: हाँ।
1: तो ले आया मैं व्हाट इज दिस
0: दिस इज व्हाट दिस इज द ओरिजिनल नेचर ऑफ द सोल
1: आई एम शॉक्ड
0: You're shocked seeing your own original nature. Yes, क्योंकि बहुत समय से देखी नहीं है ना
1: मतलब स्टाफ तू मुझे समझाता है इतने हजार रुपए पर मंथ में
0: दिस इज ईगो ईगो क्या करेगा ये तर्क देगा उस समय हमें वो तर्क सही लगेगा उस समय आपके पास बहुत सारे जस्टिफिकेशन हो सकते हैं एक गर्मी उसमें गर्मी में शॉल चाहिए दूसरा ये कौन ये मेरे को सिखाएगा इसको कुछ समझ है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ वहाँ मौसम कैसा है ये मुझे बता रहा है कि वहाँ शॉल लेके जा दिस इज ईगो स्पीकिंग
1: और ये भी नहीं है कि मुझे इतने काम है पहले अब तेरे को सिखाने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास जो बोला इतना कर जैसे बोला उतना सुन पहले से बोलता था तेरे को बोला ना हटा दे
0: अब जब ये सब क्रिएट होता था तो अंदर भी
1: वो जो बात आई थी ना लाइकिंग माई सेल्फ
0: माई सेल्फ एंड अब जो रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ इसमें आई एम फीलिंग नाइस एंड मेकिंग अदर पीपल फील नाइस
1: उन सबसे ऊंचा और सबसे बेस्ट फीलिंग यही कि आई एम लाइकिंग माई सेल्फ व्हिच आई नेवर हैड
0: यू आर लाइकिंग योर सेल्फ बिकॉज यू आर फीलिंग नाइस जब अंदर यहां ईज होगी शांति होगी कोई उथल पुथल नहीं चल रही है We will like ourselves. अब उथल पुथल अंदर नहीं चल रही तो औरों को भी प्यारी वाइब्रेशन भेजी है वहां से भी अच्छी आ रही है तो वी आर फीलिंग नाइस ये धीरे धीरे जब बढ़ेगा हमें ऐसा लगेगा कि क्या किया आज वाई एम आई फीलिंग नाइस क्योंकि आज तक तो जीवन में बहुत मेहनत करते थे टू फील नाइस
1: आई नो कितने
0: कुछ करना होता था ना टू फील नाइस
1: एडिक्शन हो गई थी नाइस फील करने के चक्कर में
0: इवन लाइक जीवन में कुछ होना चाहिए टू फील नाइस जैसे बच्चा आज फर्स्ट आ गया कोई घर में कुछ है किसी ने कोई मतलब समथिंग हैड टू हैपन टू फील नाइस
1: त्योहार है
0: कुछ भी और अब कैसा लगता है मेडिटेशन करने के बाद कि कुछ हुआ नहीं आज सारा दिन में कुछ किया नहीं है कोई ऐसी ओकेजन नहीं आई कोई बात नहीं आई आई एम फीलिंग नाइस दिस फीलिंग नाइस इज माई ओरिजिनल कलर तो जब ये ओरिजिनल कलर इमर्ज होता है तो आत्मा को बहुत ईज एंड रिलैक्स्ड फील होता है ये ईज एंड रिलैक्स्ड जो कुछ मिनट मेडिटेशन के दौरान होता है फिर ये सारा दिन में भी रहने लगता है द मूड द फीलिंग जो मेडिटेशन के एक्सपीरियंस में क्रिएट होती है क्यों क्रिएट होती है क्योंकि उस टाइम हमने प्योर थॉट्स क्रिएट किए सपोज हमने एक थॉट क्रिएट की I am a master of this body. मैं मालिक हूं मैं एक प्योर आत्मा हूं दो मिनट भी अगर ये थॉट क्रिएट की एंड मन वो ही थॉट से चल रहा है तो केमिकल्स अलग सिक्रीट हो गए अंदर ब्रेन में अलग मैसेजेस चले गए बॉडी को अलग सिग्नल्स चले गए आत्मा एंड बॉडी बोथ फील्स एट ईज अब ये कुछ देर के लिए है अगर इसको जीवन में ट्रांसलेट नहीं किया मतलब

0: मेडिटेशन से गुस्सा करने लगे, डांटने लगे, ये किया, तो वो थोड़ी देर का एक्सपीरियंस रह जाता है. सो दैट्स व्हाई पीपल नाउडेज से आई फेल्ट ब्यूटिफुल ड्यूरिंग माई मेडिटेशन. वहां गए मेडिटेशन रिट्रीट की, बहुत शांति थी, बहुत अच्छा लगा. वापिस आए तो वापिस में तो स्ट्रेस हो गई, टेंशन तो हो गई, बिजनेस में थोड़ी वो वाला एक्सपीरियंस होने वाला है. वो वाला एक्सपीरियंस कहाँ होना था? ड्यूरिंग द मेडिटेशन रिट्रीट. राजयोग में हम क्या अटेंशन रखते हैं? जो मेडिटेशन के दौरान हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जो उस एक्सपीरियंस को क्रिएट कर रहे हैं, उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे, जिएंगे. जैसे ही उसको जीना शुरू करेंगे, जो मेडिटेशन के दौरान फीलिंग आ रही थी लाइटनेस की, वो सारा दिन में आने लगेगी. धीरे धीरे आत्मा इस स्टेज पे पहुंचेगी कि क्राइसिस होगा सामने, चैलेंज होगा, केओस होगा, आसपास के लोग टेंशन में होंगे, हम वही लाइटनेस की फीलिंग में होंगे.
1: क्योंकि हम फिर सोल कॉन्शियसनेस में,
0: हैं. सिर्फ ईगो कॉन्शियसनेस की वजह से आत्मा डिस्टर्ब हो जाती है, उसका सोच टर्बुलेंट हो जाता है, उसके बोल टर्बुलेंट हो जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज हिल जाती है. सर सिर्फ ईगो कॉन्शियसनेस की तरफ. एंड दैट्स व्हाई हु एम आई, ये एक लाइन को अगर ऐसे पकड़ के रखें और उसके थ्रू जीवन को जिए, सब कुछ बदल जाएगा. मन की फीलिंग, शरीर का स्वास्थ्य, आत्मा के रिश्ते, सब बदल जाएगा. काम करने का तरीका बदल जाएगा.
1: लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हुआ माई भी कर लिया, सुबह मेडिटेशन भी कर लिया, उठ के देखा कि चाय टेबल पे रेडी नहीं है, नाश्ता रेडी नहीं है, फिर चिड़चिड़ चाल.
0: हाँ, सो अगेन नेवर माइंड, स्टॉप, चेक, रिफ्लेक्ट, चेंज, हर बार करना है.
1: स्टॉप.
0: सपोज आपने कहा मेडिटेशन किया, अच्छा लगा, उठे, थोड़ी देर में 5 मिनट में चाय नहीं आई टेबल पे, तो गुस्सा कर दिया. कर दिया क्योंकि हमारे पास दोनों वायरिंग है अंदर, दोनों संस्कार है. स्टॉप, पॉज करके उस टाइम अपने आप से पूछे, वॉज दिस राइट, ये करना चाहिए था. अब उस क्षण हो सकता है मन कुछ आंसर देना शुरू करे, ऑब्वियसली इतना भी नहीं उसको पता कि इतने बजे चाय लानी थी. उसको सिर्फ पूछो, वो मालूम है मुझे कि चाय लानी चाहिए थी, लेकिन ये जो मैंने किया, वॉज दिस राइट. टॉकिंग टू योर सेल्फ. मेडिटेशन कोई 2-3 मिनट नहीं चलने हैं. मेडिटेशन मीन्स, फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन इज आत्मा का अपने आप से रिश्ता. दैट इज राजयोग का फर्स्ट स्टेज, अ रिलेशनशिप विद द सेल्फ. आज तक औरों से बहुत रिश्ते निभाए हैं.
1: क्या होता है अपने साथ रिश्ता?
0: अपने आप से रिश्ता. औरों के साथ रिश्ता कैसे होता है?
1: दोस्ती का होता है, प्यार का होता है.
0: हाँ, पर रिश्ते में क्या होता है? किसको कहेंगे कि मेरा इसके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है? तो
1: जिनके साथ बैठ के अच्छा लगता है,
0: अच्छा लगता है.
1: जिनके साथ बैठ के बातें शेयर करते,
0: और
1: जिनके साथ उठते बैठते खाते पीते रहते हैं.
0: यस, अपने आप के साथ करना है. आपने कहा अब मुझे मैं अच्छा लगने लगा हूँ, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अपने आप के साथ रिश्ता. अकेले भी बैठे हैं, अपने आप के साथ अच्छा लग रहा है. वी डोंट फाइंड द नीड टू गो ऑन टॉकिंग टू अदर पीपल.
1: थोड़ा सा प्यारा वाला रिश्ता है ना. पहले तो उल्टा था, आई हेट माई सेल्फ.
0: आई हेट माई सेल्फ क्योंकि हम अपने आप से कड़वी बातें करते थे. अब हम प्यारी बातें करेंगे. अब सपोज आप यहाँ बैठे, मैं यहाँ बैठी हूँ, हमने अभी मेडिटेशन पूरा किया, ठीक है, उठे और मैंने उठकर किसी को यहाँ जोर से डांट दिया कि ऐसे करना था क्या काम, इतनी बार बोला तो भी समझ में नहीं आता, तो मैंने डांट दिया. नाउ यू आर वॉचिंग मी डू दिस. आप देख रहे हैं कि ये मैं कर रही हूं. यू आर अ फ्रेंड, तो आप क्या कहेंगे? अब बताइए मुझे, यू आर अ फ्रेंड,
1: आपको समझाऊं
0: क्या? आप सिर्फ डिटैच्ड होकर देखते रहेंगे कि हाँ ये कर रहे हैं, इतने जोर जोर से डांट रहे हैं?
1: इशारे से ट्राई करूंगा बोलने के लिए.
0: हाँ, क्या बोलेंगे?
1: मैंने बोला
0: तो मैं आपको ही सुनाना शुरू कर दूंगी. आपको दिख नहीं रहा, काम ही नहीं कर रहे हैं ये लोग, ऐसे करो तो ये तो सुनना ही नहीं इन्होंने कुछ भी. अब यू आर अ फ्रेंड, तो क्या करेंगे?
1: रहने से, देखो इससे और काम खराब हो जाएगा. हाँ? अब रहने दो, बाद में शांति से समझा लेंगे. अभी आप शांत हो जाओगे तो आपका भी काम खराब हो जाएगा.
0: अच्छा, आप ये सब क्यों बोलेंगे मुझे?

0: रहने दो ना, मैं गुस्सा कर रही हूँ, छोड़ दो, आप क्यों राय देने आते हैं बीच में.
1: फ्रेंड,
0: दैट्स इट.
1: रिलेशनशिप,
0: मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड. अपने मन का दोस्त. जब देख रहे हैं कि हमने ऐसे गुस्सा कर दिया तो पॉज और अपने आप से बात करें और एग्जैक्टली सेम लाइन कह दें.
1: कभी कभी गुस्सा दूर वाले पे भी आते.
0: दोनों लेते हैं पहले, लेकिन सामने सामने है. जैसे आपने कहा चाय नहीं आई, डांट दिया. ओके, अब अपने आप को बैठेंगे. एक मिनट ही लगता है, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए कि लंबा कुछ रिफ्लेक्शन करना है, नहीं. एक मिनट, जैसे आपने कहा इशारा ही दे दो. अपने आप से बात करिए 30 सेकेंड्स. तो क्या कहेंगे अपने आप को? चेक, क्वेश्चन योर माइंड, वॉज दिस माई राइट रिस्पॉन्स. अपने आप को क्वेश्चन करना है, क्योंकि क्वेश्चन करते ही हम एक नई थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं, आई कुड हैव डन दिस अनदर वे. मैसेज गया.
1: लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ, तू अपने आप को क्यों डिस्टर्ब कर रहे है? हो गई बात पुरानी, पास खत्म ना छोड़ो.
0: हो गई बात
1: अभी
0: पुरानी,
1: और सोच के और क्यों डिस्टर्ब
0: सोच
1: कर
0: नहीं
1: रहे.
0: हम ये नहीं सोच रहे हाय मैंने क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, हर बार मैं करता हूँ. ऐसे नहीं थॉट क्रिएट करनी. ये थॉट रॉन्ग पैटर्न है. सी, ये अब हमें ध्यान रखना है, हर थॉट जो क्रिएट की, एक फैक्ट्री है ना, हर थॉट क्रिएट की एनर्जी रिलीज होगी, ब्रेन के सेल्स में जाएगी, केमिकल्स रिलीज होंगे, फिर टेक केयर. तो हमने ये थॉट नहीं क्रिएट करी क्यों गुस्सा किया, अभी तो मेडिटेशन किया था फिर भी कर दिया, मैं तो सीखता ही नहीं. ये तो एक एक रॉन्ग थॉट है.
1: किचन में हम दूध बनाते हैं तो नींबू को दूर रखते हैं ताकि सारा एक ड्रॉप से पूरा फट जाएगा. यहाँ पर मतलब एक थॉट से इतना डिस्टर्बेंस
0: आएगा, सारी ये चेंज हो जाएगा. तो वो नहीं हम कर रहे. हम क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? वॉज दिस माई राइट रिस्पॉन्स, आस्क. ताकि मन साइलेंट हो गया, गुस्सा तो खत्म हो गया, बात हो गई. अब वो मन कहेगा नहीं, आई कुड हैव डन इट अनदर वे, ये मैं दूसरी तरह से कर सकता था. ये थॉट इतनी इम्पोर्टेंट है,
1: उसके अंदर फिर ड्रॉप हो जाता है मेरा मन.
0: नहीं, चेंज. हाँ. ये भी आदत है.
1: नहीं, यहाँ क्या होता है ना, ऐसे मैं बुरा फील करने रहता हूँ, देखो फिर से कर दिया मैंने, वापिस आ गया मैं.
0: वी आर नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन फिर से कर दिया क्यों कर. नहीं, वी आर क्रिएटिंग अ थॉट फॉर द नेक्स्ट टाइम, जो हो गया उस पर नहीं. जैसे हमने मन से कहा वॉज दिस द राइट वे, कुड आई हैव डन इट अनदर वे, मन कहेगा येस आई कुड हैव डन इट अनदर वे. उस क्षण ये थॉट क्रिएट करने से हमने यहाँ पे एक नई रिकॉर्डिंग शुरू की है. अगर okay. हमने ये थॉट क्रिएट की मेरे से होता ही नहीं. अभी आप सिर्फ एक एक पेपर है, उस पर एक पेंसिल लेते हैं, गोल गोल घुमाते जाते हैं, ठीक है. अब जितनी बार उसको गोल गोल घुमाते जाएंगे, वो जो पैटर्न है वो कितना गहरा होता जाएगा. तो एक बार गुस्सा कर दिया तो नेगेटिव डिजाइन बना, फिर उसके ऊपर गिल्ट भी क्रिएट किया, फिर अपने आप को कोसा भी, फिर अपने आप को फेलियर भी कहा. वो ग्रूव नेगेटिव वाला ही डीप होता जाएगा. कॉन्शियसली अनदर पैटर्न, Yes, I could have done it another way. अब हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम वो ही पैटर्न पर बार बार पेंसिल नहीं घुमाते जाए ऐसे, क्योंकि वो ग्रूव जो है वो बहुत गहरा होगा. अब हमारी थॉट क्वालिटी चेंज है, इसे I could have done this another way. इसको मैं दूसरी तरह से कर सकता था. Another groove. नेक्स्ट टाइम बात आएगी, ये वाला गाना बजने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमने उसका प्रिंट तो बनाया अंदर. लेकिन अगर गिल्ट क्रिएट करते गए तो हमने बेटर ऑप्शन का तो प्रिंट ही नहीं बनाया अंदर. तो नेक्स्ट टाइम फिर गुस्सा कर देंगे, फिर गिल्ट क्रिएट कर देंगे, गुस्सा और गिल्ट का संस्कार फिर पक्का होता जाएगा. एंड इट विल गो इनटू द ऑटोमेटिक मोड. से
1: सही बात है सिस्टर, लेट मी ट्राई दिस टाइम टू मेक अ न्यू वन, अ ब्लैंक वन, एंड पुट ऑल द गुड थिंग्स इन दैट.
0: थैंक यू सो मच.
1: नमस्कार. थैंक यू.
2: The original nature of the soul is like a white cloth, clean and spotless. The acquired sanskars are like the stains that we acquire on the cloth. The stains are acquired. They are not the original design of the cloth. Similarly, any acquired

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफ स्टाइल कहते हैं। लाइफ स्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफ स्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माई लाइफ स्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: बाधाएं आती हैं आए गिरे प्रलय की घोर घटाए, गिरे प्रलय की घोर घटाए, पांव के नीचे अंगारे सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये अद्भुत पंक्तियाँ हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित है। इस महान राजनेता और कवि का जन्म भारत के जिस प्रदेश में हुआ वहाँ का नवाबी अंदाज और प्राचीन इतिहास अपना व्याख्यान खुद ही करता है। चलिए आपको ले चलते हैं कृष्ण और राम की भूमि और काशी की पवित्र नगरी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश भारत की जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। लखनऊ प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी और इलाहाबाद न्यायिक राजधानी है। उत्तर प्रदेश के दूसरे महत्वपूर्ण नगर आगरा, मथुरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, मेरठ, वाराणसी, गाजियाबाद, कानपुर आदि हैं। इस राज्य के पड़ोसी राज्य हैं उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उत्तर प्रदेश के पूर्व उत्तर दिशा में नेपाल देश है। 9 नवंबर सन 2000 को इसमें से अलग करके उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने पर राज्य को अपना वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश मिला था। उत्तर प्रदेश का इतिहास जितना पुराना है उतना ही महत्वपूर्ण भी है। चलिए जानते हैं ऐसे कुछ तथ्य जो यहाँ की इमारतों, कहानियों और गलियों में दबे हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास को 5 कालों में बांटा जा सकता है। प्रागैतिहासिक एवं पौराणिक काल लगभग 600 ईसा पूर्व से लगभग 1200 ईसा, मुस्लिम काल लगभग 1200 से 1775 ईसी, ब्रिटिश काल लगभग 1775 से 1947 ईस्वी तक, स्वतंत्रता पश्चात का काल 1947 से और वर्तमान आज तक। गंगा के मैदान के बीचों बीच की अपनी स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश समूचे उत्तरी भारत के इतिहास का केंद्र बिंदु रहा है। उत्तर वैदिक काल में इसे ब्रह्म ऋषि देश या मध्य देश के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश वैदिक काल में कई महान ऋषि मुनियों जैसे भारद्वाज, गौतम, यज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र और वाल्मीकि आदि की तपोभूमि रहा है। कई पवित्र पुस्तकों की रचना भी यहाँ हुई है। भारत के 2 मुख्य महाकाव्य रामायण और महाभारत की कथा भी यहीं की है। ईसा पूर्व 6 शताब्दी में उत्तर प्रदेश में 2 नए धर्म जैन और बौद्ध का विकास हुआ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और बौद्ध धर्म की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश के कई नगर जैसे अयोध्या, प्रयाग, वाराणसी और मथुरा विद्या अध्ययन के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश मुस्लिम शासकों के अधीन हो गया था, जिससे हिंदू और इस्लाम धर्म के पास आने से एक नई मिली जुली संस्कृति का विकास हुआ। तुलसीदास, सूरदास, रामानंद और उनके मुस्लिम शिष्य कबीर के अतिरिक्त अन्य कई संत पुरुषों ने हिंदी और अन्य भाषाओं के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उत्तर प्रदेश का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है। अब आर्य यहाँ आए और वैदिक सभ्यता का आरंभ हुआ, तभी से यहाँ का इतिहास मिलता है। आर्य सिंधु और सतलुज के मैदानी भागों में यमुना और गंगा के मैदानी भाग की ओर बढ़े। इन्होंने यमुना और गंगा के मैदानी भाग और घाघरा क्षेत्र को अपना घर बनाया। इन्हीं आर्यों के नाम पर

वैदिक साहित्यों और दो महाकाव्यों रामायण व महाभारत से इस क्षेत्र के 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले की जानकारी मिलती है, जिसमें गंगा के मैदानों का वर्णन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किया

गया है। महाभारत की पृष्ठभूमि राज्य के पश्चिमी हिस्से हस्तिनापुर के आसपास है, जबकि रामायण की पृष्ठभूमि पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य में भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या है। राज्य में दो अन्य पौराणिक स्रोत हैं, वृंदावन व मथुरा। रामायण में हिंदुओं के भगवान राम का प्राचीन राज्य कौशल इसी क्षेत्र में था। अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के आठवें अवतार भगवान कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में हुआ था। विश्व के प्राचीनतम नगरों में से एक माना जाने वाला वाराणसी शहर भी इसी प्रदेश में है। वाराणसी के समीप सारनाथ का स्तूप भगवान बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है। समय के साथ साथ यह विशाल क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया और गुप्त, मौर्य और कुषाण साम्राज्यों का भाग बन गया। सातवीं शताब्दी में कन्नौज गुप्त साम्राज्य का प्रमुख केंद्र बन गया था। सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत से भारत और उत्तर प्रदेश का व्यवस्थित इतिहास आरंभ होता है, जब उत्तरी भारत में 16 महाजनपद श्रेष्ठता की दौड़ में शामिल थे। इनमें से 7 वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी बनारस के निकट सारनाथ में दिया और एक ऐसे धर्म की नींव रखी जो न केवल भारत में बल्कि चीन व जापान जैसे सुदूर देशों तक भी फैला। कहा जाता है कि बुद्ध को कुशीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, जो पूर्वी जिले देवरिया में स्थित है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक उत्तर प्रदेश अपनी वर्तमान सीमा से बाहर केंद्रित शक्तियों के नियंत्रण में रहा। पहले मगध, जो वर्तमान बिहार राज्य में स्थित था, और बाद में उज्जैन, जो वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस राज्य पर शासन कर चुके इस काल के महान शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका शासनकाल लगभग 330 से 380 ईस्वी तक रहा, वह मौर्य सम्राट अशोक, जिनका शासनकाल लगभग 268 या 265 238 तक रहा, समुद्रगुप्त जो लगभग 330 से 380 ईस्वी तक रहे, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो लगभग 380 से 415 ईस्वी तक रहे। यहाँ के एक अन्य प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन थे, जिन्होंने कान्यकुब्ज, जो अब आधुनिक कन्नौज के निकट स्थित है, से समूचे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर शासन किया। इस काल के दौरान बौद्ध और हिंदू संस्कृति दोनों का उत्कर्ष हुआ। अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध कला के स्थापत्य, वास्तुशिल्प, प्रतीक अपने चरम पर पहुँचे। गुप्त काल के दौरान हिंदू कला का भी अधिकतम विकास हुआ। लगभग 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु के बाद हिंदूवाद के पुनरुत्थान हुआ। इस पुनरुत्थान के प्रमुख रचयिता दक्षिण भारत में जन्मे शंकर थे, जो वाराणसी पहुँचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मैदानों की यात्रा की और हिमालय में बद्रीनाथ में प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना की। इसे हिंदू मतावलंबी चौथा एवं अंतिम मठ मानते हैं। इस क्षेत्र में हालांकि 1000 से 1030 ईस्वी तक मुसलमानों का आगमन हो चुका था, लेकिन उत्तरी भारत में 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के बाद ही मुस्लिम शासन स्थापित हुआ। जब मोहम्मद गोरी ने गढ़वालों, जिनका उत्तर प्रदेश पर शासन था, और अन्य प्रतिस्पर्धी वंशों को हराया। लगभग 600 वर्षों तक अधिकांश भारत की तरह उत्तर प्रदेश पर भी किसी न किसी मुस्लिम वंश का शासन रहा, जिनका केंद्र दिल्ली या उसके आसपास था। 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और सर्वाधिक सफल मुस्लिम वंश मुगल वंश की नींव रखी। इस साम्राज्य ने 200 वर्षों से भी अधिक समय तक उपमहाद्वीप पर शासन किया। इस साम्राज्य का महानतम काल अकबर का काल था, जिन्होंने आगरा के पास नई शाही राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया। उनके पोते शाहजहां ने आगरा में अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनवाया, जो विश्व के महानतम वास्तुशिल्पीय नमूने में से एक है। शाहजहां ने आगरा व दिल्ली में भी वास्तुशिल्प की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण इमारतें बनवाई थी। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मुगल साम्राज्य ने एक नई मिश्रित संस्कृति के विकास को प्रोत्साहित किया। अकबर इसके महानतम प्रतिपादक थे, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के अपने दरबार में वास्तुशिल्प, साहित्य, चित्रकला और संगीत विशेषज्ञों को नियुक्त किया था। 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के साथ ही इस मिश्रित संस्कृति का केंद्र दिल्ली से लखनऊ चला गया, जो अवध के नवाब के अंतर्गत था, और जहां सांप्रदायिक सद्भाव के माहौल में कला, साहित्य, संगीत और

लगभग 75 वर्ष की अवधि में वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अधिग्रहण किया। विभिन्न उत्तर भारतीय वंशों 1775, 1798 और 1801 में नवाबों, 1803 में सिंधियों और 1816 में गोरखों से छीन गए। प्रदेशों को पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखा गया, लेकिन 1833 में इन्हें अलग करके पश्चिमोत्तर प्रांत, जो आरंभ में आगरा प्रेसिडेंसी कहलाता था, गठित किया गया। 1856 ईस्वी में कंपनी ने अवध पर अधिकार कर सन 1857 में अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों ने बगावत कर दी। यह बगावत लगभग एक साल तक चली और धीरे धीरे यह बगावत पूरे उत्तर भारत में फैल गई। इसी बगावत को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया गया। यह बगावत मेरठ शहर से शुरू हुई, जिसका कारण अंग्रेजों द्वारा गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस थे। इस बगावत की वजह लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति भी थी। यह संग्राम मुख्यतः दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी और बरेली में लड़ा गया। इस संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल, भक्त खान, नाना साहेब, तात्या टोपे आदि अनेक देशभक्तों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश की बौद्धिक श्रेष्ठता ब्रिटिश शासन काल में भी बनी रही। सन 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे यूपी कहा गया। सन 1920 में प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद के स्थान पर लखनऊ

तक सीमित था। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में सैनिकों के बीच भड़का विद्रोह कुछ ही महीनों में 25 से भी अधिक शहरों में फैल गया। 1858 ईस्वी में विद्रोह के दमन के बाद पश्चिमोत्तर और शेष ब्रिटिश भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया गया और 1880 ईस्वी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के साथ संयुक्त प्रांत स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी रहा। प्रदेश ने भारत को मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी राजनीतिक नेता दिए। 1922 में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए किया गया महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन पूरे संयुक्त प्रांत में फैल गया, लेकिन चोरी चोरा गांव में हुई हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने अस्थायी तौर पर आंदोलन को रोक दिया। संयुक्त प्रांत मुस्लिम लीग की राजनीति का भी केंद्र रहा। उत्तर प्रदेश में जन्मे एक और महान स्वतंत्रता सेनानी थे राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने फांसी मिलने से पहले जेल में ही अपनी आत्मकथा लिख डाली थी। बिस्मिल की एक अमर रचना सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, गाते हुए न जाने कितने देशभक्त फांसी के तख्ते पर झूल गए।

0: अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है।
1: 1947 में संयुक्त प्रांत नव स्वतंत्र भारतीय गणराज्य की एक प्रशासनिक इकाई बना। 2 साल बाद इसकी सीमा के अंतर्गत स्थित टिहरी गढ़वाल और रामपुर के स्वायत्त राज्यों को संयुक्त प्रांत में शामिल कर लिया गया। 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और यह भारतीय संघ का राज्य बना। स्वतंत्रता के बाद से भारत में इस राज्य की प्रमुख भूमिका रही है। इसने देश को जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी सहित कई प्रधानमंत्री, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव जैसे प्रमुख राष्ट्रीय विपक्षी दलों के नेता और भारतीय जनसंघ, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी कहलाई, व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता दिए हैं।

उत्तर प्रदेश के गठन के तुरंत बाद उत्तराखंड क्षेत्र जो गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र द्वारा निर्मित है उसमें समस्याएं उठ खड़ी हुई। इस क्षेत्र के लोगों को लगा कि विशाल जनसंख्या और वृद्ध भौगोलिक विस्तार के कारण लखनऊ में बैठी सरकार के लिए उनके हितों की देखरेख करना संभव नहीं है। बेरोजगारी, गरीबों और सामान्य व्यवस्था में पीने के पानी जैसी आधारभूत सुविधाओं की कमी और क्षेत्र के अपेक्षाकृत कम विकास ने लोगों को एक अलग राज्य की मांग करने पर विवश कर दिया। शुरू में विरोध कमजोर था, लेकिन 1990 के दशक में इसने जोर पकड़ा। वह आंदोलन तब और भी उग्र हो गया जब 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर में इस आंदोलन के एक प्रदर्शन में पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में 40 लोग मारे गए। अंततः नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर हिस्से से उत्तरांचल के नए राज्य का, जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्र शामिल थे, गठन किया गया। सन 2000 में भारतीय संसद ने उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यतः पहाड़ी भाग गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को मिलाकर उत्तर प्रदेश को विभाजित कर उत्तरांचल राज्य का निर्माण किया, जिसका नाम बाद में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की अधिकांश झीलें कुमाऊं क्षेत्र में हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख भौगोलिक तत्व इस प्रकार से हैं। आइए अब बात करते हैं यहाँ की भू आकृति की। उत्तर प्रदेश को दो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों, गंगा के मध्यवर्ती मैदान और दक्षिणी उच्च भूमि में बांटा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 90% हिस्सा गंगा के मैदान में है। मैदान अधिकांशतः गंगा व उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों से बने हैं। इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में उतार चढ़ाव नहीं है। यद्यपि मैदान बहुत उपजाऊ है, लेकिन इनकी ऊंचाइयों में कुछ भिन्नता है, जो पश्चिमी उत्तर में 305 मीटर और सुदूर पूर्व में 58 मीटर है। गंगा के मैदान की दक्षिणी उच्च भूमि अत्यधिक विच्छेदित और विषम विंध्य पर्वतमाला का एक भाग है, जो सामान्यतः दक्षिण पूर्व की ओर उठती चली जाती है। यह ऊंचाई कहीं कहीं 305 मीटर से भी अधिक होती है। उत्तर प्रदेश में अनेक नदियां हैं, जिनमें गंगा, घाघरा, गोमती, यमुना, चंबल, सोन आदि मुख्य हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली नदियों के उद्गम स्थान भी भिन्न भिन्न हैं। अतः उनके उद्गम स्थलों के आधार पर इन्हें निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ, गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ व दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियाँ। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 2/3 भाग गंगा तंत्र की धीमी गति से बहने वाली नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी की गहरी परत से ढका है। अत्यधिक उपजाऊ यह जलोढ़ मिट्टी कहीं रेतली है तो कहीं चिकनी दोमट। राज्य के दक्षिणी भाग की मिट्टी सामान्यतः मिश्रित लाल और काली या लाल से लेकर पीली है। राज्य के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में मृदा कंकरीली से लेकर उर्वर दोमट तक है, जो महीन रेत और ह्यूमस मिश्रित है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में घने जंगल भी हैं।

उत्तर प्रदेश मुख्यतः कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की 3/4 यानी 75% से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ और गन्ना राज्य की मुख्य फसलें हैं। 1960 के दशक से गेहूं व चावल की उच्च पैदावार वाले बीजों के प्रयोग, उर्वरकों की अधिक उपलब्धता और सिंचाई के अधिक इस्तेमाल से उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है। पशुधन व डेयरी उद्योग आय के अतिरिक्त स्रोत है। उत्तर प्रदेश में भारत के किसी भी शहर के मुकाबले सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं। हालांकि प्रति गाय दूध का उत्पादन कम है। इसके अलावा हस्तशिल्प, कालीन, पीतल की वस्तुएं, जूते, चप्पल, चमड़े व खेल का सामान राज्य के निर्यात में प्रमुखता के साथ योगदान देते हैं। भदोही व मिर्जापुर के कालीन दुनिया भर में सराहे जाते हैं। वाराणसी का रेशम व जरी का काम, मुरादाबाद की पीतल की खूबसूरत वस्तुएं, लखनऊ की चिकनकारी, नागुआ का अबनूस की लकड़ी का काम, फिरोजाबाद की कांच की वस्तुएं और सहारनपुर का नकाशीदार लकड़ी का काम भी उल्लेखनीय है। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों की संख्या उत्तर प्रदेश में ही सबसे अधिक है। देश के विकास में इस प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आइए अब बात करते हैं शिक्षा की, जो किसी भी राज्य के भविष्य की नींव है। उत्तर प्रदेश राज्य में 16 विश्वविद्यालय, 400 से अधिक संबद्ध महाविद्यालय, कई चिकित्सा महाविद्यालय और विशिष्ट अध्ययनों व शोध के लिए कई संस्थान हैं। राज्य में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और काफी संख्या में पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। यहाँ की संस्कृति पूरे देश भर में मशहूर है। आइए कुछ जाने हम भी। उत्तर प्रदेश हिंदुओं की प्राचीन सभ्यता का उद्गम स्थल है। यहाँ की संस्कृति पूरे देश भर में मशहूर है। उत्तर प्रदेश हिंदुओं की प्राचीन सभ्यता का उद्गम स्थल है। वैदिक साहित्य, महाकाव्य रामायण और महाभारत के उल्लेखनीय हिस्सों का मूल यहाँ के कई आश्रमों में है। बौद्ध हिंदू काल के ग्रंथों व वस्तुशिल्प ने भारतीय संस्कृति की विरासत में बड़ा योगदान दिया है। 1947 के बाद से भारत सरकार का चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए 4 सिंह युक्त स्तंभ, जो वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है, पर आधारित है। वस्तुशिल्प, चित्रकारी,

संगीत, नृत्य कला और दो भाषाएं हिंदी व उर्दू मुगल काल के दौरान यहाँ पर फली फूली। इस काल के चित्रों में सामान्यतः धार्मिक व ऐतिहासिक ग्रंथों का चित्रण है। यद्यपि साहित्य व संगीत का उल्लेख प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में किया गया है और माना जाता है कि गुप्त काल में संगीत समृद्ध हुआ। संगीत परंपरा का अधिकांश हिस्सा इस काल के दौरान उत्तर प्रदेश में विकसित हुआ। तानसेन व बैजू बावरा जैसे संगीतज्ञ मुगल शहंशाह अकबर के दरबार में थे, जो राज्य व समूचे देश में आज भी विख्यात है। भारतीय संगीत के दो सर्वाधिक प्रसिद्ध वाद्य सितार और तबले का विकास इसी काल के दौरान इस क्षेत्र में हुआ। 18वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में वृंदावन व मथुरा के मंदिरों में भक्तिपूर्ण नृत्य के तौर पर विकसित शास्त्रीय नृत्य शैली कथक उत्तरी भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय गीत व नृत्य भी है। उत्तर प्रदेश भारत की राजकीय भाषा हिंदी की जन्मस्थली है। शताब्दियों के दौरान हिंदी के कई स्थानीय स्वरूप विकसित हुए हैं। साहित्यिक हिंदी ने 19वीं शताब्दी तक खड़ी बोली का वर्तमान स्वरूप धारण नहीं किया था। वाराणसी के भारतेंदु हरिश्चंद्र उन अग्रणी लेखकों में से थे जिन्होंने हिंदी के इस स्वरूप का इस्तेमाल साहित्यिक माध्यम के तौर पर किया था। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। साहित्य और भारतीय रक्षा सेवाएं दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें उत्तर प्रदेश निवासी गर्व कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास से लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, सोनलाल द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, राही मासूम राजा, अज्ञेय जैसे इतने महान कवि और लेखक हुए हैं उत्तर प्रदेश में कि पूरा पन्ना ही भर जाए। उर्दू साहित्य में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। उत्तर प्रदेश का फिराक, जोश, मलिहाबादी, अकबर इलाहाबादी, नजीर वसीम बरेलवी, चकबस्त जैसे अनगिनत शायर उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन देश की शान रहे हैं। हिंदी साहित्य का क्षेत्र बहुत ही व्यापक रहा है और लुगदी साहित्य भी यहाँ खूब पढ़ा जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जन्मे नौशाद अली साहिब हिंदी फिल्म उद्योग के प्रसिद्ध संगीतकार रहे हैं, जिन्होंने लखनऊ को कुछ इस तरह अपनी पंक्तियों में सजोया। रंग नया है लेकिन घर ये पुराना है, ये कूचा मेरा जाना पहचाना है, क्या जाने क्यों उड़ गए पक्षी पेड़ों से, क्या जाने क्यों उड़ गए पक्षी पेड़ों से, भरी बहारों में गुलशन वीराना है। अपने फिल्मी जीवन काल में उन्होंने कई फिल्मों में संगीत दिया। इस महान कलाकार के बिना संगीत जगत का नाम अधूरा है। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।

तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एक परिष्कृत शास्त्रीय नृत्य कथक की। कथक उत्तर प्रदेश का एक परिष्कृत शास्त्रीय नृत्य है जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साथ किया जाता है। कथक नाम कथा शब्द से बना है। इस नृत्य में नर्तक किसी कहानी या संवाद को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करता है। कथक नृत्य का आरंभ 6 या 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत में ही हुआ था। प्राचीन समय में यह एक धार्मिक नृत्य हुआ करता था जिसमें नर्तक महाकाव्य गाते थे और अभिनय करते थे। 13वीं शताब्दी तक आते आते कथक सौंदर्य परक हो गया तथा नृत्य में सूक्ष्म अभिनय एवं मुद्राओं पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। कथक में सूक्ष्म मुद्राओं के साथ ठुमरी गायन पर तबले और पखावज के साथ ताल मिलाते हुए नृत्य किया जाता है। कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार पंडित बिरजू महाराज हैं।

फरी नृत्य, जांगिया नृत्य, पावरिया नृत्य, कहरवा, जोगिरा, निर्गुण, कजरी, सोहर, चैता गायन उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति है। लोक रंग संस्कृति समिति इन संस्कृतियों संवर्धन संरक्षण के लिए कार्यरत है। बात करें त्योहारों की तो उत्तर प्रदेश में कई रंग दिखाई देते हैं। यहाँ समय समय पर सभी धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं। इलाहाबाद में प्रत्येक 12वें वर्ष में कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है, जो कि संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद में प्रत्येक 6 साल बाद अर्ध कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। इलाहाबाद में ही प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में माघ मेला भी आयोजित किया जाता है, जहां बड़ी संख्या में लोग संगम में नहाते हैं। अन्य मेलों में मथुरा, वृंदावन व अयोध्या में अनेक पर्वों के मेले और झूले मेले लगते हैं, जिनमें प्रभु की प्रतिमाओं को सोने एवं चांदी के झूलों में रखकर झुलाया जाता है। ये झूला मेले लगभग 1 पखवाड़े तक चलते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा नदी में डुबकी लगाना अत्यंत आस्था से परिपूर्ण है और बहुत ही पवित्र माना जाता है, और इसके लिए गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, राजघाट, काकोरा, बिठूर, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और अयोध्या में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। आगरा जिले के बटेश्वर कस्बे में पशुओं का प्रसिद्ध मेला लगता है। बाराबंकी जिले का देवा मेला मुस्लिम संत वारिस अली शाह के कारण काफी प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ हिंदू तथा मुस्लिमों के सभी प्रमुख त्योहारों को पूरे राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। घूमने फिरने के लिए भी यहाँ कई सुंदर पर्यटन स्थल मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में सभी के लिए आकर्षण की कई चीजें हैं, जैसे आगरा का ताजमहल, यहाँ की प्राचीन तीर्थ स्थानों में वाराणसी, विंध्याचल, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग, नेमिषारण्य, मथुरा, वृंदावन, देवा शरीफ आदि है। यहाँ फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। आगरा, अयोध्या, सारनाथ, वाराणसी, लखनऊ, झांसी, गोरखपुर, जौनपुर, कन्नौज, महोबा, देवगढ़, बिठूर और विंध्याचल हिंदू एवं मुस्लिम वस्तुशिल्प और संस्कृति के महत्वपूर्ण खजाने से भरा है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मत्स्येंद्रनाथ पाटन

0: नामक प्रसिद्ध देवपीठ भी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कला संग्रहालय मौजूद है, उनमें प्रमुख है लखनऊ स्थित राज्य संग्रहालय, मथुरा स्थित पुरातात्विक संग्रहालय, बौद्ध पुरातात्विक संग्रहालय, सारनाथ संग्रहालय। इसके अतिरिक्त लखनऊ स्थित कला एवं हिंदुस्तानी संगीत के महाविद्यालय और इलाहाबाद स्थित प्रयाग संगीत समिति ने देश में कला व शास्त्रीय संगीत के विकास में बहुत योगदान दिया है। नागरी प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन और हिंदुस्तानी अकादमी हिंदी साहित्य के विकास में सहायक रही है। यहाँ अवलोकन के लिए और कई ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल मौजूद है, जैसे लखनऊ स्थित बड़ा और छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, जामा मस्जिद, वाराणसी का दशाश्वमेध घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर आदि यहाँ की नजाकत और नफाजत मशहूर है, तो साथ ही कई महान क्रांतिकारियों के हिम्मत की ताकत भी। यहाँ का शायराना अंदाज सभी की जुबान पर है, तो भक्ति भावना दिल में भी। उत्तर प्रदेश की गलियों से होते हुए अब हम आ पहुँचे हैं इस सफर की समाप्ति की ओर। अलविदा लेते हैं आपसे 29 राज्य एक राष्ट्र एक कहानी में। जय हिंद।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं, तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट। जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

को सौदाई पागल को दुनिया में समझा है कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन।

सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुणेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले.
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा.
2: पुणेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडिओ स्टेशन. खुश रहो, खुशियां बांटो.
3: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योति सिंह आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे और प्रसन्न भी होंगे. जैसा कि हम सभी देखते हैं कि आज पूरे विश्व में आज शांति के लिए कोई मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, हर जगह शांति की कामना के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं. लेकिन इन सब के होते हुए भी, इसके बावजूद भी विश्व में शांति नहीं होने का मुख्य कारण क्या है, तो आइए आज हम इसको समझते हैं. तो आज का हमारा विषय है विश्व परिवर्तन एवं राजयोग. तो आज हम इसी पे चर्चा करते हैं. जैसा कि हम जानते हैं सतयुग के पावन आकाश के नीचे देवताओं का निवास था. धीरे धीरे प्रकृति ने पलटा खाया और अभी हम सब काली काल के काले आकाश के नीचे विचरण कर रहे हैं. परंतु मानव का मन बार बार उसे सत्व प्रधान वातावरण, पारंपरिक जो स्नेह है, दिव्य मर्यादाएं, शांतमय सुखमय विश्व को देखना चाहता है. इसमें बहुत समय वह विचरण कर चुका है. प्रश्न यह उठता है कि इस संसार को फिर से वही मूल कैसे दिया जाए. अब हम देखते हैं वातावरण को हमें बदलना, उसे हम कैसे बदले. सत्युग में मनुष्य आत्माएं जो है वो सत्व प्रधान होने के कारण उसके मन के संकल्प भी पावन होते थे, जिसके कारण समस्त विश्व का वायुमंडल जो है वो भी पावन था. एक भी मनुष्य वहाँ अपवित्र संस्कारों वाला नहीं होता जो वातावरण को दूषित करे. उस पावन वायुमंडल में जो पलने वाले सभी जीव जंतु एवं प्रकृति भी उस स्तर पर थी. धीरे धीरे देवात्माओं का समापन होना शुरू हो गया और जैसे जैसे उनका समापन होता गया उसी अनुसार वातावरण भी बदलता गया और उसमें रहने वाले जीव प्राणी भी बदलते गए. आज सभी मनुष्य आत्माएं सत्व प्रधान से तमो प्रधान हो गई है, तो उसके विचार भी दूषित हो जाने के कारण सारा ही वातावरण दूषित हो चुका है. अगर कोई मनुष्य आत्मा

पुरुषार्थ कर अपने स्तर को श्रेष्ठ बनाना भी चाहे तो वह अपने को असमर्थ पाती है, क्योंकि वातावरण उसे बार बार अपने संग के रंग में रंगता ही रहता है। अभी आवश्यकता है इस दूषित वातावरण को बदलने की। मनुष्य जब किसी मंदिर में, सत्संग में या पवित्र देवी देवताओं के स्थान पर जाता है तो थोड़े समय के लिए मन जो है वो पावन हो जाता है और वह अपने किए गए विकर्मों का पश्चाताप करने लगता है। अब यही प्रश्न रह जाता है कि हम वातावरण को कैसे बदलें। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आके मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है विश्व परिवर्तन एवं राजयोग। अब हमें यहाँ पे देखना है कि स्थूल साधनों से वायुमंडल बदल सकता है या नहीं। वातावरण को पावन करने के लिए मनुष्य यज्ञ एवं हवनों का आयोजन किया करते हैं, परंतु विचार करें क्या इस तरह स्थूल साधनों से वायुमंडल बदल सकता है। वायुमंडल तो दूषित हुआ ही है, दूषित विचारों से, पतित संकल्पों से, तो उसे पवित्र भी शुद्ध संकल्पों से ही बनाया जा सकता है। यज्ञ हवन तो हम बहुत पुराने काल से करते आए हैं, परंतु वातावरण तो बदला ही नहीं, तो कैसे आशा की जाए कि इन स्थूल साधनों से वातावरण बदल जाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यज्ञ आदि में जो भी इतने द्रव्य पदार्थ स्वाहा किए जाते हैं, संसार में उनका तो अभाव ही होता है। यज्ञ हवन करने से जो थोड़ा बहुत वातावरण शुद्ध होता है, वह तो उसी क्षण मनुष्यों के अशुद्ध विचारों से पुनः दूषित हो जाता है, क्योंकि इतने अधिक यज्ञ तो आयोजित किए ही नहीं जा सकते हैं। सभी मनुष्यों के व्यर्थ संकल्पों से बने वातावरण को शुद्ध कर सके। यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं कि चंद्रमा पर गए यात्रियों का अपना एक अनुभव है कि कुछ समय पहले एक मानव रहित चंद्रयान को चंद्रमा पर भेजा गया, परंतु कुछ दशकों पहले जो यात्री चंद्रमा पर गए थे उनके बारे में छपे एक लेख में बताया गया था कि उन यात्रियों का जीवन एकदम वैराग्य से भरपूर हो गया। कुछ एक एकांत में जाकर निवास करने लगे, क्योंकि उन्हें इस संसार से वैराग्य आ गया। कुछ को विषय विकार से घृणा से आ गई, कईयों ने धर्म प्रचारक का कार्य अपना लिया, क्योंकि पहले नास्तिक ही थे। इनके जीवन में ये परिवर्तन क्यों आए? इसका कारण यही है कि ज्यों ज्यों वे लोग इस विश्व के दूषित वातावरण से परे होते गए, तो उनका मन भी शुद्ध होता गया, उनके विचार बदल गए, उन्हें विषय विकारों से रक्त जीवन निरस्त लगने लगा। उन्होंने अपने जीवन को बदलने की ठान ली, अर्थात उस वातावरण का प्रभाव उनके मन पर पड़ा। राजयोग से हम क्या करते हैं? विचारों का शुद्धिकरण करते हैं। तो ऊपर की जो भी घटना अभी हमने बताई, इससे यही स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे मनुष्य ऊपर जाता है, उसके विचारों में शुद्धता आती है, उसके ऊंचे से ऊंचा स्थान तो आत्माओं की दुनिया ही है, जिसे परमधाम कहते हैं, जहां निराकार परमात्मा का भी निवास है। वह धाम स्वयं भी पवित्र धाम, शांति धाम है।

अगर मनुष्य वहां का ही यात्री बन जाए अथवा बुद्धि से वहां ही यात्रा करने लगे तो कितना शीघ्र उसके विचारों में परिवर्तन आ जाएगा। इस समय जबकि घोर कलयुग है, परमपिता परमात्मा ने स्वयं आकर राजयोग सिखाया और कहा कि अपनी बुद्धि को परम धाम से जोड़ करके देखो और मुझ निराकार परमात्मा पर स्थित करो तो तुम्हारे विचार शुद्ध होते जाएंगे। राजयोग का अभ्यास करने से हमारे संकल्प पावन होते जाते हैं, जिनका प्रभाव वातावरण पर भी पड़ता है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है विश्व परिवर्तन एवं राज्यों। अभी जैसा कि हम देख रहे हैं वर्तमान समय की आपदा भी, पैसे कमाने की होड़, धन का संग्रह और उसकी सुरक्षा का भय आदि कारणों से मनुष्य को 2400 घंटे तनाव में वो जीता है और जिससे उसके मन पर अतिरिक्त दबाव बना रहता है। दबाव के कारण वह जीवन की समस्याओं का हल नहीं ढूंढ सकता। आज मानो ही मिसाइलें हम बनाने में सफलता तो प्राप्त कर ली और अभी भी नए नए आविष्कारों में लगा हुआ है, किंतु स्वयं को नहीं खोज पाया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, वापस कहाँ जाना है। इसी कारण तनाव से ग्रसित होता जाता है, निर्णय लेने की क्षमता प्रायः खत्म हो जाती है, रिश्तों में दरार आ जाती है, रोगों का शिकार हो जाता है। तब वह चिकित्सक के पास दौड़ता है, चिकित्सक उपचार करने का प्रयास करता है, नींद की गोलियां भी देते हैं, गोलियों से मस्तिष्क को आराम देने का प्रयास करता है, पर मन पर पड़ने वाले अनावश्यक दबाव को कम नहीं कर सकता। यहाँ पर तात्पर्य यह है कि ये नहीं है कि मतलब हम चिकित्सक के पास ना जाएं और दवाई ना लें, लेकिन हम बताना ये चाहते हैं कि राजयोग का अब जो अभ्यास है उससे मन को हल्का और तनाव से मुक्त करने का एक उपाय है। परमात्मा को याद करते हुए मन में कोई भी परमात्मा की कमेंट्री करे, राजयोग से व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वो हर समय अपने को प्रसन्न महसूस करता है। राजयोग का अर्थ है जोड़ना या संबंध स्थापित करना, आत्मा और परमात्मा में संबंध स्थापित करने का योग है राजयोग। यह सहज और सरल योग है जिसे प्रत्येक महिला पुरुष और युवा सहज तरीके से कर सकते हैं। ऐसे तो राजयोग का अभ्यास कभी भी कर सकते हैं, पर प्रातः अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में वो समय जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। वो समय है 4 बजे से 4:45 बजे तक। तो इसे करने वाला व्यक्ति सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा का शुक्रिया करे जिन्होंने अमृत वेले में जागने का संबल प्रदान किया है। उसके बाद यदि फर्श पर बैठ सकते हो तो एक दरी बिछाकर और पलथी जोड़कर बैठ जाएं, और यदि फर्श पर नहीं बैठ सकते तो सोफे या कुर्सी पर

प्रकार प्रतिदिन ध्यान लगाने से स्वतः ही मन हल्का महसूस करने लगेंगे और इससे मन भी प्रसन्न रहेगा। राजयोग सीखने के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रतीक राज जिले तहसील मुख्यालय व कस्बों में गांव में भी सेवा केंद्र बने हुए हैं। वहाँ निःशुल्क राजयोग का अभ्यास कराया जाता है। अपने नजदीकी केंद्र में संपर्क कर मात्र 7 दिवस में प्रत्येक दिन 1 घंटे का समय निकाल कर इस अभ्यास को सीख सकते हैं। बाद में अपनी सुविधा अनुसार अपने घर में सहज तरीके से राजयोग का ध्यान अभ्यास कर मन को हल्का रखने में निश्चिंत रूप से निश्चिंत रखने में निश्चित रूप से ही सफल हो सकते हैं। राजयोग के द्वारा वातावरण दिनों दिन बदलता जाता है। जब यह वातावरण बहुत अधिक बदल जाएगा तो इसमें रहने वाले मनुष्यों को भी बदलने की प्रेरणा स्वतः ही आएगी और पवित्र वातावरण को पाकर सभी मनुष्य अपने विचारों को विशुद्ध करने में लग जाएंगे, जिससे शीघ्र ही इस विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। विश्व को या वातावरण को बदलने का राजयोग ही एकमात्र साधन है। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाए, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सफर आरजे सनी के साथ।
1: नमस्कार, खाबो के सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी बातें आज के इस एपिसोड में हम लोग करेंगे और आज कुछ एपिसोड है जैसे कि एस वाले गाने आपको सुनाएंगे। पिछली बार भी आपने एस के कुछ खास गाने सुने थे एस अल्फाबेट के, तो आज भी हम लोग कुछ ऐसे बहुत ही खूबसूरत गाने एस वाले आपको सुनाएंगे। कुछ थोड़ा सा अलग मोड़ पे आपको ले जाएंगे क्योंकि 60s के गाने 50s के गाने पुराने हैं और कुछ 60 एंड 70s के बीच के गाने हैं जो आपको एक सूदिंग फ्लेवर देगा और एक थोड़ा सा हल्का सा आपको अलग मोड़ देगा। तो दोनों भी चीजें हैं इसमें, दोनों ही टाइप के गाने इसमें हैं, मिक्स मसाला है, अलग अलग फ्लेवर के गाने हैं। तो हम लोग सुनेंगे आज के इस एपिसोड में एस अल्फाबेट के गाने 50s एंड 60s के। तो आइए आज के इस ख्वाबों के सफर को सजाने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह विभा जी है। तो विभा जी कैसे हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ। नमस्कार सनी, आपको और ख्वाबों का सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार से प्यार भरा नमस्कार। और आप कैसे हैं?
1: बस आपकी दुआ से बहुत अच्छे हैं और आपकी आवाज सुन के हमें खुशी हुई।
2: थैंक यू।
1: हाँ जी, चलिए विभा जी, आज के इस एपिसोड में हम लोग जैसे कि एस अल्फाबेट वाले गाने सुनाएंगे, तो सबसे पहला गीत आपके पास कौन सा है जो एस अक्षर से शुरू होता है 50s एंड 60s का?
2: ये मेरे पास पहला गाना है, समझी थी कि ये घर मेरा है, मालूम हुआ मेहमान हूँ मैं। ये गाना, जिन्हें मैं अपना घर कहती थी उसके लिए मैं अनजान हूँ। ये दोनों तरफ आप इसको दो तरह से ले सकते हैं इस गाने को। इसको दुनिया को अपना घर कहने का और कैसे हम दुनिया में रहते हुए एक मेहमान की तरह हैं लेकिन इसको अपना ही घर समझते हैं, इसके दो मीनिंग वाला गाना है।
1: अच्छा।
2: इसको डायरेक्टली एंजॉय करें, इसके बारे में ज्यादा क्या कहूँ।
1: चलिए, कभी कभी दो मीनिंग होते तो हमारे श्रोता भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपने कहा कि जब गाने बने हैं तो कहीं ना कहीं भाव तो होगा और भाव लिखने वाले का भी है, गाने वाले का भी है और सुनने वाले का भी है, तो तीनों के अलग अलग भाव हो सकते हैं। आप जिस फ्लेवर को उसमें से उठाना चाहते हैं वो चीजें आप उठा पाते हैं। तो आइए जैसे कि गीत में जो लाइनें हैं, पहली लाइन जैसे अभी विभा जी ने बताया, समझी थी कि ये घर मेरा है। हर व्यक्ति घर बना के सोचता है कि ये घर मेरा ही है, लेकिन जब परिवार बनता है फिर बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों का घर हो जाता है, हम भी चाहते हैं कि बच्चे ही इसे अपना घर कहें, तो ऐसी कई चीजें आती हैं समय के साथ साथ। सब आपका जो अपना था वो किसी और का हो जाता है और किसी और का था तो वो किसी और का आगे हो जाता है, तो ये परिवर्तन संसार का नियम है और जो चीजें आप अभी समझ रहे हैं हो सकता है कि कल आपको समझने में वो अलग लगेंगे और कल आपकी समझ भी उस तरह से बदल जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी बातें होगी आज के इस एपिसोड में और विभा जी बहुत ही प्यारे कलेक्शन लेकर आपके बीच में आई है। कहते हैं मुसीबत में खड़ा जो साथ बंद दीवार होता है, मुसीबत में खड़ा जो साथ बंद दीवार होता है, हमारा हौसला हिम्मत वही परिवार होता है, बड़े मजबूत दुनिया में लहू के रिश्ते होते हैं, कहां सबके नसीब में लिखा ये प्यार होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरत गाना जो है आप अभी सुनेंगे, थोड़ा समझने में जरूर इसमें आपको कोशिश करनी होगी कि कहां आप इसमें सटीक बैठे हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सीधे गाने की तरफ, कार्यक्रम की शुरुआत में ये गाना अभी आपके लिए।

0: जी साहिल लुधियानवी साहब का लिखा ये गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में, और रवि साहब ने बहुत ही प्यारा सा संगीत इसमें दिया था, और ये फिल्म आई थी 1965 में जिसका नाम था काजल। जी हाँ, इस फिल्म का ये गाना था, और यहाँ पर जो है विशेष एक परिवार की कहानी बताई गई है, और मीना कुमारी पर गाना पिक्चराइज किया गया था। मीना कुमारी, राजकुमार, धर्मेंद्र, मुमताज और पद्मिनी इस फिल्म के कलाकार थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विभा जी कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ सनी, आपके बहुत अच्छा शेर कहा, और जैसे आपने वो कहानी को एक्सप्लेन किया उसमें वाकई बहुत गहराई भी थी, और इस गाने को भी मैंने बहुत एंजॉय किया।
0: जी जी, जी
1: अभी मैं दूसरा गाना मेरे पास है, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए, अगर दिल भर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए। तो ये मुजरा है, मुजरा करती हूँ मुमताज, कवायद की अदाकारी में मुमताज गाती हुई है। इस गाने में नजाकत है, शौकी है और आकर्षण भी है, बहुत ही अच्छे बोल हैं, और अगर आपको इसको मूवी में देखें, पर्दे में देखें, तो मुमताज की एक्टिंग बहुत ही खूबसूरत है और डांस भी बहुत अच्छा है, और इसका म्यूजिक आप सुनेंगे बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक है।
0: जी जी,
1: और जैसे इसकी वर्डिंग है, हमें फुर्सत नहीं मिलती आंसू बहाने से, कई गम पासा बैठे तेरे एक दूर जाने से, बहुत अच्छी शायरी के साथ गाई गई ये कवाली, आप बहुत मजा करेंगे इसमें।
0: चलिए सीधे कहानी की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। और ये एक फिल्म आई थी खिलौना, जो 1970 में रिलीज हुई थी, और ये आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ गीत है, लता मंगेशकर का गाया हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, खाबो की सफर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना खिलौना इस एल्बम से। और जब मैंने बात की कि ऐसे ऐसे ये चीजें हैं, परिवार के बारे में बातें अगर करूं तो ये भी एक जो है खिलौना फिल्म भी एक पारिवारिक फिल्म है। लेकिन इसमें जैसे हम अपने घर में माँ बाप है, बच्चे हैं, तो कई बार एक जो बच्चा है पहले अच्छा रहता है, बाद में बिगड़ जाता है किसी कारणवश।

0: हो सकता है कि किसी लड़की के प्यार से या किसी हादसे से चीजें हमारे बीच में चेंज हो जाती हैं, तब परिवार में बड़ा माहौल बदल जाता है और हमारा जो खुशहाल परिवार था वो दर्द भरा परिवार बन जाता है। तो ऐसे ही कुछ कहानी इस खिलौने एल्बम में बताया गया 1970 में, और ये फिल्म जो है बहुत ही पॉपुलर रहा उस समय। संजीव कुमार, जितेंद्र, मुमताज, शत्रुघ्न सिन्हा और दुर्गा खोटे पर पिक्चराइज किया गया था। तो ये एक फैमिली ड्रामा है, लेकिन एक व्यक्ति पर सेंट्राइज किया गया है जो एक लड़की के प्यार में पागल हो जाता है और उसको अपने जीवन से बिल्कुल वो वैराग आ जाता है, और वो कुछ ऐसी हरकतें करता है जब तक वो चेहरा उसके सामने ना आए तब तक वो ठीक नहीं बिहेव करता है। तो ये चीजें इसमें बताई गई थी। ये ह्यूमन बिहेवियर में जो चेंज आता है किसी के प्यार में, वो चीजें बताने की कोशिश की थी डायरेक्टर साहब ने, और चंद्र बोहरा साहब इसके डायरेक्टर थे, और इसे विशेष फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला इस फिल्म को। तो आइए आगे कहते हैं, जिसके होने से रिश्तों में एक अलग जान होती है, मुश्किलें भी जिंदगी की बड़ी आसान होती है, वही परिवार करता है मुकम्मल इस जहां को भी, उसी परिवार से इंसान की पहचान होती है। आइए आगे बढ़ते हैं विभा जी, नेक्स्ट कौन सा गीत है आपके पास?
1: सनी, अगला गाना मेरे पास है सांझ जली दिल की लगी, तक चली पुकार के, बहुत सुंदर गाना है और वही दरमान और देवन पर फिल्माया गया ये गाना, शोखियों और शरारत से भरा हुआ ये गाना है और इनकी सीनरी बहुत खूबसूरत है, पहाड़ों पर गाया गया ये गाना। इसमें शरारत है, दो प्रेमी एक दूसरे की खिंचाई करते हुए अपना समय प्यार में कैसे गुजार रहे हैं उसका जिक्र भी है और कुल मिला के बहुत अच्छा
0: लगा। जी जी, शैलेंद्र साहब का लिखा ये गाना आपने याद कराया है, और आशा मंडारे की आवाज में सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा ये गीत है काला बाजार इस एल्बम से। जी हाँ, ये फिल्म आई थी 1960 में, और ये एक ऐसा फिल्म था जिसमें एक अलग कहानी बताने की कोशिश की गई थी, और ये विजय आनंद यानी देवानंद साहब के बड़े भैया विजय आनंद के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी काला बाजार। तो चलिए सीधे गाने की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं।
2: कल्पना का सुंदर ये जगत मधुर कितना होता, सुख सपनों की जलछाया में पुलकित हो जगता सोता, संवेदन का और हृदय का ये संघर्ष न हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता, कब तक और अकेले कह दो
3: ये मेरे जीवन बोलो।
2: दीदी जी।
3: कौन?
2: पहले दीदी जी।
3: पहले बताइए कौन?
2: मैं कहती हूँ दीदी जी।
3: लागू तो
2: तुम्हें कहा नहीं।
3: अरे कहाँ जा रही?
2: छोड़ दो,

0: तुझा
1: सांझ ढली दिल की लगी सच चली कुछ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, खाबों के सफर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और मैं हूं आपका हम सफर सनी। और आज के इस खूबसूरत शो को सजाने के लिए विभाजी हमारे साथ हैं, बहुत ही प्यारे कलेक्शंस लेकर हमारे बीच में हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं बुरा साया उनके रहते हमें छू तक नहीं सकता, दुआएं जिनकी बन साया हमारे साथ रहती है। एंड विभाजी
2: जी, ये बहुत अच्छा आपने कहा। वाकई दुआओं का बड़ा असर होता है हमारी जिंदगी में। दुआएं हैं तो हमारे बहुत से बिगड़े काम भी बिल्कुल सीधे होने लगते हैं।
1: जी सही बात है
2: जी। और इसी से रिलेटेड एक गाना अगला मेरे पास गाना है, संसार से भागे फिरते हो, भगवान से तुम क्या पाओगे। ये मीना कुमारी अपने तंज वाले अंदाज में गा रही हैं और अशोक कुमार इसमें योगी का रूप धारण किए हुए हैं और उनके हाथ में कमंडल है और भगवान चोला पहना हुआ उन्होंने और वो मीना कुमारी से भाग रहे हैं और मीना कुमारी तंज करती हुई अपनी इस सच्चाई को वो बयान कर रही हैं कि अगर हम दुनिया से भाग रहे हो तो भगवान को कैसे पाओगे, क्योंकि दुनिया में रहने वाले तो भगवान के ही बंदे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत गाना है, बोल तो है ही अच्छे और इसमें फिल्माया भी बड़ी अच्छी तरह गया है और इसमें एक वर्डिंग जो है, ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जाने।
1: चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया, आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये चंद्ररेखा 1964 में एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का ये गाना है। और मीना कुमारी, अशोक कुमार, प्रदीप कुमार, महमूद अली और मीनू मुमताज पर पिक्चराइज किया गया था ये फिल्म। और ये एक चित्ररेखा जो है ये एक ऐतिहासिक कहानी है

और इसके ऊपर कई चीजें लिखी गई हैं और उसमें से एक जो है भाव इसमें लेकर इसको फिल्माया गया था। और ये केदार शर्मा जो है इन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और भगवती चरण वर्मा साहब ने इस कहानी को लिखा था। तो जैसे विभा जी ने बताया वैसे बिल्कुल सही ढंग से इस फिल्म में ये बातें बताई गई हैं। और एक योगी की कहानी है और एक साधारण व्यक्ति की कहानी है, दोनों में क्या अंतर होता है वो चीजें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। और कभी कभी योगी भी बहक जाता है, वो चीजें इसमें बताने की कोशिश की गई है। चीजें जो है जब समझ में आ जाती है तब तक कई दूर जो है चीजें निकल गई होती है। तो हमें उन चीजों पर जिस तरह से हम जिस जगह पे जा रहे हैं उस चीज को समझे, उस जगह को समझे और उसमें हम अपने आप को कैसे ढाल ले, वो इसमें बताने की कोशिश की गई है। तो संसार में तो संसार के अपने नियम है, अगर योगी जीवन जीते हैं तो योगी जीवन का अपने नियम है। तो दोनों के बीच में दोनों का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है और उस चीजों को आप जोड़ना चाहते हो, सेतु बनाना चाहते हो, तो वहां जो मुश्किलें आती हैं वो चीजें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो आइए सीधे हम लोग आगे चलते हैं गाने की तरफ। चित्रलेखा 1964 का ये गाना है आपके लिए अभी।

0: नमस्कार, खाबों के सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साहिल लिधरनी साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, रोशन साहब का संगीत से सजा खूबसूरत गाना, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे, ये चीजें इसमें बताई गई थी। बहुत ही खूबसूरत बोल वाले गीत लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में अभी आपने सुना। आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि माँ ममता की मूरत, पिता ज्ञान की खान, बहन मान है घर का, भाई मेरी जान, बिन इनके नहीं वजूद मेरा, है परिवार मेरी पहचान। चलिए विभा जी, अगला गाना
1: कौन? बहुत अच्छी परिभाषा दी आपने पूरे परिवार की।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: भाई बहन माँ बाप सबको कवर करते हैं, वाकई हमारी पहचान इन्हीं रिश्तों से है और इन प्यारे से रिश्तों के साथ। अगला गाना सनी मेरे पास है, सपनों में साजन से दो बातें याद रही एक भूल गए।
0: अरे रे रे।
1: यहाँ सजनी अपने साजन की बातों को याद करते हुए
0: जी जी,
1: कोई बिरहा के और कुछ लम्हे मिलन गए, उन सब का मिक्सचर उसको याद करती हुई गुनगुना रही हैं, उस गाने को एंजॉय कर रही हैं और आप भी ये इस गाने को एंजॉय करें पूरी मस्ती के साथ।
0: अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा ये गाना है, लता मंगेशकर का गाया हुआ, मदन मोहन साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत, फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये फिल्म आई थी 1957 में, गेटवे ऑफ इंडिया आप सभी देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो दिल्ली में है, आप देख के आ सकते हैं। और इस फिल्म को जो है जे ओम प्रकाश जी ने डायरेक्ट किया था और ये भी एक देशभक्ति से सराबोर गीत है, सॉरी देशभक्ति से जुड़ा हुआ ये कहानी है इसमें। और ओम प्रकाश जी जो है बड़े ही अलग ढंग से एक महिला की किरदार को इसमें बताने की कोशिश की है और कहा फिल्म आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें किस तरह से वो सस्पेंस है थोड़ा सा, फिल्म बहुत ही अलग उसमें बताने की कोशिश की, अलग स्टोरी। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ इस गाने की तरफ। और इस फिल्म के स्टार्स थे भरत भूषण, प्रदीप कुमार, मधुपाला, राज मेहरा, जॉनी वॉकर साहब, अनिता गुआ और मास्टर भगवान, इन सभी ने इसमें काम किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए सीधे गाने की तरफ।
2: और खाने?
3: बहुत खाली।
2: अच्छा, तो इधर तेरे को एक चीज दिखाऊं, जानते हैं ये कौन है? ये है लीला।
3: लीला मुखर्जी?
2: हाँ, आप उन इसका आशिक है।
4: क्या गाती है रे?
2: बस यही एक नशा है आप उनको।
3: नशा?
2: आप उन दारू नहीं पीता, पान नहीं खाता, बीड़ी नहीं पीता, सिर्फ इसका गाना सुनता है। तू भी एक रिकॉर्ड सुनेगी इसका?
3: नहीं नहीं, मुझे बहुत देर हो गई है।
2: सुन रे, आप उनकी बात को दूसरी बार ना मत बोलना, नहीं तो वादा हो जाएगा। उठा ये ग्रामोफोन और चल मेरे साथ।
3: अरे उठा,
2: चल चल चल चल।
5: आज अपन चार महीने के बाद रिकॉर्ड सुनने लगे हैं रे, और वो भी तेरी खातिर है। नहीं तो हमेशा कोई ना कोई लफड़ा खड़ा हो जाता है।
3: ये लफड़ा कैसा
5: है? ये ना ही पूछो तो अच्छा।
2: रिकॉर्ड सुनते ही अपन का भेजा घूम जाता है, है? इधर लीला की आवाज कान में पड़ती है और उधर आपन के खून में बैंड बजने लगता है। क्या
3: क्या बैंड?
2: आपन पागल हो जाता है रे, इधर लीला का गाना सुना और उधर आपन का भेजा घूमा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं खाबों का सफर इस प्रोग्राम को, और बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं 1950s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज आप सुन रहे हैं। अभी आपने सुना एक बहुत ही खूबसूरत गाना गेटवे ऑफ इंडिया का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। विभा जी, कैसे हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, बहुत एंजॉय कर रही हूँ। गाने बहुत पुराने हैं और कुछ गाने तो मैंने पहली बार ही सुने सिलेक्शन करते वक्त, और अभी भी सुन रही हूँ। और गानों में मीनिंग होता है, इसका गानों में गहराई है, और बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। ये ज्यादा फेमस भी नहीं है, पर अगला गाना जो मैं लिखे है ये बहुत ही फेमस गाना है, सबने सुना होगा और आपने तो कई बार ही सुना होगा।
1: अरे
2: सपने सुहाने लड़कपन के, मेरे नैनों में डोले बहार बन के, रहेगा नाम पे फिल्माया गया गाना। पर अपने बचपन को हर कोई याद करता है,
1: सही बात।
2: और वो बचपन की यादें, वो लड़कपन, वो छेड़ा खानी, वो कभी रूठना, कभी मनाना, कभी भाई बहनों से उनको तंज करना, तंग करना, कोई चीजें छुपा देनी और कभी उनकी चीजें खा जानी, ये इससे इनका अलग ही मजा होता था। तो वो उसको लड़कपन कहते हुए रहीता रे मांग भेड़ बकरियों के साथ पहाड़ों में झूमती हुई जा रही है, और बहुत ही खूबसूरत सीन है। और गाने में एक्टिंग के साथ नाच भी बहुत खूबसूरत है, कुल मिला के बहुत सुंदर गाना है
1: जी। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है, सपने सुहाने लड़कपन के जी। ये फिल्म आई थी 20 साल बाद, 1960s की ये फिल्म थी, 62 में शायद ये फिल्म रिलीज हुई थी। और कहानी इसमें बहुत ही अलग बताने की कोशिश की गई थी, और कहीं ना कहीं एक सस्पेंस है इस फिल्म में। लास्ट में पता चल जाता है कि क्या एक्चुअली माजरा है, और ये पूरा जो कहानी है प्रॉपर्टी को हथियाने के पीछे लगे हुए लोगों की कहानी से बताई गई है। बहुत ज्यादा बीच बीच में जो है ट्विस्ट आते हैं, जिसमें आपको लगता है कि अरे ये अभी अभी पता चलेगा, अरे अभी पता चलेगा लेकिन वो लास्ट तक कुछ ना कुछ गुत्थी जो है सुलझती नहीं है, लेकिन आखिरी में आपको पता ही चल जाता है, क्योंकि फिल्म लास्ट में उसका एंडिंग बताते वक्त सब चीजें जो है सामने आ जाती है। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो शायद लास्ट में भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए फिल्म अगर देखेंगे 20 साल बाद 1962 में जो रिलीज हुई थी ऐसे

तीन फिल्में और बनी है, लेकिन ये फिल्म अगर आप देखेंगे तो आप ध्यान से देखना पड़ेगा, तब जाके आप इसको समझ पाएंगे। कहते हैं कोई हल ढूंढ लेते हैं मुसीबत जब भी आती है, कोई हल ढूंढ लेते हैं मुसीबत जब भी आती है, मेरे परिवार का हर शख्स खुदा से कम नहीं है। तो आइए सीधे गाने की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं।

0: नमस्कार, खाबो के सफर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, शकील बदायूं साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, हेमंत कुमार का संगीत से सजा गीत आपने सुना 20 साल बाद इस एल्बम से। आइए आगे बढ़ते हैं विभा जी, अब अगला गाना कौन सा है आपके पिटारे में?
1: अगला गाना ये नूतन अपने प्रीतम को पुकारती हुई कह रही है कि सपने में अगर मेरे तुम आओ तो सो जाओ।
2: ओहो,
1: और सपनों में आने का न्योता भी दे रही है और इसी शर्त पे सो रही है कि अगर तुम सपनों में आओगे तभी मैं सोऊंगी।
0: मैं तो नहीं सुना।
1: बहुत खूबसूरत अंदाज में गाया जा रहा है। और अपने साजन के साथ होने के सपने, बीती हुई यादों, सबको याद करते हुए हंसती हुई वो गा भी रही है और अपने प्रीतम

0: दुनिया चल रही है।
1: चलिए, बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये गाना भी पसंद आएगा। और ये गाना है मूवी दुल्हन एक रात की। ये आई थी 1966 में और इस गाने को लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने, लता मंगेशकर ने गाया है और मदन मोहन साहब ने भी इसे ही सजाया है अपने संगीत से। तो चलिए सीधे गाने की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। आप सुन रहे हैं ख्वाबों का सफर

नमस्कार, खाबू के सफर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और धीरे धीरे करते करते हम लोग कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे पहुंच गए हैं। कहते हैं, कैसा भी हालत हो, कैसे भी हालात हो, थमे रखते हाथ, कैसे भी हालात हो, थमे रखते हाथ, परिवार कभी ना छोड़ता, दुनिया छोड़े साथ।

0: चलिए आगे बढ़ते हैं विभा जी, अगला गाना आखिरी वाला कौन सा है एपिसोड में?
1: जी मैं तो आपके ये शायरी में गुम हो गई थी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। परिवार असली परिवार भी है जो एक दूसरे का हाथ, सुख हो या दुख कभी ना हाथ छूटे, क्योंकि सुख में भी हमें अपनों की जरूरत है। वो सुख में हम खुशी नहीं हो पाते कि अगर परिवार हमारा साथ ना हो, और ऐसे ही दुख में भी जब हमारा परिवार साथ होता है तो उसमें हमारा दुख बिल्कुल एक तिनका सा उनके निकल जाता है। तो बहुत अच्छी बात आपने कही। और लास्ट में मेरे पास है गजल है जगजीत सिंह जी की गाई हुई,
0: अरे वाह।
1: सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं, जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हैं। तो बहुत खूबसूरत और बोलों में दर्द है, बेरुखापन है, लेकिन सच्चाई भी है।
0: हाँ।
1: चंद मासूम से पत्तों का लहू है फाखिर, जिसको महबूब के हाथों की हिना कहते। खूबसूरत गजल है, आप
0: एंजॉय
1: करें।
0: जी जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और गाने के बोल, गजल के बोल भी बहुत ही खूबसूरत हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आप कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हैं। सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं, जगजीत सिंह साहब का ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गाया हुआ गजल है जो मैं आपको आखिरी में हम लोग छोड़े जा रहे हैं। कहते हैं, है क्या परिवार की कीमत, ये उनसे जाके पूछो तुम, जो खाली पेट आधी रात को सड़कों पे सोते हैं। तो साथियों, आगे बढ़ते हुए मैं कहना चाहूंगा कि ये गजल बहुत ही आपको सूदिंग फ्लेवर में ले जाएगा, और बहुत ही म्यूजिक भी इसका बहुत अच्छा है, और जगजीत सिंह ने बहुत ही अच्छी तरह से इसे गाया है, और हर लाइन में कहीं ना कहीं आपको एक जो है ट्रिगर पॉइंट है जहां पर आपको सोचने पे मजबूर कर देता है ये गजल। तो विभा जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। बहुत ही प्यारे से गाने आपने सुनाए, और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा।
1: थैंक यू सनी, आपका भी और सुनने वाले श्रोताओं का भी मैं बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, और आप भी मुझे मौका देते हैं आपके साथ ये गीत चुन के अपने भावों को प्रकट करने के लिए। और श्रोताओं को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत प्यार, और ऐसे ही खुशी से इन गीतों को सुनते रहें, हमें अपना प्यार देते रहें। इसी उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।
0: जी जी जी,
1: जी।
0: शुक्रिया, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और हमारे सभी श्रोताओं को भी हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और जाते जाते दो लाइनें जरूर कहना चाहूंगा, जैसे परिवार से शुरू किया था और परिवार के साथ ही खत्म करना चाहूंगा अपनी बातों को। कहते हैं, वो दिन भर टूट कर दो वक्त की रोटी कमाता है, पिता का साथ ही परिवार की बुनियाद होता है, पिता का साथ ही परिवार की बुनियाद होता है। तो चलिए, इसी के साथ मैं और विभा जी चाहते हैं आपसे इजाजत, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। सलाम नमस्ते, खमा गनीसा।

तो आहो का खजाना सुनते चले आए अजल से ये फसाना।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे which will not be according to the way I want them to be. Aaj sara din, awareness and checking. Kaun zyada powerful hai? Baatein, situations or me? Kiska prabhav kis par padta hai? आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
2: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: त्वरा नगर के दिन खत्म हुए। नरेंद्र नाथ मन से परिव्राजक थे, मौका पाते ही घूमने निकल पड़ते थे। घूमने जाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत नहीं थी। साधु संन्यासी देखकर अनजान लोग भी उनके टिकट और खाने की व्यवस्था कर देते थे, नहीं तो फूटी कोड़ी होने पर भी वे विश्व भ्रमण कैसे कर पाते।
1: यहाँ पर हम कुछ बातों का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं। नरेंद्र 1888 ईस्वी के पहले पहल तीर्थ भ्रमण की इच्छा से वराह नगर मठ से बाहर निकले। इसके पहले दो साल में भी वे आठपुर के अतिरिक्त वैद्यनाथ और शिमुलतला भी कई बार गए थे। उनके भारत भ्रमण संबंधी कई बातें हमें ज्ञात नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई रोजाना डायरी नहीं लिखी थी। बाद में यत्र तत्र प्रसंगवश उनका कोई मंतव्य सुनकर अथवा जिन व्यक्तियों से उनकी भेंट हुई थी उनसे कुछ घटनाएं सुनकर जहां तक संभव हो सका है उसे लिपिबद्ध किया गया है। एक बात और, अब से हम नरेंद्र नाथ ना कहकर आचार्य देव का उल्लेख स्वामी जी अथवा विवेकानंद नाम से करेंगे।
0: सन 1883 ईस्वी के जनवरी महीने में नरेंद्र नाथ ने संन्यास धारण कर स्वामी विवि दीक्षानंद नाम ग्रहण कर लिया था। फिर भी अनुष्ठानिक रूप से नाम बदल जाने पर भी नया नाम उस समय तक व्यापक रूप से वहत नहीं हुआ था, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। बल्कि हम जानते हैं कि परिव्राजक के रूप में भारत का परिभ्रमण करने के दिनों में वे अपना परिचय गुप्त रखने के लिए विभिन्न नामों का सहारा लेते थे। और यह भी जाना जाता है कि कुछ दिनों तक विवि दीक्षानंद नाम का व्यवहार करने के बाद उसको छोड़कर उन्होंने स्वामी विवेकानंद नाम ग्रहण किया। इसी समय विवेकानंद का नाम परित्याग नहीं करने पर भी वे सच्चिदानंद नाम का व्यवहार करते थे। सबसे अंत में अमेरिका जाने से पूर्व उन्होंने स्वामी विवेकानंद नाम को स्थायी रूप से ग्रहण कर लिया था और इसी नाम से वे विश्व विख्यात हुए। किंतु उनके बंधु बांधव और शिष्यगण उन्हें स्वामी जी कहकर संबोधित किया करते थे।
1: भ्रमण की लालसा भारत के सन्यासियों की मज्जा में है। कहावत है, रमता जोगी बहता पानी। साधु यदि बहती हुई नदी की भांति अविराम घूमते रहें तो जैसे नदी में गंदगी

0: जमती, वैसे ही साधु का जीवन भी निष्कलंक रहता है और विभिन्न तीर्थों में कितने विविध भावों में विराजमान रहकर भगवान भक्तों की पूजा ग्रहण करते हैं एवं निर्विचार रूप से कृपा वितरण करते हैं। उसे देखकर किस व्यक्ति के हृदय में उत्साह नहीं जागता। विशेषकर ईश्वर प्राप्ति के लिए जिन्होंने गृह त्याग किया है, वे उन्हें यानी ईश्वर को सभी संभव स्थानों में ढूंढने निकलेंगे। ये तो अत्यंत स्वाभाविक है। नव प्रतिष्ठित वराहनगर मठ के साधुओं के जीवन में भी इस नियम का व्यतिक्रम नहीं हुआ। मठ की स्थापना के बाद से ही कोई न कोई अक्सर बाहर जाते। कभी कभी स्वामी रामकृष्ण नंद एवं और दो एक व्यक्तियों को छोड़कर मठ शून्य प्राय हो जाता था। कोई थोड़े दिनों के लिए जाते थे, कोई लंबी तीर्थ यात्रा और तपस्या के लिए जाते थे।
1: तीर्थ यात्रा के दिनों में मठ मंदिर आश्रम में साधुओं और पंडितों के साथ चर्चा के क्रम में अनगिनत जन साधारण के दैनिक कार्यकलाप और बात व्यवहार के द्वारा उन्होंने भारत को देखा था और जाना था। उत्तरी भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश में भ्रमण करते हुए विवेकानंद अंत में काशी धाम पहुंचे। वहां वे द्वारका दास के आश्रम में रहते थे। वे सब कितने व्यस्तता के दिन थे, एक मिनट सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। दिन रात बाहर के लोगों का आना जाना लगा रहता था। पंडितगण आए हैं, घोर तर्क वितर्क चल रहा है, किंतु स्वामी जी एक क्षण भी उससे कतराते, असंतोष होते या उदासीन होते नहीं प्रकट होते थे। आध्यात्मिक विषय हो या सामान्य ज्ञान विषय, वे सर्वदा सभी विषयों की विवेचना के लिए तैयार रहते। बड़े बड़े पंडित और विद्वान व्यक्तियों का आगमन हुआ। वे लोग सन्यासियों के साथ धर्म तथा दर्शन आदि विषयों की चर्चा करते रहते थे। बड़े बड़े संस्कृत वचन और श्लोक आदि उद्धृत कर प्राचीन पंथियों की नींव सुदृढ़ करने की चेष्टा कर रहे थे। उसी समय स्वामी जी प्रबल तर्क से उन लोगों के मतों को छिन्न छिन्न कर देते। यह दिखाते कि संस्कृत विद्या या शास्त्रों का मूल इस देश के लोगों की शिक्षा दीक्षा और जीवन की उन्नति और अवनति के साथ घनिष्ठ रूप से संबंध है। देश की उपेक्षा कर देशवासियों से अलग शास्त्रों को देखने से शास्त्रों के यथार्थ मर्म को जानना कठिन है। शास्त्र कोई मनगढ़ंत काल्पनिक नियम मात्र नहीं है, बल्कि राष्ट्र का गठन और विकास ही उसका मुख्यतम उद्देश्य है।
0: फिर जब ईसाई पादरी आकर हिंदू धर्म की निस्सारता प्रतिपादित करने के विचार से तर्क करने लगते, तब उन लोगों को उपद्रव समाप्त करने के लिए उन्हें भी तर्क युद्ध में प्रवृत्त होना पड़ता। स्वामी जी की तीक्ष्ण बुद्धि के समक्ष वे सब कैसे आगे बढ़ पाते? उन लोगों के सारे व्यर्थ के तर्क चूर चूर हो छिन्न भिन्न हो जाते। अंत में जब वे सब तर्क वितर्क में ध्वस्त हो अपनी पराजय स्वीकार करने का उपक्रम करते, तब फिर स्वामी जी उन लोगों के पक्ष में खड़े हो जाते और अपनी स्वभाव सिद्ध सरल सुबोध भाषा में ईसा मसीह के हृदय के अद्भुत प्रेम की अपूर्व व्याख्या करते।
1: काशी में भिक्षा से प्राप्त अन्न से उदर पूर्ति, देव स्थानों का दर्शन, शास्त्रों की चर्चा, जप, ध्यान, साधु संग आदि ही उनका नित्य कर्म था। शाम को जिस समय वे भगीरथी के तट पर पत्थर की सीढ़ियों पर बैठ करके संध्या काल की उपासना के लिए तैयार होते थे, उस समय अनगिनत मंदिरों के संध्या आरती का घंटा और शंखनाद उन्हें भाव विभोर कर देता था।

एक दिन किसी भक्त ने उनका परिचय पंडित भूदेव मुखोपाध्याय से करा दिया। अपूर्व धीशक्ति संपन्न तरुण सन्यासी के साथ धर्म, समाज, नीति तथा भारत की उन्नति संबंधी चर्चा से भूदेव बाबू ऐसे मुग्ध हुए कि उन्होंने उन सज्जन से कहा, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस तरुण युवक ने इतनी अल्प अवस्था में इतनी गंभीर अंतर्दृष्टि और

0: विपुल अभिज्ञता किस प्रकार प्राप्त कर ली। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में ये एक महान व्यक्ति बनेंगे। वाराणसी के विख्यात साधु श्रीमंत त्रेलिंग स्वामी जी के दर्शन प्राप्त कर स्वामी जी कृतार्थ हुए। इनके त्याग और तपस्या के बारे में स्वामी जी ने कई बार श्री रामकृष्ण देव से सुना था। अब उनके दर्शन से भक्ति और विनम्र चित्त के साथ उनके चरणों की धूलि लेकर वे धन्य हो गए।
1: विश्वनाथ, अन्नपूर्णा और दुर्गा देवी के लिए विग्रह का दर्शन कर उनके मन प्राण आनंद से परिपूर्ण हो गए थे और इस पवित्र धाम में भगवान बुद्ध एवं शंकराचार्य के कीर्ति कलापों के स्मरण से उनकी ऐतिहासिक चेतना अत्यंत प्रदीप्त हो गई थी। एक दिन दुर्गा मंदिर से लौटने के समय बंदरों के एक झुंड ने उनका पीछा किया। उन्हें डर हुआ कि बंदर उन्हें क्षति पहुंचा सकते हैं, अतः वे तेजी से भागने लगे, किंतु बंदर भी पीछे पीछे भागते रहे। उसी समय एक वृद्ध सन्यासी ने चिल्लाकर कहा, रुको, उन बंदरों के सामने खड़े रहो। यह सुनकर स्वामी जी निर्भीक भाव से उनके सम्मुख खड़े हो गए। उन्हें भयहीन देख करके बंदर भी क्षण भर के लिए रुक गए और तत्पश्चात भाग खड़े हुए। बाद में अमेरिका में अपना भाषण देते समय वे इस घटना का उल्लेख कर इसका तात्पर्य श्रोताओं को समझाते हुए उन्होंने कहा था,
2: प्रकृति के सम्मुखीन होकर डटे रहो, अविद्या के सम्मुखीन होकर डटे रहो, माया के सम्मुखीन होकर डटे रहो।
0: वे बुद्ध देव की कीर्ति स्थल सारनाथ भी देखने गए थे, किंतु उन दिनों उस स्थान का भग्न स्तूप और मठ आदि जंगल से भरे थे।
1: श्रीमद स्वामी भास्करानंद जी के गुणों को सुनकर के स्वामी जी एक दिन उनके आश्रम में भी गए। उस समय भास्करानंद जी शिष्यों तथा भक्तों से घिरे बैठे थे। स्वामी जी ने प्रणाम कर आसन ग्रहण किया। पहले ही विवेकानंद की मनोहर शारीरिक क्रांति से उनकी दृष्टि आकर्षित हो गई। फिर धीरे धीरे संन्यास जीवन के आदर्शों के संबंध में स्वामी जी को उपदेश देते हुए भास्करानंद जी बोल उठे,
2: कभी डरकर भागो मत।
3: संपूर्ण रूप से कामनी कांचन का त्याग कोई भी नहीं कर सकता।
2: क्या कह रही हैं महाराज? ऐसे अनेक सन्यासी हैं जो संपूर्ण रूप से कामिनी कंचन के संबंधों से विमुक्त हैं, क्योंकि सन्यासी जीवन का यही तो प्रथम साधन है और मैंने तो कम से कम ऐसे एक व्यक्ति को अवश्य देखा है जो कामिनी कंचन की चाह पर संपूर्ण रूप से विजय प्राप्त करने में समर्थ हुए थे।
3: कौन है ये महापुरुष?
2: श्री राम कृष्ण परमहंस देव।
3: तुम अभी बच्चे हो, इस उम्र में यह बात समझ नहीं पाओगे।
1: अपने गुरुदेव के पवित्रतम चरित्र की समालोचना होते हुए देख स्वामी जी निर्भीक दृढ़ता के साथ प्रतिपाद करने को उद्यत हो गए। स्वामी जी के तेज युक्त तथा युक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर के उपस्थित मंडली तथा स्वयं भास्करानंद जी बड़े विस्मित हुए। जिनके चरणों में राजा महाराजा धनी पंडित ज्ञानी आदि सभी मस्तक झुकाकर कृतार्थ होते थे, जिनका अलौकिक पांडित्य गौरव के साथ ज्ञान लोक विकीर्ण करता था, उन्हीं भास्करानंद जी को प्रतिपक्षी बनकर तर्क में अग्रसर होना कम साहस की बात नहीं थी। भास्करानंद जी उदार हृदय सन्यासी थे। वे स्वामी जी की बातों से विशेष संतुष्ट हुए और उनके सामने ही अपने शिष्य मंडली तथा उपस्थित जनों से कहा,
3: इसके कंठ में सरस्वती विराजमान है, इसके हृदय में ज्ञानालोक जाग उठा है।
1: परंतु अपने गुरुदेव के संबंध में अनादर सूचक शब्द सुनकर दुखी होकर के विवेकानंद तुरंत वहां से चले आए।
0: कुछ दिन काशी धाम में रहकर स्वामी जी वराह नगर मठ लौट आए। वाराणसी धाम भारत का हृदय केंद्र है। यहाँ मद्रासी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, महाराष्ट्रीय, उत्तर प्रदेशीय व्यक्तिगण आचार व्यवहार तथा भाषा की भिन्नता के बावजूद एक भाव के भावुक बनकर भगवान विश्वनाथ के मंदिर में सम्मिलित होते हैं। काशी धाम में स्वामी जी ने परमार्थिकता से भ्रष्ट बाह्य आचार परायण इन नर नारियों के बीच

0: सनातन धर्म की युग युगांतर से वंचित महिमा की उपलब्धि की।
1: इस तीसरे दर्शन काल में उन्होंने भारत की आत्मा का थोड़ा बहुत परिचय प्राप्त किया था और अनेक मतवादों का भी साधन किया था। उनकी दृष्टि पहले से अधिक व्यापक हो गई थी, अतः अब वे चाहते थे कि उनके गुरु भ्राता चिंतन के क्षेत्र में भी व्यापकता प्राप्त करें। एक क्षण में उनके मन में धर्म प्रचार का संकल्प जागता और वेदांत के तत्व को कार्य रूप में परिणित करने के विचार से उनका मन उद्वेलित हो जाता। गुरु भ्राताओं में भी वे धर्म की इन नवीन धारणाओं का संचार करने की दिशा में प्रयत्नशील रहते। उन प्रारंभिक दिनों में भी वे उन लोगों को सर्वहाराओं के घरों में धर्म प्रचार करने के लिए जाने को कहते,
0: किंतु साधुगण उस समय प्रचार विरोधी थे। उन लोगों के मतानुसार जीवन का मुख्य उद्देश्य गुरुदेव के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्राप्त करना था। स्वामी जी भी तो पहले इसी मत को पोषण करते थे। सबके प्रवक्ता के रूप में स्वामी जी भी कहा करते थे कि ईश्वर प्राप्ति ही मनुष्य उद्देश्य है। पर तीर्थ से लौटने के बाद वे तरुण साधुओं से कहते,
2: सभी प्रचार कार्यों में रत हैं, परंतु वे उसे अज्ञात रूप में करते हैं। मैं उसे इच्छा पूर्वक करूंगा। तुम लोग जो मेरे गुरु भाई हो, तुम्हारे मना करने पर भी मैं नहीं छोड़ूंगा। दीन हीनों तक जाकर प्रचार करूंगा। प्रचार यानी भाव का बहिप्रकाश। श्रीलंग स्वामी मौन रहते हैं तो क्या प्रचार नहीं करते? उनका मौन ही व्याख्यान है। पौधे भी तो प्रचार करते हैं, शिक्षा देते हैं।
1: इस बार स्वामी जी वराहनगर में कुछ दिनों तक ठहरे थे, क्योंकि उनमें सन्यासी सुलभ निर्जन स्थान में तपस्या करने की आकांक्षा सदा ही जागृत थी। अतएव शीघ्र ही वे पुनः उत्तर भारत के तीर्थ दर्शन के लिए निकल पड़े। वे पुनः काशी गए। वहां श्रीयुक्त प्रेमादास मित्र से उनका परिचय हुआ। मित्र महाशय धनवान और संस्कृत भाषा के सुपंडित थे। स्वामी अखंडानंद गंगाधर से उनका पहले से ही परिचय था। प्रेमादास बाबू से स्वामी जी का यह परिचय धीरे धीरे मित्रता में बदल गया तथा दोनों में अनेक पत्राचार हुए।
0: काशी में थोड़े दिन रुकने के बाद विवेकानंद सन 1888 ईस्वी के अगस्त में हाथ में दंड कमंडल लिए उत्तर भारत के कई स्थानों से होकर सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या पहुंचे। अयोध्या के प्रत्येक रजगण के साथ सूर्यवंशी पराक्रमशील राजाओं की गौरव स्मृति जड़ित है। कवि श्रेष्ठ वाल्मीकि के श्री रामचंद्र आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श भ्राता के रूप में इसी पुण्य भूमि में पूर्ण महिमा के साथ प्रस्फुटित हुए थे। तेजस्वी ब्राह्मण का पौरोहित्य तपस्वी विश्वामित्र, ब्रह्मज्ञानी मिथिलाधिपति जनक, सुदूर अतीत की ऐसी सहसों उज्जवल कथाएं स्वामी जी को स्मरण हो आई।
1: राम सीता की लीला भूमि में पदार्पण करते ही उन्हें अपने बचपन की बहुत सारी बातें याद आ गईं। उनका वह रामायण के प्रति प्रेम, सीता राम की मूर्ति के सम्मुख तन्मय चित से ध्यान, वीर भक्त हनुमान के प्रति गंभीर श्रद्धा, ये सब स्मृतियां एक एक करके उनके मानस पटल पर उदित होकर के उन्हें भावानंद में विभोर करने लगी। अयोध्या में कुछ दिन बिताकर सन्यासियों के साथ श्री राम नाम कीर्तन में बिताकर स्वामी जी लखनऊ और आगरा होते हुए पैदल ही वृंदावन धाम की ओर अग्रसर हुए।
0: अयोध्या के बाद लखनऊ आकर वे अवध के नवाबों की कीर्ति के साक्षी स्वरूप बाहों, महलों और मस्जिदों आदि को देखकर आनंदित हुए। लखनऊ से आगरा आने पर मुगल सम्राटों की अक्षय कीर्ति ताजमहल, आगरा का किला आदि की अपूर्व स्थापत्य कला ने उन्हें आत्मविभोर कर दिया। ताजमहल का विभिन्न दिशाओं से प्रकाश और छाया की विभिन्न परिधियों में निरीक्षण कर एवं उनके शिल्प कौशल का मूल्यांकन कर मानो उन्हें तृप्ति ही ना होती थी। अनेक बार वहां

0: पुस्तकों को साथ रख करके पैदल तय किया। जब वृंदावन के निकट पहुंच रहे थे तो उन्होंने देखा कि रास्ते के किनारे एक व्यक्ति निश्चिंत होकर के तंबाकू पी रहा है। स्वामी जी ने उस आदमी से हाथ जोड़कर चिलम मांगी। वह व्यक्ति भयभीत होकर के संकोच के साथ बोला,
1: नहीं महाराज, ये मेरी झूठी चिलम है और फिर मैं नीच जाति का हूँ, आप इसे कैसे पी सकते हैं।
0: आजन्म के संस्कारों से वशीभूत होकर के स्वामी जी का हाथ अनजाने में ही एकदम पीछे हट गया। उन्होंने फिर अपना रास्ता पकड़ लिया। कुछ दूर जाने पर उन्हें होश आया और सोचा,
2: मैंने तो जाति कुल मान सभी को त्याग कर संन्यास ले लिया है ना, फिर जानकर मेरा सोता हुआ जाति अभिमान क्यों जाग उठा। उसकी छुई हुई चिलम मैं क्यों नहीं ले सका। अभ्यास जनित संस्कार का ये कैसा अद्भुत प्रभाव है।
0: स्वामी जी लौट पड़े और जल्द ही उसके निकट आ पहुंचे। फिर बड़े प्रेम से उससे चिलम भरवा करके उन्होंने आनंद के साथ धूम्रपान किया। इस घटना को वे जीवन में कभी न भूल पाए। बहुत दिन बाद श्री गिरीश चंद्र घोष ने स्वामी जी के मुख से यह कहानी सुनकर कहा था, अरे तुम नशे में इतने लाचार हो गए थे कि अछूत की चिलम से भी उसे पूरा करना पड़ा। इसके उत्तर में स्वामी जी ने कहा,
2: नहीं जी, ऐसी बात नहीं। सचमुच ही मुझे आत्म परीक्षा करने की इच्छा हुई थी, संन्यास लेकर पूर्व संस्कार दूर हुए हैं या नहीं, जाति भेद के पार गया हूँ या नहीं, परीक्षा कर देखना पड़ता है। प्रकृत संन्यास को बनाए रखना बड़ा कठिन है। कथनी और करनी में लेश मात्र भी अंतर नहीं चलेगा। क्या तुमने सोच रखा है कि जीवन में सन्यासी का आदर्श पालन करना बड़ा सहज है? जीवन में इतना कठिन पथ दूसरा कोई नहीं। सीधे पहाड़ के अंतिम छोर पर खड़े होना है, जरा पैर फिसलते ही काम तमाम। सन्यास व्रत लेने से हर क्षण आत्म परीक्षा कर देखना होगा कि जाति बंधनों से मुक्त हुआ हूं या नहीं। उस दिन मुझे यही शिक्षा मिली थी कि किसी की भी घृणा नहीं करनी होगी, सोचना होगा कि सभी भगवान की संतान हैं।
3: वृंदावन पहुंचकर वे बलराम बाबू की ठाकुरबाड़ी काला बाबू का कुंज में ठहरे। यहां आकर उन्होंने मानो राधा कृष्ण के अलौकिक लीला विलास का प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त किया और उसकी भावधारा में बह गए। स्वयं को संभालना कठिन हो गया। श्री कृष्ण के जीवन की घटनाएं उस समय उनकी समक्ष जीवंत लगने लगी। वृंदावन में कई दिन बिताकर उस भगवत लीला का गहनतम परिचय प्राप्त करने के लिए वे निकट के अनन्य लीला क्षेत्रों के दर्शन को निकल पड़े। गोवर्धन गिरी की परिक्रमा करते समय उन्होंने ये संकल्प किया कि बिना मांगे जो भिक्षा मिलेगी उसी से वे अपनी भूख मिटाएंगे, इसके अतिरिक्त किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। पहले दिन दोपहर को भूख की पीड़ा असहनीय हो गई, फिर उस समय वर्षा भी होने लगी, मानो उसके कष्ट की सीमा न रही। भूख और रास्ते की थकान से बलहीन होकर वे किसी प्रकार चल रहे थे। उसी समय उन्होंने अचानक सुना कि कोई पीछे से पुकार रहा है,
4: महाराज महाराज। अरे महाराज जरा रुकिए, मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ।
0: पर विवेकानंद रुके नहीं, चलते चले गए। वे यह देखना चाहते थे कि यह भोजन सचमुच भगवान ने भेजा है या नहीं। उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया, पर वह व्यक्ति भी छोड़ने वाला नहीं था। वह भी पीछे पीछे दौड़ा और अंत में उसने स्वामी जी को पकड़ ही लिया।
4: महाराज महाराज, क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हैं महाराज? मैं सही में आपके लिए ही भोजन लाया हूँ, ग्रहण कीजिए ना महाराज, मुझे इस पुण्य कार्य से वंचित न कीजिए।
2: लाओ भाई, तुमने भोजन करवाकर आज मेरी जान बचाई है, तुम्हें तो भगवान ने इस निर्जन में मेरे लिए ही भेजा है।
0: उस आदमी ने श्रद्धा पूर्वक उन्हें भोजन कराया और नमन कर चला गया। वह स्वामी जी को फिर कभी नहीं मिला।

0: आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरस्वत, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हमारे लिए बहुत छोटा सा एक समय निकाला है, उसके लिए मिनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आपका स्वागत है, वेलकम।
1: धन्यवाद
0: मिनी जी। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं मेरे सवालों से, मुझे आपसे ये पूछना है, व्हाट इज योर फेवरेट एनिमल, आपका सबसे प्रिय जानवर कौन सा है?
1: इट्स अ टफ क्वेश्चन एक्चुअली, बिकॉज माय फर्स्ट एनिमल दैट आई फेल इन लव विद वाज अ डॉग, बट आई कैन टेल यू what changed my life was not the dog, what changed my life was a chicken. So I was always deeply connected with the animal world, I can say that, or maybe life, because I used to think beyond humans, and I always felt when I saw animals behaving in a certain way, interacting with each other, with one another, maybe it is chasing one another or maybe playing with one another, it always fascinated me. So I would say from very young age I had a very deep connection with animals, and it was when I first saw chicken being slaughtered that made me become a vegetarian when I was 11 years of age. But my favorite animal, as you know, I always was, I felt, some kind of bond with the dog more than maybe other animals. But today I would say I have special connection with every animal, every life. So, yeah.
0: सुना दोस्तों, उन्होंने अपने कहानी जीवन की शुरुआत को जोड़ा एक किस्से से, जब वो 11 साल की थी तब उन्होंने एक चिकन को देखा जिसको मारा जा रहा था, और उससे उन्हें अनुभव हुआ कि नहीं, मुझे एक शाकाहारी भोजन शैली अपनानी चाहिए, क्योंकि मेरा जीवन किसी और के मृत हो जाने पर नहीं डिपेंड होना चाहिए। और इसलिए उन्होंने वहां से अपने लाइफ की शुरुआत की, अपने लाइफ को उन्होंने दोबारा देखा। आज वो मानते हैं कि आज ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके प्रति उनको प्यार नहीं, सम्मान नहीं, लेकिन फिर भी डॉग कुत्ते के प्रति उनको थोड़ा ज्यादा झुकाव है। एंड व्हाई सो, डू यू सी समथिंग इन द डॉग दैट अट्रैक्ट्स यू?
1: या सो डॉग्स दे कनेक्ट इजीली आई थिंक कंपेयर टू मेनी अदर एनिमल्स, प्रोबेबली दैट इज व्हाई यू नो दैट प्री हिस्टोरिक टाइम्स व्हेन ह्यूमंस befriended animals, even before all domesticated animals, all cows and goats and all these animals started living with humans, before all of that, dog is the one that came to human habitat. But I think there was that mutual connection, there was something which both felt as companions. So it was not more for I would say a benefit in terms of its use, but it was more friendship. So maybe that is what makes dog a little bit special, I think.
0: Yeah, very true, very true. I totally agree. Even I have felt that dogs not always look up to you for a roti or for a bread. They will just wag their tails just because they like to see you, and that's it. So, दोस्तों, मिनी जी ने जो अभी बात कही कि कुत्ता जो है वो बहुत आदिकाल से ही मानव सभ्यता का एक हिस्सा रहा है, जब हम दूसरे पशु पक्षियों के इतने क्लोज नहीं थे, तब भी शायद कुत्ता जो था वो इंसानों के करीब आना उसके लिए आसान था, क्योंकि उसका नेचर ही बड़ा फ्रेंडली है, बहुत ही वो मित्रवत उसका स्वभाव होता है। और जो ये कुत्ता होता है, आपने कभी देखा होगा साथियों, अगर आप अपने घर से दफ्तर जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं और रोज एक कुत्ते को आप देखते हैं, भले आप उसको रोटी ना खिलाएं, लेकिन फिर भी रोज आपका उसको देखना, उसका आपको देखना, वो धीरे धीरे एक दोस्ती में तब्दील हो ही जाता है। यू स्टार्ट टू लिव दैट फ्रेंडशिप विदाउट इवन नोइंग दैट यू आर कॉन्शियसली बिल्डिंग दैट फ्रेंडशिप। तो शायद कुत्ते का जो ये सरलता है, सरल भाव से वो जो किसी को अपने अपने नजदीक ला सकते हैं, दैट इज प्रोबेबली व्हाट जो हमारे मिनी जी को आकर्षित किया। बट हम इस प्रकार के हंसी मजाक के और भी लाइट क्वेश्चंस के साथ भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहला सवाल यशस्वी भारत कार्यक्रम के तौर पे मैं जो आपको पूछना चाहूंगा, जनरली देखा

0: to connect with animals. So that gets me going, and even today it keeps me going, and I feel immensely grateful that I have this ability to be able to connect. Even today, this when I was coming back to the house, I said, oh, I have this call, I mean I have this recording session, and I have to go. And I saw this dog limping very near to my house, and I just called the dog. The dog came to me, and it was, you know, very close to me. This is a very, it's a dog that is strange. I have never ever seen this dog in this neighborhood. It was limping. Just came, kept the head very close to my hand. I was able to touch, and I was and just lay down. I was able to check his leg, and it was probably some minor thing. He didn't have pain. I said, you will be fine, and I walked in, and he was sitting there and watching me. I think that was very special. I don't think a human interaction will give you that level of the awakening, or that deep sense of accomplishment. I think, yeah.
1: Very sweet. I mean, it's very reflective, and it's very, very true to your experience, and that's why it makes me feel alongside when I think. It's not just that it is making me think, it is also making me feel what you are saying. So it is really very, I am very honored that you are sharing these things straight from your heart. So I will just translate the same thing again for the audience. Sathya, Mini Ji ne jo abhi humare saath share kiya, ye ek apne aap mein bahut prernadayak prasang hai. Main shuruaat karta hoon piche se, jahan par unhone kaha ki इस इंटरव्यू में आने के पूर्व जब वो अपने घर में आ रही थी, तो उनके सामने एक कुत्ता था जो कि थोड़ा सा लंगड़ा रहा था, और वो कुत्ता मिनी जी के लिए नया कुत्ता था, उन्होंने उसको कभी देखा भी नहीं था. उन्होंने उसको बुलाया और वो कुत्ता सहज आ भी गया इनके पास, और वो आकर के उनके इतने नजदीक खड़ा हो गया कि मिनी जी उसके सर पे हाथ रख सके, और हाथ रखते हुए मिनी जी ने उसके पैर को टच किया, देखा क्या है. फिर मिनी जी उसको बोला कि चिंता नहीं करो, ठीक हो जाएगा, जस्ट डोंट वरी. वो वहीं पर आराम से बैठ गया. अब इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है कि हर कुत्ता मुझे काटने के लिए नहीं आतुर हो रहा है, हर कुत्ते से मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है. पहले ये समझना जरूरी है कि सामने वाला जो है वो किसी आवश्यकता में है क्या, उसे क्या चाहिए. शायद उसे सांत्वना के कुछ शब्द ही चाहिए. और ये केवल जानवरों के लिए नहीं दोस्तों, ये इंसानों के लिए भी होता है. जैसे ही हमारे सामने कोई आता है, हमें लगने लगता है कहीं ये मेरे से कुछ मांग न बैठे, कहीं ये मेरे से मेरा समय न ले ले, अभी 2 मिनट बोला है, कहीं 2 घंटे न बैठ जाए. हम ये चीजें भी सोचने लगते हैं, लेकिन कई बार बस इतना ही होता है कि उनसे हमें 2 शब्द चाहिए होता है. 2 शब्द भी छोड़िए दोस्तों, उनसे केवल हमसे वो हमसे हमारा प्यार भरा 2 पल चाहते हैं, 2 समय की ऐसी बूंद चाहते हैं जो उनको उस समय बहुत जरूरत है. ये जो भावना है देने की, ये भावना ही इंसान को आगे बढ़ाती है. जब मिनी जी अपने कहानी को शेयर कर रही थी कि कितने लोगों ने उनको बहुत बुरा भला कहा, कई बार ये बोला कि तुम क्या कर रही हो, तुम शायद इंसानों को पसंद ही नहीं करती, इसलिए तुम जानवरों के पीछे पड़ी हुई हो, और बहुत प्रकार की ऐसी बातें हैं जिनसे उनको वो पीछे हट सकती थी, लेकिन किस चीज ने उनको आगे बढ़ने दिया, या किस चीज ने उनको अविरत अपना प्रयास करते रहने दिया, वो ये था कि जब वो देखती थी उस पीड़ित जानवर की आंखों में सुकून, जिसको वो कुछ मदद पहुंचा रही थी, तो वो उसकी आंखों का सुकून इनकी आत्मा को, इनकी रूह को चैन देता था. ये जो है, किसी को भी जब हम सेवा पहुंचाते हैं, किसी के लिए भी हम कुछ भी करते हैं, चाहे वो छोटी सी सेवा हो, बड़ी सी सेवा हो, उस सेवा का जो सुकून है, वो जो तृप्ति है, वो जो प्राप्ति है, वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा है. किसी के मोटिवेशनल शब्दों की आवश्यकता नहीं, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, खुद करके अनुभव कीजिए. अगर मैं किसी की मदद करता हूं और मुझे कैसा फील होता है, अगर ये मैंने पकड़ लिया, तो मैं कभी भी अपने इस जर्नी में रुकूंगा नहीं, इस यात्रा में मैं आगे बढ़ता रहूंगा, और अपने साथ साथ फिर कारमा को बढ़ाता भी चलूंगा. एक मिनी जी ने शुरुआत की, धीरे धीरे उनके आसपास पड़ोसी, उनके साथीदार सब उनके आसपास आने लगे. क्यों? क्योंकि उन्होंने भी देखा मिनी जी को जो सुकून मिल रहा है, वो सुकून मुझे भी चाहिए, और सेवा से ज्यादा बड़ा सुकून किसी और चीज में नहीं.

थोड़ा सा कम कर सके, उनके दर्द को अगर हम थोड़ा सा कम कर सके और किसी के दुख को हम थोड़ा सा कम कर सके, ये होना चाहिए हमारे जीवन का उद्देश्य, जो कि डॉक्टर मिनी वासुदेवन का भी है। अब तक जो भी उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, मुझे लगता है उससे हमने बहुत कुछ सीखा होगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही कि जानवरों के साथ जब हम समय बिताते हैं तो हमें हमारे बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है, समझने को मिलता है, क्योंकि जानवरों को हमसे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, अपेक्षाएं नहीं होती उनको। तो दोस्तों, इस चर्चा को हम फिर से जारी रखेंगे अगले एपिसोड में, लेकिन तब तक के लिए आप रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके आमने सामने कोई भी जानवर दिखे और अगर आप उसकी कुछ मदद कर सके तो जरूर मदद कीजिएगा। छोटा सा एक कटोरी पानी का ही अगर आप बाहर रख दें तो अपने पंछी गर्मी के समय में पानी पी सकते हैं। अगर आप अपना बचा हुआ भोजन जानवरों को खिला दें तो हो सकता है उनके कितने दिनों की भूख आप एक दिन में शांत कर सकते हैं। ऐसे कई छोटी छोटी चीजें जो आप कर सकते हैं दोस्तों, करिएगा और हमें बताइएगा आपको वो करते हुए कैसा महसूस हुआ। और अगले एपिसोड में आपसे हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट की जब हमने बात की थी तो हमें लगा था कि अच्छा सेल्फ को मैनेज करने की बात होगी, लेकिन इस पूरी श्रृंखला में जिस तरह से हम देख रहे हैं सेल्फ कहीं बाहर की बात नहीं बल्कि अपने ही अंदर जो मैं हूं उसको पहचानने की बात थी। और अगर पिछली कड़ी को देखें तो हम सारे लेबल, सारे पर्दों को हटाकर, सारे बाहरी आवरणों को हटाकर खुद तक पहुंचे थे कि मेरी अपनी सही पहचान क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि फिर जहां मेरी अपनी पर पहचान हुई, कौन हूं मैं ये जाना, तो उसके बाद वैल्यूज कौन सी होंगी मेरे पास और फिर जीवन का पर्पस क्या होगा। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं रामा कुमारी सुश्री शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सुश्री शिवानी, जहां पिछली कड़ी अगर हम देखते हैं तो बहुत सी बातें करते करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते देखते, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई थी, बहुत सी और चीजें देखी थी, तो फिर हमने पिछली कड़ी में ये जाना था कि मेरी अपनी सही पहचान क्या होती है, कौन हूं मैं। मैं आई थिंक फाइनली वी हैव टॉक्ड अबाउट इट कि मैं वो चैतन्य शक्ति, वो एनर्जी, वो बीइंग हूं। अब आगे हम वैल्यूज इसी पर बेस करें,
1: क्योंकि जब हम देखते कि जब तक आइडेंटिटी का आंसर राइट नहीं आता, हु एम आई, तब तक हम एक अलग ही दिशा में चल रहे होते हैं। जैसे हमने वो सारे लेबल्स देखे तो लेबल्स के आधार से हमने वैल्यूज देखे कि इफ आई एम अ प्रोफेशनल तो मेरी वैल्यूज क्या है, इफ आई एम अ मदर तो मेरी वैल्यूज क्या है, इफ आई सी माई सेल्फ ओनली एज एन इंडियन तो मेरी वैल्यूज क्या है। सिमिलरली अपने पर्पस को भी देखें उसी के साथ, राइट? अब आपके इतने सारे लेबल्स हैं, लेट्स से आप एक लेबल ले, आई एम अ मदर, तो पर्पस ऑफ लाइफ क्या बन जाता?
0: टू टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन इन द राइट वे, इन द राइट यू नो डायरेक्शन।
1: तो किसी भी आप हाउसवाइफ को पूछें कि आपके जीवन का पर्पस क्या है, मेरे बच्चों को बड़ा करना, उनके अंदर अच्छे संस्कार डालना, तुरंत विच इज फाइन, वेरी फाइन। आप एक डॉक्टर से मिलते हैं, पूछिए आपके जीवन का पर्पस क्या है, तो तुरंत क्या आंसर निकल कर आएगा?
0: मेरा अपना काम अच्छा करना, पेशेंट्स को ठीक करना, और
1: विच इज वेरी नोबल, नोबडी इज डिनाइंग दैट, लेकिन इज दिस माई पर्पज ऑफ लाइफ और इज दिस द रोल दैट आई एम प्लेइंग इन लाइफ? हीलिंग, is this the purpose of my life? Yeah, is this my job, my profession, my role? अब कई बार हम समझते कि ये है मेरा जॉब, लेकिन उसमें मैं इतना पैशनेट हूं, मैं उसको इतना दिल से कर रहा हूं, एंड विच इज ट्रू, कि मैं ना पूरी सिंसियरिटी से कर रहा हूं, तो यही मेरा

0: पर्पस ऑफ लाइफ है।
1: मैं मिशन भी बना लेता हूँ कई बार,
0: मेरे जीवन का जो मिशन
1: है, मेरे जीवन का मिशन।
0: यस, तो हु एम आई आंसर के ऊपर ही हमारा पर्पस और वैल्यूज डिपेंड करता। तो आज जो एक छोटी सी हम गलती कर बैठे वो ये कि अपने रोल्स को, अपने रिश्तों को, अपने जिम्मेवारियों को ही अपना पर्पस ऑफ लाइफ बना लिया। जो जॉब में हम थे वही मेरा पर्पस ऑफ लाइफ बन गया। एक प्रोफेशनल को देख लो, व्हाट्स योर पर्पस ऑफ लाइफ, टू बिकम सो एंड सो इन द कॉर्पोरेट लैडर, रीच हियर एंड देयर, दैट कैन बी माय गोल। लेट मी नॉट मिक्स कि मेरा गोल क्या है और मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, क्योंकि आपका प्रोफेशन भी टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ किसका है, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर हमने क्या किया, जो हम आई होप एवरीवन डिड इट विद अस यस्टरडे, कि अपने लेबल्स को जैसे जैसे हम साइड पर रखते गए तो वी केम टू द फाइनल आंसर कि मैं कौन हूं, ये सब कुछ मेरा है, यहां तक कि ये शरीर भी, ये मेरा है, मैं हूं वो शक्ति, एनर्जी, कॉन्शियसनेस जो इसको चलाती है, जो ये सारे रोल्स प्ले करती है, जो ये सारे रिश्ते निभाती है, लेकिन मैं आई कौन है, वो आई का आंसर आ गया। तो जो हमने तीन क्वेश्चंस देखे थे कि जो अपने जीवन में बहुत फोकस्ड होकर चलेंगे, उनके तीन क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, हु एम आई, वेयर एम आई एंड व्हाई एम आई हियर, दीस थ्री आंसर्स वी वांट। तो हु एम आई आया कि आई एम दिस प्योर बीइंग एनर्जी। जैसे हम ये कॉन्शियसनेस में बैठते कि मैं ये वो चैतन्य शक्ति हूं, अगर रोज इसको थोड़ा बार बार करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, तो यू विल रियलाइज कि जो व्हाई एम आई हियर, यू नो, एंड वेयर एम आई, तो जो जब हु एम आई आता तो उसका नेचुरल इम्पल्स ये आता कि थॉट क्रिएट करना, कर्म में आना और लोगों के साथ एनर्जी एक्सचेंज करना, दिस इज वेयर आई एम इन द फील्ड ऑफ रिलेशनशिप्स। मेरा इस सृष्टि पर शरीर लेकर आकर ये पर्पस क्या है, मैं क्यों हूं, टू कम इनटू रिलेशनशिप और टू कम इनटू एक्शन विद अदर सोल्स। आत्मा का नेचुरल इम्पल्स है एनर्जी लेना,
1: टू इंटरैक्ट, यस,
0: टू इंटरैक्ट, ये नेचुरल इम्पल्स है। लेकिन वो मुझे तभी समझ में आता जब मुझे याद आता कि हु एम आई एंड वेयर एम आई, आई एम इन दिस फील्ड ऑफ रिलेशनशिप्स एंड व्हाई एम आई हियर, कि ये जो मेरा नेचुरल सेल्फ पता चला तो मेरी जो क्वालिटीज हैं, मेरी जो वैल्यूज हैं, उनको औरों के साथ शेयर करना, ये मेरा नेचुरल संस्कार बन जाता है। इफ आई रिमेम्बर दैट आई एम अ कॉन्शियंट बीइंग, देन टू गिव लव टू पीपल विल बिकम माय नेचुरल, दैट्स व्हाई आई एम हियर। लेकिन जब वो आंसर नहीं हो रहा,
1: पर्पस ऑफ माई लाइफ बिकम्स लाइक टू गिव लव टू पीपल,
0: व्हाट डू यू थिंक?
1: यस, दैट मेक्स सेंस।
0: What do you think? Now think about it. Because a purpose of life किसका ढूंढना है?
1: The being.
0: Who am I? I am a human being. I am not a human doing. अभी तक purpose of life किसका ढूंढ रहे थे? जो doing था, मुझे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्योंकि who am I? Mother. तो purpose of life उससे connected. Who am I? Doctor. Purpose of life उससे connected. Who am I? A pure being. Purpose of life?
1: उससे कनेक्टेड।
0: इसीलिए जब तक वो हु एम आई आंसर नहीं हो रहा था तो पर्पज ऑफ लाइफ ढूंढना वॉज इम्पॉसिबल। सो नाउ वेन आई सिट बैक, सो इट डजेंट मीन दैट आई एम नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस मेडिसिन, या इट डजेंट मीन कि मैं अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखने वाली।
1: इतना ईजी हो जाता है पता है पर्पज ऑफ लाइफ को समझ पाना फिर, और हम सारा टाइम ढूंढते रहते हैं, उसी में इन्वॉल्व रहते हैं और हर चीज में उसी को ढूंढ रहे होते हैं कि ये मेरा पर्पस है, ये मेरा पर्पस है। इन द वे यू सेड, वेरी ट्रू, कितनी बार हम अपने प्रोफेशन बदल रहे होते हैं, कितनी बार
0: हमारी
1: बार बार बदलता जाएगा हमारा।
0: यस, नहीं, और कई बार लगता है ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है, मैं अपना जॉब बदल कर देखता हूँ, आई विल फाइंड इट देयर, इट वॉन्ट कम टिल आई रिमेम्बर पर्पस ऑफ लाइफ किसका। आपको याद हो जब हम बचपन में खेलते हैं आपस में तो हम अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, यू नो, मैं ये बनूंगा, आप ये बनोगे, एंड ऑल दैट, वी ड्रेस अप इन डिफरेंट वेज, और हमें वो खेल खेलना अच्छा लगता है, लेकिन खेल खेलते खेलते हमें ये तो याद रहता है ना
1: कि हम कौन हैं,
0: और ये हमारा खेल है, और हमें ये भी पता होता है कि थोड़ी देर के बाद ये सारे जो हमने ओढ़े हैं अपने ऊपर, ये सारे उतर जाएंगे। यही खेल हम अपने जीवन की यात्रा में खेलते हैं, जैसे जैसे जैसे वी आर ग्रोइंग, हम एक एक लेबल अपने ऊपर उड़ते जा रहे हैं, विच इज पार्ट ऑफ द जर्नी। लेकिन सिर्फ ये था कि बचपन में ये याद था कि मैं कौन हूँ और ये मैंने सारा कुछ ओढ़ा है, लेकिन अब क्या हो गया, जो मैं ओढ़ा है वो ही मैं हो गया, और उसको ही हमने मैं ये हूँ, तो सारा कुछ जो मेरे जीवन में कनेक्टेड था अब वो उससे हो गया। एंड देन जो हमने पहले डिस्कस किया, जो हम कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि फॉर माई फैमिली आई हैव टू डू दिस जॉब, वाई, बिकॉज माई वैल्यूज एंड माई पर्पज ऑफ लाइफ वॉज फर्स्ट टेकिंग केयर ऑफ फैमिली। लेकिन जहां मुझे समझ में आया कि मैं कौन हूं, तो फिर मुझे अपना पर्पज ऑफ लाइफ ढूंढना बहुत ईजी हो जाएगा। तो जब हमें परमात्मा ने आकर ये स्मृति दिलाई, ये सब कुछ आपका है, आप एक चैतन्य शक्ति, और वो भी कैसे, प्योर लवफुल, क्योंकि परमात्मा ने आकर हमें अपनी ही पर्सनालिटी, जो कि हमें पता थी लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल गए थे, उसकी स्मृति में नहीं थे, तो परमात्मा ने, शिव बाबा ने आकर हमें याद दिलाया, प्योर बींग, लवफुल बींग, हैप्पी बींग, ब्लिसफुल बींग, पावरफुल, शक्ति स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप। जब आप एक मदर हैं तो पर्पज ऑफ लाइफ था बच्चों को बड़ा करना, जब आप एक पीसफुल बीइंग हैं तो पर्पज ऑफ लाइफ
1: टू क्रिएट पीस, ओह यस,
0: सिंपल। जब आप एक हैप्पी ब्लिसफुल बीइंग हैं, पर्पज ऑफ लाइफ
1: टू क्रिएट दैट हैप्पीनेस,
0: आंसर चेंजेस, आंसर चेंजेस। नाउ आई एम अ पीसफुल बीइंग playing the role of a mother, the sentence change ho gaya,
1: it becomes so easy to create happiness then, you know, playing mother also,
0: yeah,
1: pehle kyunki responsibility
0: change ho jayega aapka,
1: kyunki pehle responsibility bachcho ko dekhni itni zyada hai ki bacche ne doodh piya ya nahi piya, bacche ne homework kiya ya nahi hai, ye to yaad hi nahi rehta ki happiness bhi create karni hai, tension is baat ki hoti hai ki wo doodh pi le ya wo khana kha le ya wo apna homework kar le, और उसमें हम कितना एंग्री और कितनी बार कितने परेशान,
0: ये जो हम एंगर क्रिएट कर देते, दर्द क्रिएट करते, हर्ट क्रिएट करते, ये सब करते करते हम क्या भूल गए, मेरा पर्पज ऑफ लाइफ क्या था, और इसलिए वो बार बार बीच में वो क्वेश्चन ट्रबल करता, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ करते हुए मैं अपना पर्पज ऑफ लाइफ अचीव नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं जो हूँ उसको मैं भूला हुआ हूँ ना, मैं खुद अपने को ही भूला हुआ हूँ, और मैंने वो जो ओढ़ लिया अपने अराउंड बॉडी, फिर रिलेशनशिप, प्रोफेशन और लेबल्स, तो वो सब को ओढ़कर उसी को बचाने में और उसी को प्रोटेक्ट करने में मैंने जो अपने आप को कहा कि इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस और इतने सारे एडजस्टमेंट्स हम करते गए, और अंदर ही अंदर मैं जो था वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट होता गया, एंड दैट्स व्हाई द बिगेस्ट प्रॉब्लम एवरीबडी हैज टुडे इज डिससैटिस्फैक्शन, दे लुकिंग फॉर सैटिस्फैक्शन, व्हाई आर वी लुकिंग फॉर सैटिस्फैक्शन,
1: इफ आई एम डूइंग द रोल, सी इफ आई एम डूइंग द कैरेक्टर,
0: Why am I not satisfied? अपना तो हर एक चीज कर रहे हैं ना, अच्छी तरह से निभा रहे हैं, संतुष्टता क्यों नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मैं जो हूं आई एम नॉट बींग एबल टू एक्सपीरियंस दैट, आई एम नॉट बींग एबल टू एक्सप्रेस दैट, तो अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा, यू नो, जैसे लाइक लेट्स लुक एट इट लाइक अ लिटिल गेम, कि अंदर कोई है जो बंद है, ठीक है, ऊपर से किसी ने सारा उसको ढक लिया, तो जो अंदर वाला है वो तो अंदर बिल्कुल अपने आप को कैसा फील कर रहा है, सेफोकेटेड, कि मैं जो हूं मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, मैं सारा दिन इन्हीं का ध्यान रख रहा हूं, तो फिर मेरे अंदर वो घुटन होती है कि मैं असंतुष्ट हूं, मैं डिससैटिस्फाइड हूं, सब कुछ कर लिया जीवन में, प्राप्त भी कर लिया वो सारे गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, बड़ी बड़ी कंपनी की सीईओ बन गए, बच्चे भी वेल सेटल्ड हो गए, प्रॉपर्टी भी सारी है, क्या चीज नहीं है आपके पास, सैटिस्फैक्शन, कॉमन आंसर है आज, सैटिस्फैक्शन अंदर वो एक वैक्यूम है, क्यों, ये सब डूइंग पार्ट सारा कर लिया, क्यों वैक्यूम है, क्योंकि पूरी जीवन कैसे बिता रहे हैं, हु एम आई, ये लेबल, तो पर्पज ऑफ लाइफ क्या समझा, ये करना, वैल्यूज क्या समझे, इसका ध्यान रखना, इसको सेफ रखना, मैं निग्लेक्ट हो गया पूरी तरह से, तो मेरे अपने ही जीवन की यात्रा में अपनी वैल्यूज और अपना पर्पस नहीं एक्सपीरियंस किया, तो संतुष्टता,
1: ओह यस,
0: संतुष्टता कहाँ से आएगी,
1: नहीं आ सकती,
0: आई विल फील सफोकेटेड
1: एंड यू आर फीलिंग दैट, यस,
0: अब हम गुस्सा कर रहे हैं, जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बात हमें तकलीफ तो देती है, बिकॉज हु एम आई इज अ पीसफुल बींग।

0: तो जैसे ही
1: और हमने अपने साथ ही कितना अन्याय किया है
0: क्योंकि हम अपने आप को जानते नहीं थे इसलिए तो न जानने के कारण हम बाहर ही ढूंढते रह गए सारा कुछ और हमने सोचा कि पता नहीं क्या होगा मेरा
1: हम अदरवाइज वैसे कितने अच्छे हैं मतलब अब देखें अगर
0: सारे बहुत अच्छे हैं
1: इसलिए कि हमारे पास जो जो जिम्मेदारी थी जो जो हमने अपना पर्पस माना जो जो हमने देखा कि हम ये चीजें हैं लेबल्स को समझा तो वो तो हमने अच्छी तरह से निभाया ही
0: लेकिन निभाते हुए अपना ध्यान नहीं रखा कल से भी हमने वही निभाना है ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि मेरा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो सारी चेंज हो जाएंगी बट सिर्फ पर्पज ऑफ लाइफ होगा टू क्रिएट हैप्पीनेस टू क्रिएट लव क्रिएट नॉट टेक अगेन
1: क्रिएट
0: अभी क्या था क्योंकि मैंने अपने को नहीं पहचाना तो मैं अपनी वो वैल्यूज और पर्पज कहाँ ढूंढ रहा था चाहिए तो था मुझे क्योंकि दैट्स हु एम आई लेकिन मैं उसको फिर कहाँ ढूंढ रहा था
1: मेरा बच्चा अच्छा होमवर्क कर ले तो मेरे को खुशी होगी उसके अच्छे मार्क्स आ जाए तो होगी
0: तो क्योंकि मैंने अपने पर्पज ऑफ लाइफ डूइंग में डाल दिया कि कुछ करने से मैं अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करूंगा तो मैंने सोचा वो लक्ष्य प्राप्त करने से मुझे खुशी मिलेगी क्योंकि फाइनली एट द एंड ऑफ द डे क्या चाहिए
1: खुशी
0: खुशी संतुष्टता शांति कहां ढूंढ रहे हैं कि ये पूरा होगा लक्ष्य तो मुझे मिलेगा ये लक्ष्य को मैं प्राप्त कर लूंगा तो मिलेगा क्योंकि वन थिंग इज वेरी क्लियर कि जब हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तभी संतुष्टता होती है नहीं तो देर विल ऑलवेज बी अ कॉन्फ्लिक्ट लेकिन हमने लक्ष्य क्योंकि बाहर बना दिए तो फिर हम खुशी को भी कहां ढूंढने लगे
1: बाहर इनफैक्ट वही क्योंकि पहचान ही नहीं थी पहचान ही जिसको माना उसी से जुड़ा हुआ तो लक्ष्य बनाया और हम अमेजिंग यस वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट हम ये बार बार कहते हैं कि मैंने अचीव तो कर लिया लेकिन फिर एक अचीवमेंट के बाद इसीलिए हम दूसरे अचीवमेंट की तरफ भागते
0: बिकॉज खुशी तो मिली नहीं थी ना
1: तब हम ये कहते हैं कि हम तो भागते ही रहेंगे फिर इस चक्कर में
0: तो अब क्या हुआ एक कॉन्शियसनेस शिफ्ट से कि मैं ये सब नहीं मैं आत्मा हूं मेरा पर्पज ऑफ लाइफ सिंपल हो गया एंड माय पर्पज इन लाइफ इज टू एक्सपीरियंस माय क्वालिटीज एंड टू एक्सप्रेस देम शांति प्यार पवित्रता इसका अनुभव करना और अनुभव कब होगा जब हम उनको अपने इंटरैक्शंस में एक्सपीरियंस कर रहे थे अब हम ना अनुभव करते हैं ना उनको हम एक्सप्रेस करते हैं हम एक्चुअली उनकी डिमांड करते हैं मुझे शांति दो मुझे प्यार दो मुझे रिस्पेक्ट दो मिल नहीं रहा अगेन क्वेश्चन मैं यह क्या कर रहा हूं सो नाउ द ट्रांजैक्शन साइड हैज टू चेंज ऐसा नहीं ऐसा एंड नाउ लेट्स ट्राई एंड पुट दिस एज द पर्पज ऑफ माई लाइफ पर्पज ऑफ माई लाइफ टू बी हैप्पी एंड देन प्ले माई रोल्स पर्पज ऑफ माई लाइफ बी पीसफुल देन प्ले माई रोल्स
1: इट्स माई कोर वैल्यू इट्स माई कोर वैल्यू
0: अब अपनी वैल्यूज की लिस्ट निकालिए जब हमने पहले लेबल के आधार से वैल्यूज की लिस्ट निकाली तो निकली पावर पोजिशन फैमिली ये सब वैल्यूज की लिस्ट आई केयर फॉर देम लेकिन जब मुझे ये समझ में आता कि मैं तो चैतन्य शक्ति आत्मा हूं तो आत्मा की वैल्यूज की लिस्ट क्या निकलेगी
1: पीस
0: पीस हैप्पीनेस लव अब आने दो सिचुएशन आपके सामने अब प्रायोरिटाइज करना
1: आई कैन एक्चुअली जस्ट विजुअलाइज यू नो कि अब अगर बच्चे को पढ़ाना है या बच्चे ने खाना खाया है नहीं खाया मेरा पर्पस ऑफ लाइफ अब अगर हैप्पीनेस क्रिएट करना है लव क्रिएट करना है वो क्रिएट करके अगर मैं खिलाती हूँ
0: क्रिएट करते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्ले करना है तो सारा जीवन जीने का तरीका चेंज हो जाएगा
1: एंड इन फैक्ट इट विल बिकम मच इजियर टू डू ऑल दीज थिंग्स यू नो
0: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि सब कुछ करते हुए भी अंदर से कैसा फील करेंगे
1: बहुत अच्छा इनफैक्ट हमारी एनर्जी उतनी वेस्ट नहीं होगी बिकॉज हमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करना पड़ रहा होगा
0: एंड फॉर जो चीजें हम अनुभव करना चाहते हैं हम उनको बाहर नहीं ढूंढेंगे एंड वी विल बी वेरी क्लियर कि मेरे जीवन का पर्पज है अपने को पहचान दिया अब उसको हर संबंध में हर रोल में हर प्रोफेशन में आई एम अ डॉक्टर हीलिंग इज माई प्रोफेशन लेकिन पर्पज ऑफ लाइफ
1: लव
0: लव और हैप्पीनेस के साथ वो करना हॉस्पिटल गए बहुत सारे मरीजों को ठीक तो कर दिया लेकिन इन द प्रोसेस कई बार गुस्सा क्रिएट किया कई बार दर्द क्रिएट किया किसी और को डांट दिया ये किया तो आई विल नॉट फील कंटेंटेड इवन आफ्टर हीलिंग सो मेनी पीपल
1: उस वक्त जब वो सर्जरी करके दैट मोमेंटरली जो हैप्पीनेस है वो डेफिनेटली
0: तो अचीवमेंट है अचीवमेंट है विच इज वेरी गुड मैंने एक टास्क लिया एक जिम्मेवारी उठाई

0: वही देखती जो मैं इसके द्वारा देखना चाहता हूँ। मैं कौन हूँ जो चूज करता है इस शरीर के द्वारा क्या करना है? शरीर को चलाने वाली शक्ति, एनर्जी, कॉन्शियसनेस, मैं आत्मा हूँ। आई एम एन इटर्नल एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट, द सोल। अपने आप को धीरे धीरे देखने का प्रयास करें। शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, अति सूक्ष्म छोटा सा टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, जस्ट लाइक अ लिटिल स्टार इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। दिस इज मी, ये मैं हूं जो ये शरीर धारण कर अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। आई एम अ पावरफुल बींग, हर परिस्थिति का मैं मास्टर हूं। शांति, खुशी मेरी अपनी प्रॉपर्टी, मेरी अपनी नेचर है। दिस इज हु आई एम। आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ ब्लिसफुल सोल। मेरे जीवन का लक्ष्य अपनी वैल्यूज को, अपने गुणों को अनुभव करना और अपने संबंधों में लेकर आना। टू एक्सपीरियंस पीस एंड टू एक्सप्रेस इट इन एवरी इंटरेक्शन, टू फील लव एंड टू एक्सप्रेस इट इन एवरी इंटरेक्शन, बिकॉज दिस इज हु आई एम। टुमारो एज आई गो ऑन इन द जर्नी ऑफ माई लाइफ, मुझे सिर्फ यही याद रखना है कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। आई एम अ ब्लिसफुल बींग एंड आई विल एक्सप्रेस इट विद एवरी वन आई मीट, बिकॉज दिस इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। ओम शांति।
1: ओम शांति। लाइफ बिकम्स एक्चुअली सो ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच कि आज हम जो अभी तक इतने पर्पस ढूंढ रहे थे, सचमुच में क्लैरिटी के साथ न सिर्फ अपनी वैल्यूज, अपनी पहचान, बल्कि पर्पस ऑफ लाइफ समझ में आता है। शांति। आज तक जो भी हमने बीड़ा उठाया, जो भी हमें कर्तव्य निभाने को कहा गया, हमने बहुत अच्छी तरह से निभाया। हमें पर्पस मिला लाइफ का, जो भी रोल था उसमें जो भी पर्पस था उसे बहुत अच्छी तरह से निभाया। हम कर्मठ लोग हैं, अच्छा काम करते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। लेकिन जब अपनी पहचान हुई तब समझ में आया कि सबसे बड़ा अन्याय तो अपने ही साथ हो रहा था, क्योंकि जो मेरी अपनी पहचान है, जो मैं हूं, उसकी कोर वैल्यूज को ना समझते हुए मैं अपना ही पर्पस नहीं जान पा रहा था। सो आज जब ये पता चला है, एक ऐसा पर्पस जो मेरा रियल पर्पस है लाइफ का, वो जब समझ में आ रहा है तो उसे भी मैं उसी खूबी से निभाऊंगा, ये मैं समझ सकता हूं। सो कौन हूं मैं, मेरी वैल्यूज क्या है, मेरा पर्पस क्या है, ये अब समझ में आया। निभाऊंगा कैसे, वो भी उसी शिद्दत से और उसी कर्मठता से। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सवाल आपके मन में उठता है, आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं।
2: हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है om shanti studio@bkmail.org।

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुणे की आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की,

0: ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा. व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 करोड़ सेल्स. एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी. 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क. सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस. अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा. तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे. अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उससे हमें याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियाँ बांटो।
1: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: आप षड्यंत्र रच रहे हैं।
1: देखिए मैं फिर कह रहा हूँ,
0: अंग्रेज बहादुर बड़े दयालु हैं, इतना सब करने के बाद भी वे आपको माफ करने के लिए तैयार हैं।
1: बशर्ते
2: बशर्ते क्या?
0: आप अगर सब कुछ सच सच बता दें तो हम आपको कोई दंड नहीं देंगे, आपको सरकारी गवाह बना देंगे। आप अपने साथियों के नाम बता दीजिए।
2: आप मुझे खरीदना चाहते हैं?
0: देखिए, नाराज होने से कोई फायदा नहीं होगा, हम तो आपको एक मौका देना चाहते हैं। आपको हम छोड़ देंगे, संरक्षण भी देंगे, सोच लीजिए, आपको फायदा ही होगा।
3: झूठे आरोप, झूठे बहाने से मुझे बुलाकर आपने मेरे और मेरे साथियों के विरुद्ध प्रचुर आरोप लगाए हैं, यही आपका पेशा है। तथापि अपमान सहन करना ही मेरी शिक्षा है। मैं यदि अपराधी और षड्यंत्री होता तो आपके किसी गार्ड के आने के पहले ही मैं आपकी गर्दन मरोड़ देता और कोई कुछ नहीं कर पाता। वे सब बातें रहने दें, मैं आपको निर्विवाद छोड़े जाता हूँ।
4: साथ साथ दरवाजा खोलकर उन्होंने विदा ली। उस क्रुद्ध वीर मूर्ति के दर्शन से पुलिस अधिकारी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए।
5: सन्यासियों की कर्मशीलता केवल पठन पाठन तर्क विवेचना तक ही सीमित नहीं थी। एक और वस्तु का अंकुर उसी समय से दिखाई पड़ता था और वह था सेवा धर्म। उन दिनों भी स्वामी जी के उपदेशों से सन्यासीगण स्वयं न खाकर भी भूखे पीड़ित दरिद्र और विपदाग्रस्तों के प्राण प्रण में सेवा भाव और सहायता करते। उन लोगों में कोई कोई तो कुष्ठ के रोगी तक की सेवा करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट का अनुभव नहीं करते थे।
4: मठ के गुरु गंभीर परिवेश और एकांतिक आध्यात्म साधना के बीच भी मुक्त मन और निर्दोष हास परिहास के लिए यथेष्ट अवसर था। रसरंग प्रेमी नरेंद्र नाथ अनन्य क्षेत्रों की भांति इस क्षेत्र में भी सबके पथ प्रदर्शक थे। इसके अतिरिक्त तारकनाथ, योगींद्र एवं दूसरे कोई कोई विचित्र कथावार्ता एवं अद्भुत भाव भंगिमा और क्रियाकलापों के द्वारा हंसी का फव्वारा छोड़ते। लाटू ने उन दिनों की बातों का स्मरण कर भक्तों से कहा था, हम लोगों में से तारक दादा बड़े आमोद प्रिय थे, केवल लोगों की नकल करते और कहते, तुम लोगों के साथ थोड़ा हंसी मजाक करता हूँ, इसके लिए तुम लोग क्रोध नहीं करना भाई।
5: समय समय पर ग्रही भक्तगण भी मठ में उपस्थित होकर के श्री रामकृष्ण के जीवन के बारे में तथा धर्म संबंधी चर्चा किया करते थे। अनेक परिचित व्यक्ति भी कौतूहलवश कोई तर्क करने अथवा कोई परीक्षा लेने वराहनगर के मठ में आया करते थे। नरेंद्र के युक्तिपूर्ण उत्तर के सामने बहुधा वे ठहर नहीं सकते थे। साधारण व्यक्ति की अविशिष्ट समालोचना से भी बिना किसी प्रकार उत्तेजित हुए नरेंद्र कहते,
1: अरे श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, लोग तो मानो कीड़े हैं, इसका मतलब जानते हो ना? कामिनी कंचन के प्रीतदास लोग क्या कहते हैं और क्या नहीं, उस पर ध्यान न देना। सन्यासियों को उससे विचलित होना उचित नहीं।
4: पाश्चात्य दर्शन शास्त्र के ज्ञाता संदेहवादी नरेंद्र नाथ ने लगातार 6 वर्षों तक श्री गुरुदेव के साथ बहस की थी, पर आज उनमें ये कैसा अद्भुत परिवर्तन है। आज भी सन्यासी हैं, रामकृष्ण संघ के नेता हैं। उपनिषद या वेदांत को समझने के लिए उन्होंने किसी विशेष भाष्यकार का अनुसरण नहीं किया, करने की आवश्यकता भी महसूस नहीं हुई। वे स्वाधीन भाव से शास्त्र चर्चा में प्रवृत्त हुए थे। उन्होंने बाद में कहा था,
1: विधाता की इच्छा से मुझे एक ऐसे व्यक्ति का साथ प्राप्त हुआ था जो एक ओर जैसे घोर द्वैतवादी थे, दूसरी ओर ठीक वैसे ही घोर अद्वैतवादी थे। जो एक ओर जैसे परम भक्त थे, दूसरी ओर ठीक वैसे ही परम ज्ञानी थे। उनकी शिक्षा के फल से ही मैंने उपनिषद तथा अन्यान्य शास्त्रों को केवल आंखें बंद करके भाष्यकारों का अनुसरण करते हुए नहीं, वरन स्वाधीन भाव से उत्कृष्ट रूप से समझना सीखा है।
5: सन 1886 ईस्वी का दिसंबर महीना आया। श्री रामकृष्ण के अन्यतम बाल सन्यासी शिष्य स्वामी प्रेमानंद या बाबूराम घोष की माता के निमंत्रण पर एक दिन सन्यासीगण उनके गांव आठपुर में एकत्र हुए। रात में मकान के बाहर वाले प्रांगण में विराट धुनी जमाकर नरेंद्र गुरु भाइयों के साथ ध्यान में

0: वराहनगर मठ में कुछ दिन बिताने के बाद सन्यासियों के हृदय में तीर्थ भ्रमण की आकांक्षा प्रबल हो उठी। दो एक सन्यासियों को ये आशंका हुई कि शायद बाहर जाने की आज्ञा ही ना मिले, इसलिए नरेंद्रनाथ को सूचित किए बिना ही वे मठ छोड़ तीर्थ भ्रमण को निकल पड़े। एक दिन नरेंद्रनाथ को किसी विशेष कारण से कलकत्ता जाना पड़ा। वहां से लौटकर उन्होंने सुना कि सांसारिक ज्ञान से वंचित बालक शारदा प्रसन्न माँ गुप्त रूप से मठ छोड़कर चले गए हैं। उन्हें बड़ी चिंता हो गई कि ये बालक ना जाने किस विपत्ति में पड़ जाए। उन्होंने राखाल को बुलाकर कहा,
1: तुमने उसे जाने क्यों दिया? देखो राजा, मैं किसी विकट स्थिति में पड़ गया हूँ। घर द्वार छोड़कर यहाँ आया और यहाँ एक नई माया का संसार जोड़ बैठा हूँ। इस लड़के के लिए प्राण बड़े व्याकुल हो उठे हैं।
2: इसी समय एक व्यक्ति ने उनके हाथ में एक पत्र दिया। शारदा प्रसन्न जाते समय उसे लिखकर छोड़ गए थे। उसमें लिखा था, मैं पैदल वृंदावन जा रहा हूँ। यहाँ पर रहना मेरे लिए असंभव हो गया है। कौन जाने किस समय मन की गति बदल जाए। मैं बीच में माता पिता घर सजन आदि के स्वप्न देखता हूँ। मैं स्वप्न में मूर्तिमती माया द्वारा प्रलोभित हो रहा हूँ। मैंने काफी सहन किया है। यहाँ तक कि प्रबल आकर्षण के कारण मुझे दो बार घर जाकर के स्वजनों से मिलना पड़ा है। अतः अब यहाँ रहना किसी भी तरह उचित नहीं है। माया के पंजे से छुटकारा पाने के लिए दूर देश में जाने के अलावा कोई गति नहीं है। पत्र पढ़कर स्वामी जी का मुखमंडल गंभीर हो गया। राखाल ने कहा, अब समझा शारदा क्यों मठ छोड़ करके चला गया है। उन्होंने चिंतित होकर उत्तर दिया, हाँ मैं भी वह अनुभव महसूस कर रहा हूँ।
1: पर अब तो सभी तीर्थ भ्रमण के लिए आग्रह कर रहे हैं, इससे तो मठ का नाश ही हो जाएगा। ठीक है, मैं कौन हूँ जो मेरा आदेश मानकर ये सदैव चले। नहीं, इस मधुर माया के बंधन को भी मुझे तोड़ डालना होगा।
0: शारदा प्रसन्न के पत्र ने उन्हें बड़ा चिंतित कर दिया। सोचने लगे कि सभी एक साथ रहकर धीरे धीरे माया के बंधन में बंधते जा रहे हैं। अतएव उन्होंने भी मठ छोड़कर दूर चले जाने का संकल्प कर लिया। अंत में एक दिन गुरु भाइयों के सारे अनुरोधों की उपेक्षा करते हुए और मन ही मन माँ को प्रणाम कर नरेंद्रनाथ परिव्राजक के वेश में मठ को छोड़कर निकल पड़े।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो खुशियां बांटो।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब रात पेट में भूख बांधे सोती थी, रोटी और कपड़े की तलाश में थकता हांफता हारता दिन, शाम ढले जब लौटता तो खाली हाथ। गुलामी का अंधेरा बहुत गहरा था, प्रतिरोध को आवाज की इजाजत न थी, रास्ते गुम थे और रोशनी नजरों की हद से दूर, बहुत दूर कहीं। ये बात उन दिनों की है जब दर्द बह तो सकता था, कुछ कह नहीं सकता था। सन 1917 और 18 का साल, जिसमें देश की आर्थिक स्थिति बहुत विकट हो रही थी। सूद और पेंशन के नाम पर बहुत सा पैसा विलायत भेजा जा रहा था। अनाज और कपास जैसे कच्चे माल का खुला निर्यात देश को कंगाल बना रहा था। दरअसल ये प्रभाव था सन 1914 से 1918 के बीच हुए प्रथम विश्व युद्ध का। जितना भी अनाज उत्पन्न होता उसका बहुत बड़ा हिस्सा देश के बाहर गई हुई सेनाओं के लिए भेज दिया जाता। गांव में सेना की नई भर्ती के कारण खेती करने वालों की कमी हो गई, देश में अनाज के उत्पादन में भी और कमी आई। परिणाम ये हुआ कि सन 1917-18 में अनाज बहुत महंगा हो गया और सन 1919 के आरंभ तक हालत बहुत खराब हो गई। सरकारी आंकड़ों पर अगर हम विश्वास करें तो उस समय अनाज के मूल्य में 93% की वृद्धि हुई। कपड़ों के मूल्य अचानक बढ़ गए और कई स्थानों पर इसके दाम दुगुने से भी अधिक हो गए। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि अनाज और कपड़ा सिर्फ महंगा ही नहीं हुआ, ये दुर्लभ भी हो गया, बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं होता। इस वजह से मध्यम वर्ग और निर्धन वर्ग का जीवन बेहद कठिन हो गया। उधर व्यापारी और कारखानेदार लोग इस महंगाई का लाभ उठाकर मालामाल हो रहे थे। इस पर सरकार ने अतिरिक्त लाभ कर यानी एक्सेस प्रॉफिट टैक्स लगा दिया, जिससे असंतोष बढ़ने लगा। इन्हीं वर्षों में मजदूर संघों की स्थापना हुई और जगह जगह हड़तालों का उपक्रम शुरू हुआ। जब तक ये युद्ध समाप्त हुआ तब तक देश का लगभग हर वर्ग आर्थिक तंगी से बेहाल हो चुका था। अंग्रेज भारतीय प्रजा की बेचैनी को भांप गए थे। वे जान चुके थे कि अब छोटे मोटे दमन या नाम मात्र के शासन सुधार से बात बनेगी नहीं। जनता में व्याप्त बेचैनी और विरोध के उठते हुए मुखर स्वर को पूरी तरह से दबाने के उद्देश्य से उन्होंने एक नया कानून लाने की योजना बनाई और इसके लिए उन्होंने इंग्लैंड के हाईकोर्ट के जज जस्टिस रॉलेट के सभापतित्व में एक कमेटी नियुक्त की। ये एक गहरा षड्यंत्र था, भारतीयों पर भीषण अत्याचार की एक नई कहानी की शुरुआत।

10 दिसंबर सन 1917 को ब्रिटिश सरकार ने न्यायमूर्ति रोलेट की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की एक सलाहकार समिति नियुक्त की, जिसका कार्य था भारत में ब्रिटिश हुकूमत के लिए गंभीर खतरा बन चुके भारत और विदेशों में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलनों की छानबीन करना। इस समिति ने 87,020 रुपए खर्च करके खास तौर पर लाहौर और कलकत्ता में अनेक गुप्त बैठकें करने के बाद 18 अप्रैल सन 1918 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें गवाहों के साथ जिरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। बगैर मुकदमा चलाए लोगों को कैद करने की असीमित शक्ति सरकार के हाथ में सौंप दी गई। न अपील, न वकील, न दलील, इस काले कानून की जबरदस्त आलोचना हुई। 18 मार्च सन 1919 को इसे अंतिम रूप से कानून का दर्जा दिए जाने के बीच इसका बहुत विरोध हुआ। इसकी मनमानी और दमनकारी भावना को तुरंत निरस्त किए जाने की मांग उठी। रोलेट एक्ट का विरोध ज्वालामुखी की शक्ल ले रहा था। रोलेट बिलों के संबंध में जो आंदोलन खड़ा हुआ, उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उसमें हिंदू, मुसलमान और सिख सभी एक दिल होकर सम्मिलित हो रहे थे। अमृतसर में भी 6 अप्रैल सन 1919 के समारोह में ये एकता साफ साफ नजर आई। 7 और 8 अप्रैल का दिन शांति से गुजर गया। 9 अप्रैल को रामनवमी का त्योहार था। नगरवासियों ने इसे एक राष्ट्रीय त्योहार बना दिया। एक जुलूस निकला जिसमें जितने हिंदू थे शायद उतने ही मुसलमान। जुलूस का नेतृत्व डॉ सत्यपाल और डॉ सैफुद्दीन किचलू कर रहे थे। हिंदू मुस्लिम एकता के नारों से आसमान गूंज रहा था। हालांकि सारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन अंग्रेजों की नींद उड़ गई। उन्हें इन सारे प्रतिरोधों में सन 1857 के विद्रोह की आहट एक बार फिर सुनाई देने लगी। उनका धैर्य खोने लगा। 10 अप्रैल की सुबह 10 बजे डिप्टी कमिश्नर ने डॉ सत्यपाल और डॉ किचलू को मिलने के लिए अपने बंगले पर बुलाया और वहीं उन्हें गिरफ्तार करके निर्वासित कर दिया। अमृतसर में दोनों नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार तब फैला जब सरकारी मोटरें उन्हें 200 मील दूर ले जा चुकी थीं। इस समाचार से जनता इतनी बेचैन हो गई कि दोनों नेताओं की रिहाई की मांग लिए फरियादियों का एक जुलूस डिप्टी कमिश्नर के बंगले की ओर चल पड़ा। ये जुलूस भी शांतिपूर्ण था, लेकिन भयभीत ब्रिटिश हुकूमत ने उन पर गोलियां चला दी। अब जनता भड़क उठी थी। फिर तो जिसके हाथ जो आया वही उठा लिया और एक संघर्ष शुरू हो गया। अंग्रेजी सरकार की हिंसा जनता के मन में प्रतिहिंसा बनकर उभरी। दमन और अत्याचार का लंबा इतिहास अब लोगों के मन में आक्रोश बनकर फूट रहा था।

11 अप्रैल सन 1919 की सुबह अमृतसर की दशा बहुत विचित्र थी। शहर के चारों ओर पुलिस और मिलिट्री का पहरा था। जगह जगह तोपें खड़ी थीं। शहर में आने जाने वालों पर कठोर प्रतिबंध था। कोई खबर बाहर नहीं जा सकती थी और न ही बाहर का कोई समाचार वहां तक पहुंच सकता था। अजब हाल ये था कि शहर भर के पानी के नल और बिजली के कनेक्शन बंद कर दिए गए थे। न पानी था न रोशनी और ये प्रतिबंध 4-5 दिन तक जारी रखा गया। 12 अप्रैल को हंसराज नाम के एक व्यक्ति ने ढाबा खटीकान में एक सार्वजनिक सभा करके घोषणा की कि 13 अप्रैल की शाम जलियांवाला बाग में एक विराट सार्वजनिक सभा होगी जिसमें सरकार के इन कार्यों पर असंतोष प्रकट किया जाएगा। अमृतसर के अधिकारियों के हाथ पांव तो 10 तारीख को ही फूल गए थे, इसलिए पुलिस को काफी न समझकर उन्होंने रक्षा का भार सेना के सुपुर्द कर दिया। 13 अप्रैल सन 1919, समय सुबह 9:30। जनरल डायर बहुत सी सेना लेकर शहर में प्रविष्ट हुआ। शहर के कुछ हिस्सों में उसने घोषणा करवाई जिसका सारांश था कि शहर के अंदर या बाहर कोई भी जलसा, सभा या रैली नहीं हो सकती है। ये घोषणा कुछ इस तरह से करवाई गई कि अधिकांश लोगों ने इसे सुना ही नहीं। दिन में 12 से 1 बजे के बीच डायर को ये खबर मिलने लगी थी कि लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो रहे हैं। सभा के समय तक वहां लगभग 20,000 लोग इकट्ठे हो गए। चूंकि बैसाखी का दिन था तो लोग अपने बच्चों के साथ यूं ही घूमने भी वहां आ गए थे। डायर ने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उसने हंटर कमेटी के सामने अपने बयान में भी स्वीकारा था कि मेरी मंशा उन्हें सबक देने की थी। नियत समय पर सभा प्रारंभ हुई। जनरल डायर लगभग 100 सिपाहियों और 2 आर्म्ड कारों के साथ शाम 5 बजे के आसपास बाग में पहुंचा। बाग में प्रवेश का मात्र एक ही संकरा सा रास्ता था और चारों ओर से ये दीवारों से घिरा हुआ था। इसी बाग में 2 कुएं भी थे। ज्यों ही

जनरल डायर बाग में घुसा। उसने रास्ते के दोनों ओर ऊंचे स्थानों पर सिपाही खड़े कर दिए और भीड़ को बिना कोई चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दे दिया। भीड़ के पास कोई हथियार नहीं था और न ही बाहर निकल पाने का कोई रास्ता। भगदड़ सी मच गई। लोग दौड़ रहे थे लेकिन कहां जाने के लिए पता नहीं, क्योंकि रास्ता कोई था ही नहीं। बच्चों की, महिलाओं की, लोगों की चीखें गूंज रही थीं। चारों ओर से घेरकर हजारों लोग भून दिए गए। जान बचाने के लिए कुछ लोगों ने बच्चों सहित कुएं में छलांग लगा दी और कुछ ही देर में वो कुआं लाशों से पट गया। मौत का ये तांडव पूरे 10 मिनट तक चलता रहा। कुल 1650 राउंड गोलियां चली। ज्यों ही गोलियां चलना बंद हुईं, जनरल डायर अपनी सेना लेकर शहर से बाहर रामबाग को चला गया और बैसाखी का वो दिन इस नृशंस हत्याकांड पर चुपचाप खड़ा आंसू बहाता रहा। ये घटना विश्व इतिहास की क्रूरतम घटनाओं में से एक थी। जिसने भी इसे देखा था उसका दिल दहल गया। जिसने भी इसे पढ़ा वो आंसुओं के सैलाब में डूब गया। कैसी वो बर्बरता रही होगी कि 11-12 साल के एक बच्चे ऊधम सिंह ने ये सब अपनी आंखों से देखा था और डायर को मारने का संकल्प वहीं ले लिया। 21 साल लगे उसे अपना संकल्प पूरा करने में, लेकिन उसने लंदन जाकर अपना ये संकल्प पूरा किया और फांसी पर लटक गया। दरअसल 1857 की क्रांति के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना सबसे अधिक प्रभावपूर्ण घटना थी, जिसका बेहद गंभीर असर ब्रिटिश साम्राज्य के अगले 28 वर्षों के इतिहास पर पड़ा। 12 साल के भगत सिंह ने 12 मील की दूरी पैदल तय कर जलियांवाला बाग की मिट्टी को अपने माथे से लगाया। उनके मन में भी ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने का संकल्प और गहरा हो गया। हर क्षेत्र से जुड़े लोगों पर इस हत्याकांड का बहुत व्यापक असर हुआ। सादत हसन मंटो की उम्र उस वक्त 6 या 7 साल थी जब अपनी आंखों से उन्होंने ये सारा दृश्य देखा था, और उनकी पहली कहानी तमाशा में इसी घटना का जिक्र है। उस बाग में छटपटाती मौतों के बाद पसरा हुआ वीराना, उस कुएं के अंधेरे में घुटकर दब गई चीखों की प्रतिध्वनि बरसों बरस लोगों को उद्वेलित करती रही और आज भी हमारी आंखें नम कर जाती है। आज जलियांवाला बाग शहादत का एक स्मारक है, हमारा राष्ट्रीय तीर्थ स्थल बन चुका है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस पर एक कविता लिखी, जलियांवाला बाग में बसंत। इस कविता ने शायद हर दिल की भावनाओं को शब्द दे दिया। उन्हीं मार्मिक शब्दों के साथ शत शत नमन जलियांवाला बाग के अमर शहीदों को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने, समन्वय किया संजय यादव ने, इसे प्रस्तुत किया सुनीता सिंह ने।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगी, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चली होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं, द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद रामा कुमारी इसमें आज फिर आप सबके साथ है। बात कर रहे हैं हम लाइफ स्किल्स की। कितनी स्किल्स हमने सीख ली इस पूरे जीवन में, नहीं सीख पाए थे तो लाइफ को कैसे जीना है, इस स्किल को हम इस श्रृंखला में जान रहे हैं। बहुत कुछ हमने जाना अपने विचारों के बारे में, और अगर पिछली कड़ी देखें तो एक बहुत बड़ा रिवलेशन था कि मैं जो भी थॉट क्रिएट कर रही हूं, जो भी फीलिंग्स क्रिएट कर रही हूं, वो मेरे बॉडी के ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, और कई बीमारियां जिन्हें मैंने लाइफस्टाइल मान लिया था, वो बहुत कुछ मेरे इन थॉट्स इन फीलिंग्स के कारण क्रिएट हो रही थी। आज बात को आगे बढ़ाते हैं, क्या इस प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है। बीमारियां हैं तो क्या थॉट और फीलिंग क्रिएट करके उन बीमारियों से मैं मुक्त हो सकती हूं। हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। दोनों का स्वागत। डॉक्टर पटेल, एक छोटा सा रिकैप आपके साथ करना चाहेंगे, क्योंकि इट्स समथिंग न्यू। यू नो, ये तो अभी तक सुना था कि हाँ, अगर गुस्सा करते हैं वो बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है, लेकिन वी नेवर थॉट, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था कि उसको ठीक किया जा सकता है, कि कौन सी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं हमारी बॉडी के जो हमारी जो स्ट्रांग और टॉक्सिक इमोशंस हैं उन पर इफेक्ट पड़ता है।
1: जब तक हमने देखा कि मेनली तीन सिस्टम्स, एक तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक है, जिसका संतुलन होना चाहिए, परंतु इन टॉक्सिक इमोशन से वह संतुलन हो जाता है, सिंपैथेटिक सिस्टम बहुत ज्यादा काम करने लगती है और बहुत सारी बीमारियां होती है। दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इम्बैलेंस आता है और वह थोड़ा सा भी इम्बैलेंस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और तीसरी बात कि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के द्वारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारे रेजिस्टेंस पावर पर नेगेटिव इफेक्ट होता है, और उससे भी न केवल अनेक बीमारियां होती है परंतु कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है बॉडी को ही दुश्मन मान लेती है और उसको डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो तीन मुख्य बातें हैं
0: जी, उसके अलावा भी बॉडी के किसी सिस्टम पे ये इमोशंस वर्क करते हैं।
1: और एक जो इससे भी गुह्य, शायद इससे भी सूक्ष्म है, यहां भी डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, परंतु हम उसके बारे में सजग हो जाए इसलिए बता रहा हूं, कि ब्रेन में 900 से ज्यादा केमिकल्स है, और वह केमिकल्स बड़ी सूक्ष्म मात्रा में, उनका भी सही मात्रा में वह केमिकल्स होने चाहिए, अगर कम हुए तो भी समस्या होगी, बढ़ गए तो भी प्रॉब्लम होगा, और इस टॉक्सिक इमोशन से उन केमिकल्स पर बुरा असर होता है। कभी आपको कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो और आप डॉक्टर के पास जाओ और पूछो कि डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, तो उसका स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है कि भी केमिकल इम्बैलेंस,
0: मतलब हम भी इतनी बार सुन चुके हैं कि हाँ कुछ केमिकल इम्बैलेंस हुआ है।
1: तो ये एक एक इमोशंस भी वो केमिकल में इम्बैलेंस क्रिएट करता है,
0: जैसे कि ये उसको थैलेमस, उसको ब्रेन को टच करती है क्या?
1: हाँ, पहले तो हाइपोथैलेमस पर इफेक्ट करेगी, और फिर जो सारे ब्रेन के केमिकल्स है उन सब में भले इनिशियली माइनर डिस्टर्बेंस होगा, परंतु अगर कंटिन्यू हो तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, साथ साथ फिजिकल प्रॉब्लम्स होने की संभावना भी बहुत बढ़ सकती है।
0: क्या पर्टिकुलर इमोशंस पर्टिकुलर ऑर्गन्स पर इफेक्ट डालते हैं, जैसे हेट्रेड है या यू नो लाइक बहुत ग्रीड है, एंगर है, वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स पर काम करते हैं?
1: हाँ बिल्कुल, कुछ तो रिसर्च हुई है, मैं तो समझता हूँ और भी इसके बारे में अगर कोई सिस्टमेटिक रिसर्च हो तो बहुत बड़ी बात लोगों के सामने वो रिवील हो सकती है, परंतु अब तक जो रिसर्च हुई उसमें पता चला है कि जिनकी टाइप ए पर्सनालिटी होती है, कि जो लोग परफेक्शनिस्ट है, सब कुछ उनको टाइम पर चाहिए, एक चीज यहां से यहां ना हो नहीं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसे जो टाइप ए पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं उनमें माइग्रेन बहुत ज्यादा होता है, उनको ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक होने की संभावना भी बढ़ जाती है।
0: पर क्यों होता है ऐसे?
1: अभी यहां भी ये मैकेनिज्म तो सेम है कि सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगी तो ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट होगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, माइग्रेन हेडेक हो सकता है, ब्लड वेसल्स पर इफेक्ट होगी उससे भी माइग्रेन होगा, परंतु स्पेसिफिक इमोशंस की जहां तक बात है, यह भी प्रूव हुआ है कि जो लोग हाइपर क्रिटिकल है, कि छोटी छोटी बातों में

0: क्रिटिसाइज करेंगे, नेगेटिविटी कोई दूसरे में देखेंगे, उनको कुछ पॉजिटिव दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार की जिनके मेंटेलिटी है उनको भी हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है।
1: हर एक में बुरा ही देखते हैं जो हम।
0: और ये भी देखा गया है कि जो सप्रेशन में जीते हैं, ये जो दबाव में जीते, जिनको लगता है कि परिस्थिति मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, उनको हाइपोथायराइड होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब देखना, हाइपोथायराइड अधिकतर महिलाओं में क्योंकि किसके अंडर में जीना पड़ता है,
1: सफोकेटेड जब फील करते हैं।
0: हाँ, जब भी ये फीलिंग हो तो हाइपोथायराइड होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। डायबिटीज के लिए भी ये माना गया है कि जो लोग बहुत ग्रीडी है, ये चाहिए ये चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहते हैं,
1: या केवल फिजिकली, कई बार ये इनसिक्योर भी लोग भी तो ग्रीडी हो जाते हैं।
0: हाँ, बस इनसिक्योरिटी फिर ग्रीडीनेस में लाएगी और ग्रीडीनेस के कारण भी डायबिटीज होने की संभावना बढ़ेगी।
1: अच्छा, वो
0: लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी है, परंतु ये सूक्ष्म फैक्टर्स है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। यह भी देखा गया है कि जो लोग असंतुष्ट है जीवन में, सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ में, उनको पेट के प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। एक होता है कोलाइटिस, एक है माइल्ड एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम, है सब पेट की बीमारियां हैं, वो पेट की बीमारियां होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। इस पर अगर और अच्छे से रिसर्च किया जाए तो सचमुच गहरी बातें सामने आ सकती है कि भी कौन सी फीलिंग्स, इमोशंस वो कौन सी बीमारियां निर्माण करते हैं।
1: जैसे शिवानी, अभी तक हम फीलिंग्स को ये मानते थे कि वो नेचुरल है, मतलब उनका ऐसे सिस्टम पे, बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ना, तो आई कुड एक्चुअली नेवर इमेजिन, मैं अभी भी रिलेट नहीं कर पा रही हूँ कि अगर मैं ग्रीडी हूँ या एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ तो मेरे को डायबिटीज होने के चांसेस हो सकते हैं।
2: एक्चुअली ऑल द मोर इम्पोर्टेंट लग रहा है ये सुनने के बाद कि अपने इश्यूज को रिजोल्व करना कितना जरूरी है। यू नो, सप्रेस्ड फील कर रहे हैं, और सप्रेस्ड फील करना भी मतलब क्या कि सिचुएशन के रिस्पॉन्स में पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ थॉट्स क्रिएट करना, एंड वी कैन लिव विद दैट थॉट पैटर्न फॉर अ लाइफ टाइम। अब ये जो बीमारी है, दिस माइट यू नो डेवलप 25 के बाद, 35 के बाद, 45 के बाद, लेकिन उसकी शुरुआत तो फिर कितने साल पहले शुरू हो गई थी। तो आज अगर हम अपने थॉट पैटर्न का बच्चों के लेवल से ही ध्यान रखना शुरू करें, इट्स नॉट गोइंग टू बी कि हाँ हम तो अपना तो ध्यान रखें।
1: बच्चों को अगर हम देखें तो कितना सप्रेस फील करते हैं,
2: क्योंकि उनके अभी एक एक ऑर्गन डेवलप हो रहा है एंड उनकी वो जो फिजिकल डेवलपमेंट वो हो रही है, एंड अब अगर वो इतनी यंग एज से ये सारे इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इफ वी गो बैक टू स्टूडेंट लाइफ तो हमारे पास स्ट्रेस कोई वर्ड नहीं था वोकैबुलरी में, ये सब जो अब फील हो रहा है। तो अगर हमारी जो जेनरेशन थी जिनकी इमोशनल लाइफ फिर भी काफी बैलेंस्ड थी, लेकिन फिर भी आज हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो इट इज स्केरी टू थिंक कि अब के जो बच्चे हैं जिनकी इमोशनल लाइफ ही अभी से इतनी अनबैलेंस्ड है, आफ्टर 30-35 इनकी फिजिकल हेल्थ कैसे होने वाली है। इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ, क्योंकि इनकी इमोशनल भी वीक है और इमोशनल के कारण फिजिकली अभी से वीक हो रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट।
1: ऑर्गन्स ही वीक डेवलप होंगे, इसका मतलब
0: यही बात है। कई लोग इसमें ये भी प्रश्न पूछते हैं कि भी ये टाइप ए पर्सनैलिटी तो बहुतों की है, तो सबको क्यों ना हार्ट अटैक हुआ, क्योंकि जिनका हार्ट ऑलरेडी वीक है और कोई कारण से भी, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, उसके कारण हार्ट पर ऑलरेडी इफेक्ट हुई है, तो उनमें इमीडिएटली टाइप ए पर्सनालिटी की इफेक्ट होगी और हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा। वैसे भी किसी में ऑलरेडी उनका थायराइड वीक है, जेनेटिकली उनमें ऐसे जीन्स है कि जिससे थायराइड 100% कार्य नहीं कर रहा है, परंतु और बातें आ गई साथ में, सप्रेशन फील कर रहे तो थायराइड की समस्या होने की संभावना बढ़ जाएगी। वैसे जो ऑर्गन जेनेटिकली वीक है और कोई एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण वीक है, उन पर इमीडिएट इफेक्ट होगी।
1: और लेकिन अदरवाइज आप कह रहे हैं कि अगर जेनेटिकली स्ट्रांग है तो ग्रेजुअल तो उनका होगा,
0: भले टाइम लगेगा परंतु इफेक्ट तो हो ही रही है।
2: लेकिन आजकल जो बच्चों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ रही है, डायबिटीज यंग एज पे हो रहा है, डिप्रेशन भी हो रहा है, आपने जैसे कहा केमिकल इम्बैलेंस है, लेकिन वो केमिकल इम्बैलेंस इमोशंस के कारण है। डिप्रेशन स्टूडेंट लाइफ में होना, दैट मीन्स वो इमोशनल इम्बैलेंस तो शुरू हो चुका है ना, एंड दिस इज सो मच बिकॉज ऑफ हम भी अपनी जो इमोशनल एनर्जी उन पर डाल रहे हैं सारा दिन, एंड फिर जो आपने कहा ये हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं। हम तो अपने बच्चे को टूडे नाउ आई फील कि सिर्फ इमोशनली वीक नहीं कर रहे, फिजिकली भी वीक कर रहे हैं, एंड दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क टू ईच वन ऑफ अस।
1: ओबेसिटी भी किसी इमोशन के
0: कारण? हाँ हाँ, एक तो बहुत मुख्य बात तो ये है कि जो हम खाते हैं वो यही नहीं है कि भी आप

0: भूख लगी, बॉडी को जरूरत थी इसलिए खा रहे हैं। एक है साइकोलॉजिकल हंगर ऑल्सो, इसको नहीं आम भाषा में हम कहते झूठी भूख। व्यक्ति भी समझता है कि मैं अभी खाया है, पेट भर के खाया है, फिर से मुझे आधे घंटे में भूख लग रही है, वो समझता है कि झूठी भूख है। ये झूठी भूख साइकोलॉजिकल है क्योंकि अंदर में डिससेटिस्फेक्शन है और व्यक्ति खाने से सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने की कोशिश करता है और फिर ओबेसिटी भी हो सकती है। और बच्चों में भी यही कारण है बहुत बड़ा।
1: अब हम जब बच्चों के कारण के बारे में अगर आपस में सोचते हैं या बात करते हैं ओबेसिटी की, वी ओनली से बहुत टीवी देख रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठ रहे हैं, बाहर आउटडोर नहीं जा रहे एंड जंक फूड खा रहे हैं, हुएवर थॉट कि उनका थॉट पैटर्न ये ओबेसिटी क्रिएट कर रहा है,
2: आई थिंक पेरेंट्स को रियलाइज ही नहीं हो पाते।
1: अब हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, बच्चे को जंक फूड से दूर करेंगे, टीवी से दूर करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम पर नहीं हिट करेंगे जो इंटरनल है, तो आउटवर्ड भी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती ही नहीं,
2: डिससेटिस्फेक्शन की तरफ जाया जाए।
1: क्यों मेरा बच्चा डिससेटिस्फाइड है, क्या उसको अंदर खालीपन लग रहा है, बाहर हमारे घर में सब कुछ है फिर भी क्या चीज की कमी वो महसूस कर रहा है, एंड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन टूडे आर मिसिंग देयर पेरेंट्स, यू नो, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है वो खालीपन, वो एम्प्टीनेस। क्यों ये बीमारियां आज ही हो रही हैं? व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट ओबेसिटी इन चिल्ड्रन टुडे, व्हाई नॉट 20 इयर्स बैक? फिर हम हमेशा ब्लेम आउट पर डाल रहे हैं कि आज की लाइफस्टाइल ऐसी, इट मे बी वन फैक्टर, लेकिन दूसरे फैक्टर को भी तो हमें देखना पड़ेगा।
2: यू नो पेरेंट्स को मिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कई बार पेरेंट्स जितनी देर है उतनी देर भी उनके साथ।
1: हाँ, इट्स नॉट अबाउट द टाइम। देखो पेरेंट्स ने जॉब पे तो जाना ही है, चाहे दोनों ने जाना है, लेकिन जितनी देर है तो भी उनकी मेंटल स्टेट क्या है, और फिर जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन सी एनर्जी बच्चों को देनी है, वो तो नहीं उल्टा और ही उसके विपरीत दे रहे हैं, क्योंकि खुद ही इतने स्ट्रेस होकर आए हैं। इफ आई हैव नॉट टेकन केयर ऑफ माई सेल्फ द होल डे, आई कांट टेक केयर ऑफ समवन एल्स आफ्टर दैट, नॉट पॉसिबल।
2: इमोशनली नहीं कर पाते हैं। अब कैसे मुड़े? जो गलतियां हो चुकी, जो बीमारियां लग गई, क्या ये रिवर्स किया जा सकता है प्रोसेस?
0: बिल्कुल कर सकते हो। सबसे पहली बात है कि भी स्वीकार करो। मैं समझता हूँ दिक्कत यहीं पर है कि कई लोग इस बात को स्वीकार ही नहीं करते। सचमुच नहीं, बाहर सबको पता चल रहा है कि भी इनमें बहुत गुस्सा है, ये टाइप ए पर्सन है, परंतु व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं मैं तो अच्छा ही हूँ। तो पहला तो स्टेप यही है कि आप स्वीकार करो कि भी मेरे में से नेगेटिव इमोशंस है,
2: मैं आपको ये बता रही हूँ, इसीलिए स्वीकार नहीं करते थे क्योंकि आज तक हम सोचते थे कि मेरे को गुस्सा मेरे कारण से नहीं आ रहा है, लोग ही ऐसा बोल रहे हैं, ऐसे बिहेव करते हैं तो गुस्सा तो आएगा ही।
1: आज दिन तक हम गुस्से को इसलिए शस्त्र की तरह यूज करते आ रहे थे कि उनको ठीक करना है, वो बिगड़ जाएंगे अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे, तो फॉर देयर डिसिप्लिन वी वर यूजिंग एंगर विदाउट रियलाइजिंग कि अपना कितना नुकसान उस प्रोसेस में हो रहा है कि हम दूसरों को ठीक कर दें। द डैमेज डन टू मी वी नेवर थॉट अबाउट। अगर आज भी वो रोशनी आ गई है, मे बी वी कैन क्रिएट मैजिक विद आवर सेल्व्स नाउ।
2: आई नो, सो ये रोशन चलिए हम स्वीकार कर रहे हैं। आगे
0: अभी सेकेंड स्टेप ये है कि भी ये समझना चाहिए कि थोड़ा डीप है, सिर्फ सुपरफिशियली नहीं देखो। हम सुपरफिशियली देखते हैं कि मैं सवेरे उठा तो फ्रेश था, काम पे गया अच्छे से गया, मैंने ठीक से काम किया, घर पे आया तो बच्चों के लिए थोड़ा टाइम भी मैंने दिया, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु आप डीप में नहीं गए। अगर आप डीप में गए तो पता चलता कि भी सवेरे उठा तब इरिटेशन था कि ये चीज जगह पर नहीं थी, ये मुझे मिला नहीं, ट्रैवल कर रहा था तो ट्रैफिक जाम में डिस्टर्ब हुआ था, हाँ बॉस ने कुछ बोल दिया तो तब भी मेरे में फीलिंग आई थी। वो सेकंड लेवल होना चाहिए कि डीपर जो सूक्ष्म में भी संकल्प चल रहे हैं उसके बारे में भी सजग हो जाओ।
2: मुझे यहाँ भी कैच करो, बातें चलती जाती हैं कंटिन्यूअस कॉन्वर्सेशन।
1: हमने कई बार बात की ना, सुबह बच्चों को हम उठाते कैसे? सी द डे स्टार्ट्स ओनली विद एंगर एंड इरिटेशन, सिर्फ मेरे लिए नहीं बच्चे के लिए भी, और ये हर रोज का पैटर्न है, ये भी नहीं कि कभी कभी ऐसा हो रहा है, इट्स अ डेली पैटर्न। तो अगर हमें ये अवेयरनेस आ जाए, हम छोटी छोटी बातों पर भी अगर शुरू कर लें, बड़ी बातों पर तो अपने आप हो जाएगा, फिर इट विल बी इजियर इफ वी स्टार्ट ऑन दी स्मॉलर थिंग्स।
0: वो एक सेकेंड स्टेप होना चाहिए कि डीप उसको अंडरस्टैंड करें,
2: अवेयर हो जाए कम से कम।
0: हाँ या अवेयर हो
2: कॉन्स्टेंट,
0: और फिर उसको एनालिसिस करो, फाइंड आउट करो और उस चीज को चेंज कर दो, तो जब शुरुआत हो रही है ना तभी कंट्रोल कर सके।
1: इसीलिए अवेयरनेस इम्पोर्टेंट होगी कि सारा दिन चेक करना क्या चल रहा है, क्या चल रहा है।

0: उस पर आया जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट टेकिंग केयर एंड फिर हम कह रहे हैं इन सबका ध्यान रखना मेरी जिम्मेवारी. सो इट्स सच अ विशियस साइकिल.
1: एक्चुअली काम कराने के लिए सी, जो जैसे आपने टाइप ए पर्सनैलिटी भी बोली, परफेक्शनिस्ट होना अच्छा माना जाता है. सी ही इज परफेक्शनिस्ट, उनका हर चीज एक्यूरेट होती है तभी तो वो एक्यूरेट बन पाता
0: है. लेकिन उनकी हर चीज एक्यूरेट होना, अब दिस डजंट मीन कि मैं लेट बैक हो जाऊं और मैं अपना काम एक्यूरेटली नहीं करूं, लेकिन सबसे पहले क्या एक्यूरेट होना, मेरी स्टेट ऑफ माइंड. अगर आई एम अ परफेक्शनिस्ट तो मैं सबसे पहले अपने परफेक्शन की लिस्ट पर ये रखूं ऊपर कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड परफेक्ट होनी चाहिए. एक छोटा सा दाग यहां से वहां मुझे इरिटेट ना करते तो वो वहां मैं परफेक्शन ले आऊंगा, लेकिन यहां मैंने इतनी गंदगी क्रिएट कर दी, कैन आई कॉल माई सेल्फ अ परफेक्शनिस्ट. तो अगर आप परफेक्शन को अपनी क्वालिटी भी लेकर चल रहे हैं तो फिर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में अपनी वेलबींग को सबसे ऊपर रखेंगे ना कि मेरी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पहले परफेक्शन हो. कुर्सी टेबल सामान काम ये तो सेकंड स्टेज पर आएगा, उसको भी अगर रख लें तो सबसे पहले आप ध्यान किसको रखेंगे. आप काम करते जाएं, बेस्ट तरह से करवाते भी जाएं, डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें, दिस वी कैन टेक.
2: ये बात भी जो शिवानी बेन ने बताया ना बहुत गहरी है कि अचानक बीमारी नहीं होती है. आज लोग ध्यान क्यों नहीं रखते, समझे मैं बिल्कुल हेल्थी हूं कुछ नहीं है, लेकिन आप में स्लोली डैमेज हो रहा है. कहते डिजीज वो एक आइसबर्ग की तरह है, नहीं उसकी टिप ही सिर्फ हमको दिखाई देती है. या तो ये भी कह सकते हैं कि बॉडी ऑर्गन्स को नेचर ने करीब 5 गुना ज्यादा कैपेसिटी दी है. हार्ट का ही उदाहरण ले, हार्ट में जरूरत से 5 गुना ज्यादा हेल्थ है या कैपेसिटी है. जब वो हार्ट 20% पर आ जाता है तब ही आपको सिम्टम्स होते हैं.
0: मतलब कितना डैमेज हमने
1: पहले कितना कर दिया है हमने. बेचारा हार्ट जो ऑर्गन था वो तो काफी स्ट्रांग था.
2: इवन जो ब्लॉक्स कहते हैं ना कोरोनरी ब्लड वेसल्स है हार्ट में, वो 60% भी अभी मेरी ब्लॉक हो सकती है शायद, लेकिन मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है. मैं 4 सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ आराम से. जब वो 75-80% होगा तब ही अंजाइना का पेन शुरू होगा. तो ना 70% तो टू मच है, इवन 10% भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए. तो मैं अगर इस बात को समझ लूं और ध्यान रखूं तो दिक्कत नहीं होगी.
1: तो क्या मैं अपने इमोशंस से, अपने इमोशंस पे काम करके मेरे को जो अब बीमारी है सपोज हो गई है उसको हैंडल कर पाऊंगा?
2: डेफिनेटली. मैं उससे पहले एक बात आपको बताता हूँ, इट मे बी नॉट क्वाइट मोटिवेटिंग. कुदरत ने अगर ऐसा किया होता कि मुझे थोड़ा सा नेगेटिव इमोशन आया, बीमारी हो गई है ना, मैंने थोड़ी सी गलती की, डाइजेशन बिगड़ गया, कुछ तकलीफ की, चेस्ट में पेन हो गया, तो मैं वो करता ही नहीं.
1: इतनी दूर तक लेकर ही नहीं जाता.
2: परंतु कुदरत ने हमें 5 गुना ज्यादा कैपेसिटी दे दी है सोच के कि भी व्यक्ति स्वस्थ रह पाए तो अच्छा है.
1: लेकिन तब तक हमने संस्कार बना लिया, उसको अपना हैबिट बना लिया.
2: और फिर नहीं, वी टुक इट फॉर ग्रांटेड कि ये तो चलता है.
0: जैसे रिश्तों में हम करते हैं, जैसे रिश्तों में भी हम करते हैं ना, किसी एक व्यक्ति वो सहन करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता हम दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, हमें लगता है ये तो कर लेंगे, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड. फाइनली व्हेन दे गो यू नो मोर देन उनकी जो लिमिट थी, देन दैट विल कम आउट एज एन आउटबर्स्ट. सो मे बी आवर बॉडी ऑल्सो जस्ट देन इट्स लाइक एन आउटबर्स्ट के बाद बहुत हो गया, इतनी कैपेसिटी थी मेरे पास. बट हम फिर उसको तब देख रहे हैं जब उसने अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड जाकर अपना डैमेज कर दिया है.
1: तभी वो कई बार रिपेयर के बियॉन्ड हो जाते हैं, रिश्ते भी
0: हो ही रहा और बॉडी में भी. इसीलिए देन वी से ब्लड प्रेशर की दवाई कब तक लेनी है, सारी उम्र लेनी है.
1: हार्ट की भी सर्जरी करेंगे तभी होगा, ओपन हार्ट सर्जरी होगी तभी ब्लॉकेजेस हटाने की कोई
0: और जब सर्जरी कर रहे हैं तब साथ में डॉक्टर ये भी कहता है कि कुछ सालों के बाद ये ब्लॉकेज फिर भी हो सकता है, फिर भी सर्जरी करेंगे.
2: होता है ना, तो 3-3 बार सर्जरीज हुए, ऐसे कितने सारे लोग हैं. और जो एक आप बात बता रहे हैं ना हेल्थ की, उसको इमोशंस के साथ एक बहुत बड़ा कनेक्शन है. जैसे कि भी हमारे शरीर को कई न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे उदाहरण के रूप में हड्डियों को कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम अच्छा होगा हड्डियां स्ट्रांग बनेगी, विटामिन ए अच्छा होगा आपकी आई साइट अच्छी होगी. तो ऐसे ही ऑर्गन्स को भी, सिस्टम को स्पेसिफिक इमोशंस चाहिए
1: स्ट्रांग करने के लिए.
2: हाँ, और वो अगर आप में है, वैसे भी सिंपल सी चीज भी, हार्ट का कनेक्शन प्यार के साथ है. जिनको जीवन में अच्छा प्यार मिला है तो उनका हार्ट भी हेल्दी रहेगा. कहते हार्ट फ्लो इज इक्वल टू लव फ्लो. लव फ्लो जितना ज्यादा है हार्ट का फ्लो भी, ब्लड फ्लो ठीक होगा. ऐसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम को सुख चाहिए. कि भी जो सत्म जीवन में सेटिस्फेक्शन सुख का अनुभव करते हैं उनकी पाचन क्रिया भी बहुत अच्छी होती है. दिमाग को ज्ञान चाहिए, जितना नॉलेज होगा, भले और नॉलेज भी साथ साथ आध्यात्मिक नॉलेज, वो जितना अच्छा होगा आपका दिमाग अच्छे से कार्य करेगा।
1: स्टिमुलेंट्स हैं उनके लिए?
2: हाँ, उनके लिए कहेंगे न्यूट्रिशन है एक प्रकार का, नहीं न्यूट्रिश डिफरेंट ऑर्गन्स को, लंग्स को पीस चाहिए। आप स्वयं भी अनुभव करना कि जब आप पीसफुल है तो सांस की गति सही होगी, डीप होगी, रेगुलर होगी, जब पीसलेस है तो सांस तेजी से चलने लगेगा।
1: तो अस्थमाटिक अगर है लोग
2: तो उनको तो जो पीस मिले ज्यादा, तो अस्थमा पर जरूर उनका विजय होगा, उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। इसी प्रकार से जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, आंख नाक कान आदि, उन सबको पवित्रता चाहिए। कहा भी गया ना कि बेनी आंख कमल नाक कमल, ऐसे देवताओं को उसके साथ कंपैरिजन किया गया, क्योंकि कमल पवित्रता का प्रतीक है। और हड्डियां और मांसपेशियों को शक्ति चाहिए, जितनी शक्ति होगी तो हड्डियां और मांसपेशियां भी मजबूत होगी। और जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनको आनंद चाहिए। आज ना एक्साइटमेंट मिल रहा है लोगों को, सच्चा आनंद नहीं मिल रहा है। अगर सच्चे आनंद का अनुभव करो तो ऑटोमेटिक आपकी सारी जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो सही कार्य करने लगे।
1: दिस इज एक्चुअली वेरी इम्पोर्टेंट। अब इस पर काम करके हम अपनी सारी बीमारियों को एक्चुअली रिवर्स कर पाएंगे। ये तो बात रही आज जो हमने रियलाइज किया कि ये सारे दिन में हम जो जो जो जो इमोशन क्रिएट कर रहे हैं अननोइंगली ही, यू नो, लेकिन क्रिएट आई एम सेइंग द राइट वर्ड नाउ दैट वी आर क्रिएटिंग, वी आर चूजिंग, वी आर क्रिएटिंग। सो और दूसरी बात जो आपने कहा कि हर ऑर्गन को क्या चाहिए, उसका न्यूट्रिएंट क्या है, ताकि वो आज बीमारी नहीं भी है तो वो मजबूत रह पाएगा, उस पर और बात करेंगे। और हील अपने आप को हम अपने ही शरीर को कैसे कर पाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल थैंक यू सो मच ओम शंशी। आज एक और बात पता चली है, अभी तक इस प्लेटफॉर्म पर हमने जितनी बातें की उसमें रिश्ते हील हुए, हम खुद इमोशनली मन से हील हो रहे थे। शरीर एक ऐसा एस्पेक्ट था जो बहुत जरूरी था, उसकी दर्द, उसकी जो बीमारियां थी वो हमें परेशान करती थी। आज ना सिर्फ अपने शरीर को स्वस्थ करने के प्रोसेस में है, बल्कि अपनों को अभी जो बड़े हो रहे हैं, चाहे बच्चे या परिवार के बाकी सदस्य, वो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप उनके साथ शेयर कर पाएंगे कि कैसे वो अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम जान रहे हैं, स्किल्स सीख रहे हैं लाइफ को जीने की। कोई बात मन में है, कोई सवाल है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें ईमेल पर या फोन पर संपर्क करें। हमारे फोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमैटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप एकताहित रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुण्याचा आवाज तुमच्या हृदयाचा साथे। पुणे आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशिया बाटो।
1: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक, पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
3: ओम शांति।
2: वेलकम टू बीइंग डिवाइन।
3: थैंक यू।
2: आपने कहा था कि नई आदत के नए ग्रूव्स डालने हैं, नए संस्कार का जो रिकॉर्ड हमारी पुरानी रिकॉर्डिंग है, ग्रुप पेंसिल लेके अगर पेपर पे घुमाते जाएं तो और भी गहरा होता जाता है, होता जाता है। जैसे रंग भी गाढ़ा होता जाता है जितना रंग डालते जाओ पानी में, सेम कलर। तो ये जो पुरानी रिकॉर्डिंग है, ये हट के नया फोल्डर अगर खोले हम या नया सीडी बनाए, तो पुराना जाता कहाँ है? वो कहीं ना कहीं छुपा तो नहीं रह जाता कि कहीं ना कहीं व्हेनेवर वी नॉट अवेयर उठ के आ जाए?
3: यस, पुराना जाएगा नहीं।
2: हाँ,
3: संस्कार जो आत्मा के पास है वो संस्कार है, लेकिन यूज नहीं करेंगे तो यू विल नॉट फील।

0: संस्कार है। जैसे पीस इज अ संस्कार ऑफ द सोल, वो है।
1: अच्छा,
0: फॉर रिकॉर्डिंग है, हर आत्मा पर है। इस सृष्टि पर जितनी आत्माएं हैं, हर आत्मा पर पीस के संस्कार की रिकॉर्डिंग है। लेकिन अगर सारा दिन में उसको यूज नहीं किया, यूज नहीं किया मतलब पीसफुल क्वालिटी की थॉट्स नहीं क्रिएट की, पीसफुल तरह से बात नहीं की, पीसफुल कर्म नहीं किए, मतलब हर कर्म शांति की स्थिति से नहीं किया, तो हम उस शांति को अनुभव नहीं करेंगे। मतलब गाना रिकॉर्डेड है सीडी पर लेकिन प्ले नहीं हो रहा। तो अगर सीडी पर कोई गाना है लेकिन उसको कभी प्ले ना करें, तो हम अवेयर नहीं होंगे कि सीडी पे वो गाना भी है।
1: ओके,
0: प्ले नहीं किया कभी। सो फॉर यू इट्स एज गुड एज इट्स नॉट देयर बट इट्स देयर।
1: और जैसे मुझे अपनी शक्तियां क्या क्या है अगर मालूम ही नहीं है,
0: हाँ,
1: तो नहीं के बराबर है।
0: तो नहीं के बराबर है। सिमिलरली अभी जो संस्कार हमारे अक्वायर्ड हैं, लेट से अगर मेरे अंदर इरिटेट होने का संस्कार है, जिद करने का संस्कार है, आर्ग्यू करने का संस्कार है, ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है, फिर प्रैक्टिस किया कि नहीं, नॉट लाइक दिस, लाइक दिस। कॉन्शियसनेस ईगो की है तो हम हर बात में जिद करेंगे, आर्ग्यू करेंगे कि मैं राइट हूं। सोल कॉन्शियस है तो आर्ग्यू से एम्पथी की तरफ शिफ्ट करेंगे कि दूसरे के नजरिए को समझना, दूसरे के संस्कार को देखना। तो आर्ग्यू का संस्कार अपने आप क्या हो जाएगा, यूज होना बंद होगा। एम्पथी का संस्कार यूज होना शुरू हो जाएगा। गाने दोनों हैं, विच वन डू वी प्ले अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जब हम ईगो में हैं तो हम आर्ग्यू के गाने को बार बार प्ले करते हैं। एक बार, दिन में दो बार, दिन में पांच बार, हम कहेंगे आर्ग्यू करना इनकी आदत है। आदत है मतलब बात आई तो इनका संस्कार है आर्ग्यू करना, तो वो वाला गाना ऑटोमेटिक मोड में चला गया। जब वो गाना ऑटोमेटिक मोड में चला गया, जो उस दिन आपने पढ़ के सुनाया, इट बिकम्स ऑटोमेटिक एंड फास्ट, मतलब वो बहुत फास्ट होने लगता है। आपके पास टाइम नहीं है पॉज करें कि मैं उनकी बात को समझूं, उनका भी कोई नजर है, वो टाइम ही नहीं है। बात आई, आर्ग्यू करना शुरू किया, दूसरे की बात को सुना भी नहीं पूरी तरह, समझा भी नहीं, अपनी ही बात राइट है,
1: दो वर्ड नहीं बोले, सेंटेंस के चालू हो जाता है।
0: यस, विच मीन्स उस आत्मा के अंदर जिद करने का संस्कार, अपनी बात को राइट प्रूफ करने का संस्कार, आर्ग्यू करने का संस्कार स्ट्रांग है, ज्यादा बार यूज हुआ है। तो सामने वाला दो लाइन भी नहीं कहेगा। कई बार हम दो वर्ड्स भी नहीं कहते और दूसरे वाला शुरू हो जाता है वहां से। तुम कहेंगे बात सुनो तो एक मिनट, यू हैव जस्ट स्टार्टेड विदाउट इवन लिसनिंग।
1: क्या बोलने वाले आगे?
0: हाँ, मुझे मालूम था। सी, मतलब वो जो लाइन थी ना, इसलिए उस दिन के ब्रेन में वो जो न्यूरोन है वो बार बार प्ले होने से फास्टर होगा। दैट वॉज वेरी इम्पोर्टेंट कि पहले हम पांच मिनट बात सुनते फिर अपनी बात रखते, दो चार बार करने के बाद हम दो मिनट बात सुनते हैं फिर जल्दी से अपनी बात रख देते हैं। लेकिन जब वो फास्टर एंड फास्टर होने लगता है, हम सामने वाले की बात ही नहीं सुनते, पहले ही अपनी बात रख देते हैं सामने। आर्ग्यू करने का संस्कार है। अब अपने ऊपर वर्क किया, मेडिटेशन से ईगो क्या होने लगी, कम होने लगी। तो सोल कॉन्शियस बढ़ा तो हमने कहा सामने वाली भी आत्मा है, उसका नजरिया सुन।
1: प्रोसीड, ईगो कम होने लगी को थोड़ा आप एक्सप्लेन करके फिर आगे बढ़ी।
0: बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस
1: थोड़ा एक्सप्लेन करिए, मीनिंग क्या है? क्योंकि लोग और मैं और हमारे जो भी जहां जिनसे उठता बैठता हूं, कई लोग बोलते ईगो इज अ वेरी गुड थिंग, ईगो को बहुत प्यार से रखना चाहिए।
0: अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। अगर मैं आर्ग्यू कर रही हूं उस समय मेरी अटैचमेंट मेरे आइडिया से है कि मेरा ही आइडिया राइट है।
1: अगर सपोजिंग मेरे पास आइडिया है लेकिन अटैचमेंट कम है, तो मतलब ईगो कम है।
0: हाँ, अब पहले में और अपने में अपने अंदर चेंज देखना है। I see that so much change in myself. कि पहले तो दूसरे की बात ही नहीं सुननी थी, पहले ही अपनी बात रख देनी थी, फिर धीरे धीरे परिवर्तन आया कि अच्छा दूसरे की बात सुनी, लेकिन फिर भी कहा लेकिन मेरी वाली बात राइट है, ये सब ईगो है। अब स्टेज आई कि अपनी बात रखी, दूसरे को नहीं ठीक लगी, खुद अगर अंदर लगे भी कि ये वाली बात राइट है, नाउ वी हैव द पावर टू लेट गो ऑफ द आइडिया कि इट्स ओके, दूसरे को नहीं पसंद आया। पहले नहीं थे वो पावर, पहले तो कैसे, क्यों नहीं माना, क्यों नहीं समझ में आया, समझ में क्यों नहीं आ रहा कि ये वाली बात राइट है, क्योंकि मेरी ही बात राइट है। तो जैसे जैसे ये बहुत सूक्ष्म,
1: इतना भी नहीं समझ सकती है लोग, कब तक समझाऊं, क्या क्या समझाऊं, कैसे
0: कैसे। तब ये ज्ञान नहीं था कि सामने वाले का संस्कार अलग है तो उनकी डेफिनेशन ऑफ राइट अलग होगी, उतना पॉज करके वो अंडरस्टैंडिंग के लिए समय नहीं था बीच में। अब इसको सारा दिन में देखें, फैमिली के साथ, वर्क प्लेस पे, पीपल विल हैव डिफरेंट आइडियाज, क्योंकि सबसे सूक्ष्म जो हमारा अटैचमेंट होता है ना, बॉडी का अटैचमेंट हम अवेयर है कि हाँ, रिश्तों में भी अटैचमेंट, पोजीशन, आइडिया से अटैचमेंट, मेरी बात सही है, सबसे सूक्ष्म अटैचमेंट है, इसको छोड़ने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है।
1: समटाइम्स मुझे मालूम भी रहता है कि मेरी बात सही नहीं है, लेकिन फिर मैं एक बार अड़ गया तो अड़ गया।
0: हाँ, तो अब अड़ गया तो इसलिए क्योंकि पहले कह दिया है कि
1: अब
0: वो बात
1: से मैं वापस जाऊं,
0: तो ये सब ईगो है ना।
1: हाँ।
0: और ह्यूमिलिटी क्या है
1: कि दैट टाइम आई वॉज रॉन्ग, यू वर राइट, सॉरी, आई टेक बैक।
0: सी, वी नो द डिफरेंस, हमें मालूम है कि ईगो और ह्यूमिलिटी में क्या फर्क है, हमें मालूम है कि बॉडी कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस में क्या फर्क है। वी नो, सी, आपने आंसर दिया कि दोनों बात में क्या फर्क है।
1: इतना ब्यूटीफुल हो जाता है ना, एक्चुअली ये जो आप बता रहे हैं ना, सिखा रहे राजयोगा के बारे में, इससे लाइफ बड़ी इजी हो रही है,
0: इजी हो गई
1: और बहुत एक प्यारा सा मतलब रास्ता, पाथ।
0: ये जो इजी ना, ये जो इजी वर्ड आपने यूज किया ना, यही नेचुरल वे ऑफ लिविंग है।
1: जैसे कि मैं पहले अगर होता कि मेरी वाइफ ने और उसके फ्रेंड्स ने इतना कुछ मुझे सुना दी, ये कर दिया, अब मैं बोलता हूँ अपने आप को कि मैंने थॉट लेवल से कितना इनको बोला है, कितनी नेगेटिविटी भेजी थी, ताकि कब इनके अंदर से वो मेरी ही थॉट का रिएक्शन मुझे मिला।
0: राइट, तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, ब्लेम नहीं किया, ये भी सोल कॉन्शियसनेस है।
1: और फर्दर अपने आप को भी ब्लेम नहीं किया, लेकिन आपने क्या वो वर्ड बोला, ट्रांसफॉर्म, मैं हमेशा भूल जाता, ट्रांसफॉर्मेशन।
0: उसी सीन में ईगो क्या करता, पहली बात ब्लेम करता कि इन लोगों ने इस तरह से बात क्यों की, एक सेकंड एजिटेट होके रिएक्ट भी करता कि इन्होंने ऐसा कहा तो मैं इनको दो लाइन
1: एक का दो
0: और कहूंगा, एंड तीसरा जब बाद में बात खत्म भी हो जाती तो उनको ही जिम्मेवार समझता हर बात की, गलती उनकी ही थी, ये ईगो है, ये अहंकार है कि मैं ही राइट था, मैंने जो कहा वो ही सही था, क्योंकि मैं ये हूं, उन्होंने मेरे साथ कैसे बिहेव किया, मेरे घर में आके मुझसे ही ऐसा कहकर चले गए, मैं, ये ईगो की भाषा है सारे। सोल कॉन्शियसनेस की भाषा क्या है, ये थॉट्स मेरी क्रिएशन है, मैं मालिक हूं, मैं कई दिनों से नेगेटिव थॉट्स इनके बारे में क्रिएट कर रहा था, अवेयरनेस, ये कितनी अवेयरनेस है।
1: इससे पहले बिफोर अवेयरनेस अगर चुप भी हो जाता तो एक ना एक दिन तो बोलूंगा।
0: हाँ।
1: उस दिन लेकिन जो बोल गए, मैं लिख तो दूं, अगर नहीं बोला तो आज तो लिख दूं,
0: लिख दूं,
1: या अब तो फोन करके बोल दूं कि आपने उस दिन जो कहा था ठीक नहीं था, मुझे बुरा लगा,
0: ये
1: लेकिन
0: है,
1: कभी तो करूं।
0: ये है सिद्ध करने का और जिद करने का संस्कार जो ईगो में होता है, अपनी बात को सिद्ध करना और जिद करना, ये ईगो का साइन है। अपनी बात को छोड़ देना हल्के में, दूसरे के नजरिए को समझना, ये सोल कॉन्शियसनेस का संस्कार है। दिख रहा है ना सारा दिन।
1: अब मेरी समझ में आया है कि जिस दिन आपने एक बहुत पहले के एपिसोड में कहा था ईगो इज वीकनेस,
0: ईगो इज
1: कमजोर इंसान की ईगो होती है, तो आज मुझे ये क्लियर हुआ। तब मैंने बोला कितनी बुरी बात करते हैं, ईगो वाला तो होना, ईगो तो होना चाहिए।
0: हाँ।
1: क्योंकि मैं हूं मैं।
0: हाँ।
1: और मतलब नहीं तो कमजोर तो वो होता है जिसको ईगो ही नहीं है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ मैंने मिला दिया था,
0: सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो। लोग कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो के बीच में बहुत थिन लाइन है, एक्चुअली

0: self respect and ego din aur raat hai. They are opposite. Ego hai to self respect nahi us time. Aur self respect hai, ego nahi us time. Self respect matlab main apne idea ko main respect karta hoon, samne wale ne nahi bhi kiya, koi baat nahi. Lekin ego hai ki sari duniya mere idea ko accept kare. Tabhi baat sahi hai. Ye ego hai. Attachment to a wrong image of myself, ye sara din yaad rakhna hai. Ki ye ahankar hai. Ahankar hai ya nahi, kaise pata chalega? Yahan man shant hai, to soul conscious hai. Koi halchal ho rahi hai, turbulent hai, to ego kahin hil raha hai wo. कोई anger, कोई fear create हो रहा है. क्या जैसे आपने कहा meditation से कैसे ये बढ़ेगा? क्योंकि जितनी बार हम बार-बार इस consciousness को फिर से revise करेंगे, emerge करेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत, we will start feeling कि ये सब चीजें तो हम use कर रहे हैं, इनको लेकर हम इतना लड़ रहे हैं सब एक दूसरे के साथ. आज मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, कल मैंने ये शरीर छोड़ना है, चले जाना है. ये एक चीज भी अगर याद रहे, जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा. हमारी दादी जी कहती है, हर घड़ी जीवन को ऐसे जिएं कि ये जीवन की अंतिम घड़ी है.
1: अच्छा,
0: तो क्या हो जाएगा? ये घड़ी मेरी जीवन की अंतिम घड़ी है, तो मेरा जीवन की क्वालिटी क्या होगी? किससे फिर झगड़ा, किससे फिर कॉन्फ्लिक्ट? सपोज आज हमें पता चले कि मुझे आज शाम को शरीर छोड़ना है, मालूम पड़ गया, अब आज का दिन है, तो क्या करेंगे अपने रिश्तों को?
1: किससे लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे,
0: क्यों लड़ेंगे? फ्यूटिलिटी देखें उस चीज की, फ्यूटिलिटी. क्योंकि आत्मा जब शरीर छोड़ेगी तो अपने साथ ये रिकॉर्डिंग्स ले जाएगी सारी. ये अवेयरनेस जब नहीं होती है, वी मीट पीपल जो अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जब मैं जाऊं तो भी उनसे बात नहीं करना. मतलब ये जो हमारी लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई को क्या करना, बिल्कुल कंटिन्यूड रखना. अवेयरनेस में
1: मेरी आत्मा शांत नहीं होगी. क्या क्या बोलते हैं,
0: लेकिन अगर हम कॉन्फ्लिक्ट के साथ गए तो हमारी आत्मा शांत होगी कैसे? हाउ विल इट पॉसिबल? पीस का संस्कार की बजाय कॉन्फ्लिक्ट का संस्कार लेके चले गए, ऐसी आत्मा शांत कैसे होगी? तो इसलिए ये भी सारा दिन अगर याद रहे, नॉट फियर ऑफ डेथ बट अवेयरनेस दैट द सोल हैज टू लीव दिस कॉस्ट्यूम. दोनों चीजों में बहुत फर्क है. अगर फियर ऑफ डेथ है तो वो एक नेगेटिव क्वालिटी है, डर, भय में जीवन जीना. लेकिन अगर अवेयरनेस है कि मैं आत्मा ने ये शरीर छोड़ना है, और जब मैं आत्मा ये शरीर छोड़ूंगी, मैं अपने संस्कार, अपनी सारी रिकॉर्डिंग्स अपने साथ लेकर जाऊंगी, मुझे क्या क्या रिकॉर्ड करना है. अब एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस से हम छोटी छोटी बातों में लोगों से उलझना बंद कर देंगे. क्या उलझना है? किसके साथ क्यों कर रहे हैं ये? क्या, व्हाट डू आई वांट आउट ऑफ दिस? कुछ भी नहीं, सिर्फ अहंकार, मेरी बात राइट है, मैं हर्ट हो गया, मुझसे बुरी तरह से बात कर ली. इन चीजों के ऊपर सामने वाले की एनर्जी से उलझना मुझ आत्मा की एनर्जी को डिप्लीट करता है, मेरे ऊपर एक ग्रूव बनाता है. सारा दिन में ये अवेयरनेस भी रहे, ये जो मैं सोच रही हूं पैटर्न बन रहा है, संस्कार रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आत्मा ये सीडी लेकर जाऊंगी, ये मेरे साथ जाएगा, मैं आत्मा जब नए शरीर में शुरू करूंगी ये संस्कारों के साथ शुरू करूंगी. अटेंशन,
1: जब मेरे नेक्स्ट जन्म में मैं इन संस्कारों के साथ
0: जाएंगे ना, हम जाएंगे ना. सोल कॉन्शियसनेस ये भी तो इतनी ब्यूटीफुल चीज सिखाती है कि मैं आत्मा इस शरीर में हूं, यहां सब रिकॉर्ड है, अभी समय आया, सीडी इस प्लेयर से निकली, दूसरे प्लेयर में डाल दी, म्यूजिक सिस्टम बदलेगा सिर्फ, प्लेयर बदलेगा सिर्फ, सीडी इज द सेम.
1: मतलब फिर अगले जन्म में वही सीडी, इतना जो ग्रुप बढ़ जाएंगे और चीजें स्ट्रांग हो जाएंगी.

0: का संस्कार, धैर्यता हो जाएगा काम, क्यों इतना एजिटेट हो रहे हो, धैर्यता पेशेंस का संस्कार क्रिएट होगा, क्यों ऊंचा बोल रहे हो, धीरे धीरे संस्कार क्रिएट होगा, थोड़े दिन प्रैक्टिस, उसके बाद वो जब ग्रूव में चला जाएगा, अभी भी गुस्से का संस्कार, इरिटेट होने का संस्कार, ऊंची आवाज में बोलने, वो होगा, कभी कभी आ जाएगा, कभी कभी, और उस पे भी अटेंशन रखा तो वो इट्स ना के बराबर। अब ये मेहनत करके या ये थोड़ा सा वर्क करके आत्मा शरीर छोड़ेगी, नया शरीर लेगी, तो वो बच्चा कैसा होगा? This is the journey, no?
1: नया जीवन, नया संस्कार.
0: What we need to understand today is, एक बार का किया हुआ थोड़ा सा effort at attention, long term recording change कर रहा है. Long term. You will carry that संस्कार long term. अब जब वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, पीस का संस्कार उसका लूप में है. Don't we find children with different संस्कार्स? किसी एक बच्चे का गुस्से का संस्कार लूप में
1: उल्टा हो रहा है आजकल. जैसे जिसके पेरेंट्स गुस्से वाले संस्कार बच्चे को देखते बोलते, हाँ ये बहुत अच्छा बढ़ेगा आगे चल के, इस आज के जमाने में ये चाहिए. और जहाँ पीछे से ये बड़े डरपोक है, बड़ा कमजोर है, पता नहीं कैसे चलेगा, पता नहीं कैसा बिजनेस करेगा,
0: वो क्यों? जैसा म्यूजिक आप प्ले करते हैं, आपको तो वैसे वाला ही म्यूजिक पसंद आने वाला है, राइट? सपोज आपकी सीडी पर बहुत फास्ट लाउड रॉक म्यूजिक चलता है, और आपके घर में बच्चा पैदा हुआ जिसकी सीडी पर भजन चल रहे हो, तो पसंद थोड़ी आएंगे, कहेंगे ये क्या बजा रहा है,
1: ये तो बुढ़ापे में करने की चीज है.
0: हाँ, राइट. आज अगर किसी घर में परिवार में बच्चा आता है और वो छोटा बच्चा ही यंग एज से स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड है या पूजा पाठ में ज्यादा इंक्लाइंड है, ये सब क्या कर रहा है, ये कोई इस एज में करने की चीज है, वो सीडी के गाने हमें पसंद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारा गाना उस सीडी से अलग है और हमारा ईगो जो है वो कहता है हमारा गाना सही है. सोल कॉन्शियस होते तो देखते कि राइट गाना क्या है हर आत्मा के लिए, लेकिन ईगो ये नहीं देखती कि राइट गाना क्या है आत्मा के लिए. ईगो कहती है मेरा गाना ही राइट है. दोनों लाइंस में बहुत फर्क है. आज पूरा दिन अगर हम ये एक होमवर्क करें कि मैं जो सोच रही हूँ, जो बोल रही हूँ, जो व्यवहार कर रही हूँ, ये मुझे आत्मा पे रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे साथ आगे जाने वाला है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये मेरे साथ इटर्नल रिकॉर्डिंग बनकर, मेरा हिस्सा बनकर मेरे साथ आगे जाने वाला है. अटेंशन 10 में से 5 बार बच जाएंगे, डेफिनेटली बचेंगे, क्योंकि ये भी एक थॉट क्रिएट की ना, तो यहाँ एक रिकॉर्डिंग हुई, तो जैसे ही वो कुछ आएगा मन कहेगा ये साथ जाने वाला है, तो लंबा नहीं खींचेंगे बात को, जल्दी से उसको फुल स्टॉप लगा देंगे, नहीं तो लंबा खींचते हैं, सोचते जाते सब रिकॉर्ड हो रहा है, सारा कुछ रिकॉर्ड होता जा रहा है. सपोज वी आर शूटिंग दिस प्रोग्राम, कैमरा ऑन है, रिकॉर्ड कर रहा है, तो हम काम की बात करेंगे ना जो रेलेवेंट है. अब सपोज कैमरा ऑन है और हम कुछ और ही बात कर रहे हैं, इधर की उधर की, ये कैसे ये वैसे, तो कोई कहेगा ना क्या कर रहे हो, कैमरा ऑन है ऐसे ही रिकॉर्ड करते जा रहे हो.
1: और ये सीडी हमारे जाने के बाद भी बजते रहेंगे, वो हमेशा के लिए रहेंगे.
0: तो कितना ध्यान रखना है,
1: रिकॉर्डेड,
0: कितना ध्यान रखना है,
1: यहाँ ध्यान रखते हैं ना.
0: आज यहाँ ध्यान रखेंगे.
1: हाँ.
0: आज यहाँ ध्यान रखेंगे. एक एक घंटे का अलार्म लगाते हैं और हर एक घंटे के बाद अपने आप को सिर्फ एक थॉट देते हैं. आज
1: एक एक मेडिटेशन करते हैं, एक एक मिनट के, एक एक घंटे के बाद.
0: हाँ, आज तो सिर्फ रिमाइंडर भी दे दें. चलो मेडिटेशन भी अभी शुरू नहीं हुई, रिमाइंडर आफ्टर एवरी 1 आवर, माई थॉट्स, माई वर्ड्स, माई एक्शंस आर एन इटर्नल रिकॉर्डिंग.
1: अगले जन्म में मैं इनको लेके जा रहा
0: हूँ. परमानेंट, हर जन्म में, अगले जन्म में क्यों?
1: अनलेस आई स्टॉप, जो उसमें लिखा था,
0: अनलेस आई स्टॉप द लूप एंड क्रिएट अनदर वन. ये तो मेरी परमानेंट रिकॉर्डिंग है. आज अगर हर घंटे के बाद हम ये होमवर्क करके देखते हैं, कोई भी चीज थोड़ी सी मेहनत करे बिना नहीं होने वाला है. चाहे इसको आज हम अपने फोन पे एंटर कर दें, एक अलार्म लगा दें.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहां नहीं कर सकते। क्यों? स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई? क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।

अनंत संभाजी और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो,

0: है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए छत्तीसगढ़ से हमारे साथ बीके काकोले जी हमारे साथ उपस्थित हैं और आप एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं पिछले कुछ समय से और ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी जुड़े हुए हैं। तो काकोले जी बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छी हूं।
0: जी जी जी, और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं, किस तरह का प्रोफेशन आपका है?
1: मैं शिक्षा विभाग में अपने कांकेर जिले में, रायपुर से 3.5 घंटे दूर है हमारा।
0: अच्छा, रायपुर से
1: 3.5 घंटे दूर है और वहां पे मैं एज ए लेक्चरर स्कूल में पढ़ाती हूँ।
0: अच्छा,
1: हाई स्कूल में।
0: तो कौन से सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ाते हैं आप, थोड़ा बताइए अपने बारे में।
1: मैं हिंदी और साइंस दोनों पढ़ाती हूँ। 11th-12th का साइंस 10 साल ली हूँ, लेकिन 97-98% आता था रिजल्ट उस समय। और केमिस्ट्री बहुत कठिन होता है, लेकिन सब बेसिक्स मुझे पूछते थे क्योंकि क्लास 1 से BSc तक मेरा फर्स्ट क्लास रहा, तो मेरी बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, तो इस हिसाब से पूछते थे, बताती थी। लेकिन अब जो स्कूल में आई हूँ, यहाँ पर जो है लड़कियां हैं 350 और आश्रम स्कूल है जो नक्सली पीड़ित होते हैं।
0: अच्छा,
1: तो उनके बच्चों को विशेष जो है वहां पर रखने का प्रावधान है और सरकारी सहायता मिलता है वहां। और लड़कियों को मैं जिस साल गई 2012 में दिसंबर में, तो उस साल फर्स्ट डिवीजन नहीं था, तो वही 96-97 जो एवरेज होता है। और उनकी स्थिति को देखते हुए मैंने दूसरे साल उनको राजयोगा मेडिटेशन सिखाया, जो मैं एक साल हुआ था सीखी थी, तो प्रयोग किया मैंने। तो जो प्रिंसिपल के घर में लड़की रहती थी, 9th तक तो करा दिया, अब 10th का कैसे करे, तो मैंने उसको एक प्रयोग किया, मैंने बताया जो है महाज्योति शिव बाबा को याद करना और जो तेरे बुद्धि में आए वो लिख कर आना। क्योंकि रहती मैडम मुझे तो देखकर भी लिखना नहीं आता, मैं क्या करूं।
0: अरे बाप रे।
1: हाँ, तो फिर मैंने उसको सजेशन दिया कि ऐसा करके देख,
0: बिल्कुल,
1: और
0: बिल्कुल।
1: आप यकीन नहीं मानेंगे कि उसका जो है 2nd डिवीजन आ गया।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया।
1: तो जादू हो गया, जादूगर ऊपर बैठे जादू कर रहा है और हम जादू का अनुभव कर रहे हैं। तो उस साल जब पालक छोड़ने आया आश्रम में स्कूल, तो बड़ी मैडम ने जो है फूल बरसा के, जैसे देवताओं के ऊपर बरसाते हैं ना, वैसा पूरा जो है समारोह मनाया।
0: जी जी जी, चलिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। और मैं चाहूंगा कि शिक्षा विभाग माना छत्तीसगढ़ में किस तरह से वहां पर रिक्रूटमेंट कैसे किया जाता है, भर्ती कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, सिस्टम क्या है वहाँ का।
1: हाँ, जो हर जिले में एक स्कूल सरकारी जो है सहायता से चलता है, और रहने की व्यवस्था जो दूर से गांव में रहते हैं, शहर में नहीं रहते, प्राइवेट स्कूल उपलब्ध नहीं होता है।
0: अच्छा अच्छा,
1: ऐसे बच्चों के लिए जो है सरकार जो है छत्तीसगढ़ सरकार जो है हर जिले में एक स्कूल वैसे खोली है, आश्रम स्कूल, जहां लड़कियां रहती है। विशेष जो है लड़कियों को पढ़ने से रोका जाता है, घर का काम करो ऐसा माहौल है, तो इसलिए उनको जो है आगे पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मुफ्त में बुक भी देती है और इस साल तो कॉपी भी दी, और उनको जो है वैसे करके रख के पढ़ाया जाता है।
0: नहीं, वहां पर टीचर्स वगैरह का कैसे भर्ती होता है, उसके बारे में?
1: अच्छा, टीचर्स का जैसे मेरा तो परसेंटेज अच्छा था, तो उस समय क्या है जो है बुला करके जिसका परसेंटेज अच्छा देखते थे तो प्रॉपर जगह में रखते हैं।
0: अच्छा,
1: और अभी तो इंटरव्यू सिस्टम हो गया।
0: अच्छा,
1: उसमें मार्कशीट बेसिस पर हो रहा था।
0: हुँ,
1: तो जैसे जैसे दिनों दिन जो है जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो प्रक्रिया कठिन होते जा रही
0: अच्छा,
1: है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: तो अभी इंटरव्यू होती है, फिर बीएड जरूरी है, डीएड जरूरी है। और हमारे समय में ऐसा था कि हम पहले ले लेते थे, उसके बाद में पहले ट्रेनिंग कर लो।
0: बिल्कुल, अच्छा, पढ़ाई करते मना पढ़ाते हुए बच्चों को, फिर बाद में ट्रेनिंग करो, दोनों चीजें चलती थी साथ साथ में।
1: दोनों
0: अभी प्रॉपरली जो है बीएड वगैरह डीएड
1: डिग्री होगा एजुकेशन का, तभी लेते हैं।
0: लेते हैं,
1: ऐसा है।
0: अच्छा, जो वहां पर आदिवासी बच्चे वगैरह या नक्सलवादी इलाका वगैरह बहुत सारा है, तो अभी

0: करंट सिनेरियो में किस तरह का सिचुएशन है वहां पर, अभी सब सुचारू रूप से चल रहा है या?
1: अभी पहले से काफी अच्छा हो गया है।
0: अच्छा अच्छा।
1: पहले जो है दूर दराज में जाने से लोग डरते थे, पोस्टिंग उधर होती थी
0: तो भी नहीं जाते थे,
1: प्रमोशन नहीं लेते थे।
0: अच्छा, प्रमोशन ही नहीं लेते थे।
1: नहीं लेते थे कि वहां जाना पड़ेगा करके। पर ऐसे सुकमा जिला है जहां बहुत ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाका है, पर वहाँ सरकारी सहायता से अभी बहुत अच्छा, मतलब वहाँ विकास भी हो गया है, तो लोग अभी जाकर के रहना पसंद करते हैं। बल्कि पहले से दहशत कम हो गया है। पहले दहशत का माहौल होता था, वो अब नहीं है।
0: अच्छा अच्छा। तो अब वहाँ पर जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र में मना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ही स्कूल है क्या, दो तीन स्कूल है?
1: नहीं, स्कूल तो अनेक है, प्राइवेट स्कूल्स भी है, सरकारी स्कूल भी है, मिडिल हाई प्राइमरी ऐसे स्कूल है।
0: अच्छा अच्छा।
1: और जो जिस स्कूल में मैं अभी हूँ तो वो ऐसा वाला स्कूल जो सरकारी से चलता है SC ST OBC के लिए।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: तो वो स्कूल हर जिले में एक है।
0: ओके ओके।
1: और मेरे जो स्कूल में जब एक साल 100% हो गया तो सेकेंड बार भी आया, थर्ड बार में जो है प्रिंसिपल मैडम 18 लोगों का स्टाफ था और उन्होंने मीटिंग लेके पूछा कि सब प्रिंसिपल को लगता है कि हैट्रिक हो उनके स्कूल का। तो वो जो है 18 लोग कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो जो है उनका ऐसे कि दूसरे स्कूल में जाके बच्चे परीक्षा देंगे, आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा वाला स्थिति था। फिर मैंने तो अब हमने जो भगवान से बात करना सीख ली है, राजयोग मेडिटेशन मतलब है ईश्वर से मुलाकात और ईश्वर से बातचीत, और परमात्मा से जब हम ऊपर वाले से डायरेक्ट कनेक्शन के थ्रू हम बात करते हैं तो वो हमें जो है वो टचिंग करते हैं। और मैंने उनसे बात की और मैंने कहा मैडम हो जाएगा।
0: अच्छा,
1: निश्चिंत रहिए। मैंने खड़े होकर जवाब दिया 18 लोगों के बीच में, सोचो। फिर मैंने बोला कि भाई अब हमने बोल दिया है, अब क्या करना नहीं करना है वो आप जानो। शिव बाबा को बोला तो उसके बाद उस साल आया। जब हैट्रिक आया तो मैडम को बड़ा
0: अच्छा लगा,
1: बहुत अच्छा लगा और एकदम से जो है उनको बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। और स्कूल में मेडिटेशन कराती हूँ, जैसे जाती हूँ ना 9th-10th के क्लास में, 2 मिनट खड़े होते हैं तो उस समय ना उनको जो है सिखाए।
0: अच्छा अच्छा।
1: कि आप ऊपर से जो है सर्वशक्ति की किरणें आ रही है ऐसा सोचो और चारों ओर फैल रही है।
0: ठीक है, चलिए मैं चाहूंगा कि एक आध गीत आप जो है गीत भी गुनगुनाते हैं, तो एक गीत को एक गुनगुनाइए।
1: मधुबन में आई हूँ तो मधुबन का ही एक गाना गा देती हूँ।
0: जी जी जी, बिल्कुल।

0: रहे।
1: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर विशेष काकोली जी को, और बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनाया है। और एजुकेशन सिस्टम में जो है, एजुकेशन विभाग में आप सेवा दे रहे हैं छत्तीसगढ़।

गढ़ में और वहां पर नक्सलवादी जो क्षेत्र है ज्यादातर, तो अभी उसमें काफी परिवर्तन आ गया ये भी आपने बताया है। और पहले लड़कियों को बच्चियों को नहीं पढ़ाते थे, लेकिन अभी बच्चियों को जो है अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। और सरकारी स्कूल के साथ प्राइवेट स्कूल्स भी हर डिस्ट्रिक्ट में वहां पर अभी है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हां, करियर ऑप्शन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बीके काकोली जी से हमारी बातचीत हो रही है, शिक्षा विभाग से आप जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज के समय में जैसे कि आपने बताया कि सरकार जो है इंटरव्यूज वगैरह भी लेती है और प्रॉपर तरीके से जो है सिलेक्शन होता है। तो अभी बच्चे जो है जो करियर बनाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे, कैसी उसकी तैयारी करें?
1: उनको अपने रुचि के अनुसार जो है सब्जेक्ट का चॉइस करना पड़ेगा
0: जी।
1: पहले तो बच्चों को ये नहीं पता होता है कि जो है हमें वकील बनना है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, कई और भी साइड्स है, खेल है और आईटी सेक्टर जा सकते हैं, एमबीए करना है, उससे किससे क्या कौन सी डिग्री प्राप्त होती है और उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करना पड़ता है टेंथ में के बाद में, क्योंकि टेंथ तक ऑल सब्जेक्ट होता है और उसके बाद में जो सब्जेक्ट का चॉइस होता है वही उनके कैरियर को आगे बढ़ाता है। तो इसलिए सब्जेक्ट के चॉइस पर जो है विशेष ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए काउंसिलर से जो है या तो जो उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं, टीचर्स हो या पेरेंट्स हो, उनसे जो है सलाह परामर्श करके वो जो है सब्जेक्ट का चयन करें जिससे उनको जो बनना है उस सब्जेक्ट पर जो है फोकस हो। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो है डीएड कर लेते हैं, मतलब जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए डिग्री चाहिए होती है और उसके बाद में वो फॉरेस्ट में कर रहे हैं तो कहीं और जो है कर रहे हैं, क्योंकि उसको वो इंटरेस्ट ही समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है। तो इसीलिए पहले से ही उनका जो है वर्ष खराब ना हो, इसीलिए सब्जेक्ट का चॉइस और जो है परफेक्ट अपने को जान करके मेरी रुचि किस साइड है, मैं वो कर पाऊंगा या नहीं, उसको जो है कदम आगे बढ़ाना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे अभी जैसे आपने बताया कि कोई लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन फिर वो वहां पहुंच नहीं पाते, तो क्या ऐसा होता है कि जो डिग्री हासिल किया उस अनुसार वो जाना चाहिए था बच्चों को, तो फिर वो दूसरी जगह क्यों डाइवर्ट हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है?
1: उसको जो है पता बाद में चलता है कि मुझे तो इंटरेस्ट था, सब कर रहे थे इसलिए मैंने कर लिया, ट्रेनिंग कर लिया, खाली नहीं बैठे रहो, ट्रेनिंग करो और कॉलेज भी साथ साथ करो। लेकिन जैसे जैसे मैच्योर्ड होते हैं तो उनको पता चलता है कि ये जो है इससे ज्यादा अच्छा जॉब भी हम कर सकते हैं। टीचर लाइन तो सबके लिए नहीं है, टीचर हर कोई नहीं बन पाता है, बोल नहीं पाता है, एक मजबूरी से करना अलग होता है, एक खुल के दिल से करना अलग होता है। तो किसी को बाबू का काम पसंद आता है तो बाद में वो फिर उसमें डीओ बीओ में देखो जाकर वो कर रहे हैं, तो मैं हैरान होती हूँ कैसे, क्योंकि मैंने जो है वहां पर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में मैं 4 साल डेप्यूटेशन में वहां भी काम की हूँ, तो जो दायित्व में 4 साल के लिए जब पढ़ाई, वो बच्चे जो है अभी अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं जो कि वो शिक्षा के लिए है कि वो प्राइवेट पढ़ाएंगे, तो उसको देख करके इसलिए मैं जो है श्रोताओं से ये कहना चाहूंगी कि सब्जेक्ट का चयन खासकर 10वीं के बाद में वो जो है बहुत अपनी रुचि को ध्यान में रखकर, ताकि उनका जो है साल खराब नहीं हो, कोई अच्छा मार्गदर्शन से उससे पूछ करके तो वो आगे बढ़े।
0: बिल्कुल,
1: तो उनका साल खराब नहीं होगा।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और इसके साथ में एक और बात आती है कि क्या वहां पर काउंसलिंग वगैरह सरकारी इसमें बच्चों का करियर के लिए कुछ प्रोग्राम्स होते हैं क्या?
1: हाँ, अभी जो कलेक्टर है वो शुरू करवाई है, पिछले 2-3 सालों से मैं देख रही हूँ कि बच्चों को ना काउंसलिंग दी जा रही है, तो क्या कौन क्या बनना चाहता है ये वाली हो रही है, और इसके पहले ऐसा नहीं था। उससे पहले तो हम ही क्लास में बताते थे, तो जो बच्चे हैं आज भी मुझे याद करते हैं कि मैम आप हमको जो बताते थे वो बहुत हमारे लाइफ में काम आया, और वो शायद कहीं ना कहीं से पता चला होगा कि करना चाहिए। तो मैं अपने जिले में बिल्कुल मार्गदर्शन देते रहती हूँ, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर जो है सलाह बहुत जरूरी है, तो पूछते रहते हैं, और जब

0: ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन की हूँ, 13 साल हो रहे, तब तो ऐसा हो गया है कि मेरे स्कूल का रिजल्ट देखकर 11 साल से 100% आ रहा है, फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन, नो थर्ड, नो फेल, नो सप्ली। जिले में कोई स्कूल में 4 साल तक आया था, लेकिन ये जो अनोखा प्रयोग जो है, अनुभव, ये जो है हमारे पूरे जिले में, जो है रायपुर में भी कोई बाहर की टीम आती है तो हमारे स्कूल भेजते हैं कांकेर के स्कूल को देखो, रहने की व्यवस्था जैसे है बच्चों के, फिर पढ़ाई का रिजल्ट अच्छा हो रहा है। और इस साल तो मैंने टॉप 10 में आएगा पहले से बोल दिया, किसके दम पर बोला है, कौन हमारा साथी है। तो जब ऊपर वाला हमारा साथ है तो फिर क्या डरने की बात है,
1: बिल्कुल
0: संकल्प करो। और बच्चों को भी ट्यूनिंग दे दी, ठीक
1: सही
0: है,
1: बात है,
0: बिल्कुल घंटे में 1 मिनट जो है पावर लेते रहो, पावर हाउस से जुड़कर, और अपने को चार्ज करते रहो और पढ़ाई याद रखो,
1: बिल्कुल
0: दे दिया।
1: तो अभी जैसे कि आपने बताया काउंसलिंग का भी अभी जो है शुरू हो गया, नया कलेक्टर आया है, तो ये एक अच्छी चीज है कि बच्चों को पढ़ाते वक्त ही उनको अगर काउंसलिंग का भी अच्छा से मार्गदर्शन मिले और करियर में क्या क्या कर सकते हैं, किस किस तरह की चीजें हैं, ये अगर बच्चों को पहले से बता दे तो बहुत ही अच्छा होता है। और खास इलाका जैसे कि छत्तीसगढ़ है, नक्सलवादी इलाका है, तो वहां पर अभी ये सारा बदलाव हो रहा है, ये सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं चाहूंगा कि वहां पर अभी सिर्फ लड़कियों को ही सरकार पढ़ा रही है कि लड़कों को भी पढ़ाती है फ्री में?
0: लड़कों को जो बुक्स बस मिलते हैं, बाकी उनको खर्चे करने पड़ते हैं घर वाले, क्योंकि लड़के लोग के लिए तो घर वाले ऐसे ही रेडी रहते हैं, तो सरकार उसमें खर्चा नहीं करे, लड़कियों के लिए करती है बस।
1: अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो अभी जैसे कि नई नई चीजें आ रही हैं, और क्या आपके स्कूलों में वगैरह कंप्यूटर्स वगैरह लगे हुए हैं क्या?
0: हाँ, कंप्यूटर शिक्षा तो जरूरी हो गया आज के डेट में, तो कंप्यूटर के लिए नए अभी, मतलब हमारे स्कूल का रिजल्ट आने के बाद से सरकार इतनी बजट दे रही है, यहाँ से ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट, अब जो है कंप्यूटर के लिए अलग रूम हो गए, लाइब्रेरी के लिए अलग हो गए, और जो है क्लासेस के लिए भी अलग से मतलब सुविधाएं दे रही है, तो समझो मतलब पांचों उंगली घी में हमारे स्कूल सिर्फ रिजल्ट की वजह से।
1: अच्छा,
0: और इस साल तो दूसरे जिले से भी आए, जैसे मैंने बताया ना, जिले में एक स्कूल होता है सरकारी, जो है सहायता मिलता है उनको,
1: तो दूसरे जिले से,
0: हाँ दूसरे स्कूल से भी हमारे स्कूल में आए, तो हम जो है काउंसिलिंग के समय पूछ रहे थे कि आपके स्कूल में है, जिले में स्कूल है तो आप वहां पास पड़ेगा, वहां क्यों नहीं जाते हो, तो चुप है, मतलब समझ जाओ कि एक दो लोग फिर पूछते हैं तो नहीं रिजल्ट है आपके स्कूल का, ये कहते हैं धीरे से तो रिजल्ट तो देखो, पढ़ाई हर स्कूल में होती है, हर टीचर दी बेस्ट देता है, और हर बच्चा जो है अपना यथासंभव प्रयास करता है, लेकिन मैंने ये जो प्रयोग राजयोग का प्रयोग किया, इससे मुझे इतने ये समझ में आई है कि जो पावर है ना वो काम करती है, क्योंकि हर स्कूल में पढ़ाई होती है लेकिन रिजल्ट कैसे आता है
1: ये हर एक का अलग अलग है।
0: हाँ, तो
1: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हम लोग जो है रिजल्ट्स के कारण सरकार भी जो है अवेयर हो जाती है और उसके लिए अच्छा फंड देकर स्कूल को जो है समृद्ध संपन्न बना रही, ये आपने बताया। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सबको?
0: मैं यही देना चाहूंगी कि राजयोग मेडिटेशन अपने नियरेस्ट ब्रह्म कुमारी सेंटर जाकर, या यूट्यूब में अगर सुविधा नहीं हो, यूट्यूब में डला हुआ है डॉक्टर दामिनी सिस्टर शिवानी, इनके जो कोर्सेस है डे 1 डे 2 करके, तो बिल्कुल जो ये जो है स्वस्थ रहने के लिए भी जरूरी है, और याददाश्त तेज होने के लिए भी जरूरी है, और 7 दिन का जो कोर्स का तो अलग ही महत्व है, जो मैंने अभी बताऊंगी, जो छत्तीसगढ़ के बाल कलाकार कैसे बनी वो, तो तीनों क्षेत्र में मैंने प्रयोग किया, संगीत में, स्वास्थ्य में और शिक्षा में, तो मैंने देखा कि ये 100% जो
1: है
0: काम करता है, और जो अपनाता है उसको जो है चारों तरफ से जो है फायदे ही फायदे होते हैं। 7 डेज जरूर जो है कोर्स के, क्योंकि वो जो है पावर हाउस ऊपर बैठा है महाज्योति से जुड़कर अपने सोल को, जो तिलक बिंदी लगाते हैं, ये जो आत्मा यहाँ है इसका ज्ञान नहीं है मनुष्य को, तो जब चार्जिंग होती है तो उससे बहुत बेटर फायदे होते हैं, जिसको कि वो करके देखेंगे तभी पता चलता है।
1: जी जी,
0: जरूर सीखे।
1: तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने कोट किया आखिरी में। और राजयोग यानी ऊपर वाले से पावर लेने की विधि है, और इस विधि को सीखकर अगर आप अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा जो है बेनिफिट मिल जाता है। तो चलिए, आप सभी विद्यार्थी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करें आप और देश का नाम रोशन करें, इन शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। काकोली जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और आप सभी को भी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: शुक्रिया करते हैं परमात्मा का जो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। शुक्रिया करते हैं उन डॉक्टर्स और सुरक्षा कर्मियों का जो दिन रात सेवा कर रहे हैं। शुक्रिया करते हैं उन प्रत्येक देशवासियों का जो हरेक नियमों का पालन कर रहे हैं और घर बैठे एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। अभी सुनते हैं बच्चों की दुनिया, ये कार्यक्रम।

0: भैया।
1: हाय।
0: कैसे हो?
2: क्या हुआ आपको, इतने सैड क्यों?
1: ऐसे ही बस।
0: क्या हुआ भैया, बोलो ना।
1: कुछ नहीं, बस थोड़ा बुरा लगा मुझे।
0: किस बात की?
1: स्कूल में एक सर है मैथ्स के, वो हमेशा मुझे डांटते रहते बेमैथ पप्पा।
3: हाँ भैया, ऐसा मेरे साथ भी होता है।
1: अच्छा?
3: हमारे भी स्कूल में एक मैथ्स टीचर है, उनके पास मैं ट्यूशन जाता हूँ। एक तो ट्यूशन फीस तो ज्यादा लेते हैं, और मेरे पापा कहते हैं कि है ना, वो सर अच्छे पढ़ाते हैं इसलिए उनके पास जाओ। सर पैसे भी लेते हैं ज्यादा, पढ़ाते भी ढंग से नहीं है, और बेइज्जती भी करते हैं, बस मारते हैं।
1: अच्छा।
3: हाँ,
1: मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ होता है।
3: बहुत बहुत बेइज्जती करते हैं, बिन फालतू में।
4: आज हम इसी बारे में दीदी से बात करें।
1: हाँ जी, अच्छा रहे। दीदी को आने दो।
3: हाँ दीदी को आने दो।
5: अरे दीदी आ गई।
0: हाय दीदी।
1: हाय दीदी।
5: हाय दीदी। हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग?
1: ठीक है।
5: तो तुम लोग मेरे आने से पहले कुछ बातें कर रहे थे?
0: हाँ दीदी।
3: हाँ दीदी।
5: क्या बात कर रहे थे भुवना?
0: दीदी हम हमारे फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे थे और शेयर कर रहे थे।
5: तो ठीक है, चलो आज हम तुम लोगों की यानी बच्चों की फीलिंग्स के बारे में बातचीत करते हैं।
4: हाँ दीदी।
1: हाँ।
5: तो आकाश तुम बताओ, कभी ऐसा कुछ हुआ है किसी बड़े ने तुम्हें कुछ कहा हो और तुम्हें बहुत बुरा फील हुआ हो?
3: हाँ दीदी, बड़े की बात सब बात मिलजुल कर सर पे ही जाती है दीदी।

0: दीदी बता के भी क्या फायदा, कोई सुनने थोड़ी वाला है मेरी बात। सब बच्चों के साथ ऐसा होता है।
1: डांटना अलग बात है, जब हम कोई होमवर्क नहीं करते या कोई ऐसी चीज होती है तो हमें डांट तो पड़नी चाहिए, नहीं तो हम करेंगे कैसे। लेकिन क्या कोई ऐसी चीज होती है जो आपको बहुत बुरा फील होता है या लगता है कि नहीं बोलनी चाहिए, तो वो गलत है।
0: हाँ दीदी, मेरा एक भाई जैसा दोस्त है, मुझसे छोटा है, उसके फादर नहीं है और सर बार बार बोल रहे हैं तेरे पापा को बुला के लाना। सर को पता है कि उसके पापा नहीं, फिर भी बोलते उसके। बेचारा वो रो जाता है, उसका देख के मुझे भी अच्छा नहीं लगता। और जब मैं सर को ये बात बोलने जाता हूँ, सर मुझसे ढंग से बात करते हैं, और जब दूसरे दिन वापस ट्यूशन जाता हूँ वापस डांटना चालू। और कहते दूसरों की बात करने में तो तेरी बहुत जवान चलती है, पढ़ाई में क्यों नहीं चल रही।
1: तो ऐसे में वो जो आपका दोस्त है, सबसे पहले आपको उससे बात करनी चाहिए और उसको ये समझाना चाहिए कि उसके लिए आप सब मौजूद हो, उसके लिए कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जो उसके जिंदगी में नहीं, बल्कि आपके पापा हैं, वो उसके पापा की ही तरह हैं, आप लोग हो, वो उसके हर रिश्ते की तरह हो। इतना प्यार आपको अपने दोस्त को देना चाहिए, है ना?
0: हाँ दीदी।

0: और भुवना, कभी कोई ऐसी घटना आपके साथ हुई है जब आपको बहुत बुरा फील हुआ हो?
1: हाँ दीदी, मैंने लास्ट समर हॉलीडेज के लिए मेरी नेटिव प्लेस नल्लूर गई, तो फिर मैं लौट आने से मुझे बहुत खांसी हुई, तो मुझे पता नहीं क्या वेदर अच्छा नहीं लगा कुछ। नेटिव प्लेस में सब मेरे दादी दादा रहते हैं। फिर मैंने म्यूजिक क्लास गई, मैं रोज म्यूजिक क्लास जाती हूँ, तो मेरी टीचर ने बोली तू रोज क्यों नेटिव प्लेस जाती है, क्यों ऐसा जाती है, खांसी लाती है और मुझे भी खांसी देती है। उस बात पे मुझे बहुत बुरा लगा।
0: आपकी टीचर ने आपसे इस तरह से बोला, ये आपको बुरा लगा?
1: हाँ दीदी।
0: कई बार हम बड़े भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं और ये ध्यान नहीं देते कि बच्चे भी वो चीजें समझ रहे हैं, है ना भुवना?
1: हाँ,
0: लेकिन आपको इस चीज का बुरा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि जो गलती हमने की नहीं, अगर उस चीज के लिए हमें कुछ बोला जाए तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है। ठीक है?
1: ठीक है दीदी।

0: और सैंडी, आपको कोई ऐसी बात याद है?
1: हाँ दीदी, मुझे भी याद है। मैं टेंथ तक था तब हमारे स्कूल एक टीचर थे मैथ्स के, वो हमेशा मुझे और पंकज को डांटते रहते थे। जब अगर कोई क्लास में गलती भी करेगा ना तो उन्हें लगा कि हम ही गलती करेंगे, मतलब जब भी कुछ होगा हम ही डांटेंगे हर बात में। तब मुझे बहुत बुरा लगता था और सामने बोल भी नहीं सकते हम लोग, तो कभी कुछ होगा तो बस हमारा ही नाम आएगा।
0: तो आपकी गलती हो या ना हो, कोई भी बात हो, आप ही को डांटते?
1: हाँ, बोले तुम लोग ही मस्ती करते हो।
0: तो शुरू में कोई मस्ती ऐसी हुई जो उन्होंने देखी, फिर वो देख के आप समझते थे कि आप ही लोग हमेशा करते हो?
2: दीदी ऐसा तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं उन्होंने जब मुझे फर्स्ट टाइम डांटा था वो ये वजह थी कि वो जब पढ़ा रहे थे तो मैं उनकी तरफ स्माइल करके देख रहा था, तो उन्हें लगा कि मैं किसी बात पे हंस रहा हूँ या उनका कोई मजाक उड़ा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे इसलिए क्लास में सबके सामने बाहर निकाला और मुझे कहा कि तू हंस क्यों रहा है। मैंने कहा मैं हंस नहीं रहा, मैं तो बस ऐसे मुस्कुरा रहा था। तो उनको ये भी पसंद नहीं आया कि मुस्कुराहट क्यों ले रहा, वजह क्या है। तो मैं तो बिना वजह शायद ऐसे ही स्माइल कर रहा था, मुझे ध्यान नहीं कि सर ऐसा सर को बुरा लगेगा, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं समझी और मुझे पनिश करके बाहर निकाल दिया क्लास से।
0: और ये तो एक बार हुआ, क्या ऐसा बहुत बार हुआ आप लोगों के साथ कि बार बार आपकी डांट पड़ी हो?
2: हाँ दीदी, फर्स्ट इंसिडेंट तो यही था, लेकिन उसके बाद जब भी ऐसा कुछ होता था तो उन्हें लगता था कि क्लास में हम ही हैं जो मस्ती का करते हैं या कोई मिसबिहेव करते हैं।
0: तो आप लोग ऐसे में क्या करते थे, वो आपको डांटते थे तो क्या आपको बहुत बुरा फील होता था, या आप लोग कुछ कहना चाहते थे या फिर क्या करते थे?
2: दीदी हम ऐसा तो कुछ करते नहीं थे, हम टीचर की दिल से रिस्पेक्ट करते थे और अभी भी हम करते हैं। अगर कोई भी टीचर भले ही कितना ही बुरा हो लेकिन उसे हम एक टीचर समझ के उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो जो भी हमें पनिश करते थे पनिशमेंट को हम पूरा करते थे, और
1: पर हमें बुरा लगता था
2: लेकिन फील होता था कि गलत है ये।
0: बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो अगर हम ऐसी कोई बात नहीं है जिससे हमें ज्यादा बुरा लगे या फिर हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही हो, तो हम सुन के उस चीज को पनिशमेंट को पूरी करके खत्म कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज हो जो आपको ट्रबल करे या बड़ी परेशानी का रूप ले तो उस

0: सलूशन करना जरूरी भी है। हर बात को ऐसे ही टालना जरूरी नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है जो आप टॉलरेट कर सकते हैं, जाने दे सकते हैं, तो उसको भूल जाने में ही हमारी भी भलाई होती है।
1: हाँ दीदी,
0: है ना। और भुवना, आप स्कूल जाते हो?
2: हाँ दीदी।
0: और म्यूजिक क्लास के बारे में तो आपने बताया, स्कूल में कभी कोई ऐसी बात हुई है जब आपकी फीलिंग्स को बहुत हर्ट हुआ हो?
2: दीदी, मेरे फ्रेंड्स जो होते हैं ना, मुझे अवॉइड करते थोड़ी टाइम मेरे साथ रहते हैं। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, एग्जाम था तो मेरे साथ आके बैठ गए कॉपी करने के लिए। फिर नेक्स्ट डे फिर से झगड़ा, ऐसे ही रोज ऐसा होता है दीदी। मैंने बात करना स्टॉप कर दिया, फिर वो आए और मुझे सॉरी मांगते, फिर झगड़ा करते हैं, ऐसा होता ही रहता है। मैं इसलिए जो होता है ऐसी शांति में रह रही हूँ, बस छोड़ रही हूँ सबको।
0: तो वो आपसे झगड़ा किस बात पे करते हैं, झगड़ा क्यों करते हैं?
2: सब कुछ दीदी, कुछ भी हो। मेरी लास्ट ईयर एक और फ्रेंड थी, वो फ्रेंड चली गई, इसलिए मैंने नया दोस्त बनाया। तो वो बोलते है कि लास्ट ईयर जो फ्रेंड थी उसके साथ रहती थी, अब वो चली गई इसलिए हमारे पास आ गए, ये क्यों करते हो?
0: अच्छा, तो वो ऐसा अगर सोचते हैं तो उनसे बोलो कि सभी मेरे दोस्त हैं और वो दोस्त मेरे यहाँ पे नहीं है, और आप लोग भी मेरे दोस्त हो, अगर कल को आपकी कोई दोस्त चली जाएगी तो क्या आप किसी और से बात नहीं करोगे? उनसे बात करके देखो, और फिर भी अगर आपको ऐसा लगे तो भुवना, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दोस्त आपको लाइफ में मिलेंगे, आगे मिलेंगे, कोई ना कोई अच्छा दोस्त आपको जरूर मिलेगा। हमें ना दोस्तों को चूज करने में बहुत पेशेंस रखना चाहिए।
2: हाँ,
0: है ना। कोई अच्छा दोस्त जो आपकी फीलिंग्स को समझे वो आपको जरूर मिलेगा, इसलिए कभी भी बुरा फील नहीं करना।
2: ठीक है दीदी।
0: ठीक है। हाँ आकाश, बताओ।
3: दीदी, मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ है। मैंने एक बच्चे को अपना फ्रेंड बनाया था, मुझे लगा कि ये मेरा सच में बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड बनेगा। तो मैं और वो दोनों हमेशा अपने साथ खेलते थे, भले वो मेरे से एक क्लास जूनियर ही था। लेकिन एक साल हो गए थे हम लोगों की फ्रेंडशिप को, हम लोग बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे का ख्याल रखते थे। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले अप्रैल में उसके साथ मेरी ऐसी अनबन हो गई। हम लोग बहुत दिन से उसका कहा हुआ गेम खेल रहे थे, मैंने कहा आज मेरा कहा हुआ गेम खेल लो, उसने बोला कि पहले तुम मुझे पकड़ के बता। मैंने बोला ठीक है। मैं आधे घंटे तक दौड़ा, लेकिन वो जब जाने लगा तब भी लेकिन भाग रहा था। मैंने उसको पकड़ तो लिया एंड टाइम पे, फिर कहता है नहीं यार आज ये वाला गेम खेल लेते, वैसे भी मेरे जाने का टाइम हो रहा है। मैंने बोला ठीक है, बुरा तो लगा था लेकिन मैंने बोला चलो दोस्त है जा रहा है इसलिए खेल लेते। फिर दूसरे दिन फिर उसने कहा कि मैं अभी खेलने के लिए तेरे साथ तैयार हूँ, तू मुझे पकड़ के बता। मैंने दूसरे टाइम भी उसको पकड़ लिया, लेकिन जब वो मेरे साथ नहीं खेला ना, तब दीदी दूसरी बार मुझे इतना हर्ट हुआ कि मैं बता नहीं सकता। उसके बाद से मैंने उससे बातचीत करना छोड़ दिया। फिर एक दिन मैं अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा था, तो वो बीच में आके बोलता है क्यों बे, सारी फुस्सी निकल गई मेरे को पकड़ने के नाम से। मैंने बोला नहीं भाई, मैं फुस्सी की बात नहीं है, तू मेरा अच्छा दोस्त है, मेरा मन नहीं है। तो उसने बोला हिम्मत नहीं है तेरे को मुझे पकड़ने की। मैंने दूसरी बार तीसरी बार भी उसको पकड़ लिया, लेकिन बार बार वो ऐसा बोला ना, तब से मैंने उसको छोड़ दिया। अभी करीब 2-3 हफ्ते हुए जा रहे, मैंने उसकी तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखा। मैं उससे बात करने की चाह अभी भी रखता हूँ, लेकिन वो मुझसे अभी तक बात नहीं करता।
0: देखो, आपको आकाश हर्ट हुआ, लेकिन एक चीज आपको पूरी जिंदगी में हमेशा याद रखनी है कि उकसाने की कोशिश हमें बहुत लोग करेंगे। आपके साथ इन फ्यूचर भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे ये करके दिखाओ, ये नहीं कर सकते क्या, इतना भी नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं है क्या। लेकिन इस तरह के वर्ड्स वही लोग यूज करते हैं जो आपसे वो काम करवाना चाहते हैं, और अगर आप वो काम कर देते हो तो समझो आप उनके आगे हार जाते हो। इसीलिए कोई भी कभी आपको किसी चीज के लिए उकसाए, जब तक आपको सही ना लगे आपको वो काम नहीं करना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी के कहने पर हमें वो काम नहीं करना चाहिए। इसीलिए अगर आपको कोई चीज परेशान करे तो जबरदस्ती कभी भी वो चीज नहीं करनी चाहिए। दोस्ती अगर आपकी सच्ची है तो वो कभी नहीं टूटेगी, किसी हाँ या ना से, किसी खेल को खेलने या ना खेलने से आपकी दोस्ती नहीं टूटेगी।
3: हाँ दीदी।
0: ठीक है आकाश।
3: हाँ दीदी।
0: और सैंडी।
1: दीदी, मेरे साथ बस एक बार हुआ था कुछ। मेरे घर पे कुछ पूजा थी, तो उस टाइम हमारे टेस्ट चल रहे थे।

0: स्कूल टेस्ट, मैं कुछ तैयार करके नहीं गया था, तो मेरे कुछ क्लास के फ्रेंड्स है, मैं उनकी हमेशा हेल्प करता हूँ, कभी कुछ भी टेस्ट हुआ कुछ भी हुआ उनकी मैं हमेशा हेल्प करता हूँ। तो उन लोगों को मैंने बोला था कि मेरी तैयारी नहीं हो पाई, घर पे पूजा थी, घर पे प्रोग्राम थे, तुम थोड़ी मुझे हेल्प कर देना। उन्होंने बोला ठीक है, पर उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की। तब मुझे बुरा लगा कि मैं इनकी हमेशा हेल्प करता हूँ, मतलब हमेशा इनका ध्यान रखता हूँ, फिर उन्होंने हेल्प नहीं की। फिर ये बात मैंने पंकज को बताई, पंकज ने बोला कोई बात नहीं, मैंने तो उसे नहीं किया। तो मैं बोला हाँ, फिर तब से मैं उनसे अभी भी इनकी हेल्प कर देता हूँ, पर उनसे उम्मीद नहीं करता कि मेरी हेल्प करेगी।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी हमारी तरह नहीं हो सकते, लेकिन इसके लिए हमें अपनी अच्छी क्वालिटीज को नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि कोई हमारा फायदा उठाए, लेकिन जब हम कर सकते हैं तो हमें दूसरों की मदद कर देनी चाहिए, और जब नहीं तो हमें दूसरों से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए।
2: हाँ जी,
1: जो कि सैंडी ने किया, बहुत अच्छी बात है।

0: अभी तो हमने कुछ फीलिंग्स की बात की जिन्होंने हमें हर्ट किया, क्या कोई ऐसी भी बात है जिसने आपको इमोशनली बहुत कनेक्ट किया हो, या आपको ऐसी चीज याद हो जब आप बहुत खुश हुए हो, किसी ने आपसे कोई ऐसी बात कही हो, या कोई ऐसी सिचुएशन आई हो जब टीचर्स ने या पेरेंट्स ने या किसी फ्रेंड ने ऐसा कुछ किया हो कि आपको बहुत खुशी मिली हो?
1: हाँ दीदी, हमारे स्कूल में एक लड़की है, वो बहुत बुरी है, कुछ भी नहीं करती, कॉपी करती रहती है, कुछ भी नहीं कहती और बैठी रहती है, और इतनी लेजी है कि कुछ नहीं करती, पढ़ती भी नहीं। सब टीचर्स में उसका बहुत बुरा इमेज है, तो सब टीचर्स मुझे बोलते हैं उसके पास बैठ जाओ, उसके पास बैठ जाओ। उसके पास बैठने से मुझे कुछ मस्ती कुछ भी नहीं मिलती थी, जिस फ्रेंड्स के साथ बैठने से मुझे इतना मस्ती, स्नैक्स देखने में एंजॉय कर सकते, लेकिन उसके बैठने के बाद कुछ बात नहीं कर सकते, ऐसी लेजी बैठी रहती है या सोती है बस। तो क्या हुआ, एक दिन मेरी सोशल टीचर प्रशांति मैम है, तो उन्होंने बोला तो चलो मैं, क्या हुआ उस दिन हम प्लेसेस चेंज कर सकते थे लंच ब्रेक का, तो मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ बैठ के, वो उसके फ्रेंड्स के साथ, तो मेरी टीचर ने बोला भावना उठो। मुझे इतना डर लग गया कि मुझे लगा टीचर मुझे पनिशमेंट देने वाली है, तो फिर बोला वो लड़की के नाम प्रवलिका है, तो

0: कि उठाया तो उनकी इतनी बुराई की उसको बुरा लगा होगा और मुझे बोला तो बूबना जैसी क्यों नहीं बन सकती। और उन्होंने मेरी इंस्पिरेशन दिखाई कि सारे लोग बूबना जैसी होनी है, सबको कुछ मैटर्स पे ऐसी नहीं चलती है और अच्छी पढ़ाई भी करती है। उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा कि टीचर मुझे अच्छी समझती है।
1: उस टाइम आपको अच्छा लगा कि टीचर्स आपको कितना अच्छा मानते हैं, और शायद यही रीजन भी है कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसके पास बैठने को आपके टीचर्स बोलते हैं, क्योंकि कहते हैं ना संग का रंग लगता है। तो शायद आपके पास बैठने से वो भी कुछ सीखे और उसमें भी कुछ इंस्पिरेशन आए और वो भी आगे कुछ कर पाए, क्योंकि छुपा हुआ हुनर तो हर किसी में होता है ना बोलना। और आकाश, ऐसी कोई बात अभी तक जो आपके साथ हुई हो, जब आप बहुत खुश हुए हो, दिल से आपको बहुत खुशी मिली?
2: दीदी, मुझे एक बार दिल से खुशी मिली थी कि जब मेरा एक बीच कंपटीशन था यहाँ शांतिवन में, तो मैंने जब उससे पहले वाला स्पीच भी मैंने अच्छा बोला था, लेकिन उस बीच में मैं रुक गया था जिसकी वजह से मुझे प्राइज नहीं मिल पाया था। और इस बार जब मैंने बोला तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। तो जो हमारी कोचिंग टीचर थी दीदी, वह जिन्होंने मुझे स्पीच लिख के दी थी उनको पसंद नहीं करती थी, मतलब कहती थी ये कैसी दीदी है, तुम बार बार उनके पास क्यों जाती हो, तुम्हें सिखाता कौन है, मैं सिखाती हूँ ना, तो उनके पास क्यों जाते हो। उन्होंने जब भी मेरे को टाइम मिलता था मैं उन दीदी के पास जाता था, वो मुझे अच्छे से स्पीच की प्रैक्टिस करवाती थी। एंड में जब प्राइज मिलने वाला था तो उन्होंने मेरा एक अलग से प्रोग्राम रखा था स्टेज पे, जो मैंने स्पीच वहाँ पे बोली थी वो स्पीच सुनाने का। तो उस समय मुझे इतना खुशी फील हुआ ना कि मन कर रहा था कि मैं झूम झूम के नाचूं। ऐसा कोई तो है जो मेरी इतनी केयर करता है, मेरी मम्मी पापा के अलावा कोई तो है जो मुझे अपना समझ।
1: अक्सर ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको बहुत सपोर्ट और अनकंडीशनल प्यार देंगे, लेकिन उसके लिए आपको अच्छा करते जाना है, जैसे कि आप स्पीच में अच्छा करते रहे, डेडिकेशन से आगे बढ़ना है, तो सपोर्ट करने वाले लोग आपको और भी मिलेंगे। ठीक है आकाश?
2: हाँ दीदी।
1: और सैंडी, आप बताओ।
3: दीदी, मुझे भी एक बार ऐसा हुआ था, जब 11th में था मैं, तो हमारे स्कूल में टीचर डे पे प्रोग्राम रखा गया था। सर ने मतलब अचानक से बोल दिया कि प्रोग्राम होगा, तो साइंस क्लास वालों ने सब तैयारी करी और सब ने स्पीच की तैयारी करी। हमारी क्लास से कोई नहीं था, तो हमारे एक सर है इकोनॉमिक्स के, उन्होंने मुझे आगे से बोला कि तुम्हारी क्लास से कोई स्पीच नहीं बोल रहा, तुम भी बोलो। सर ने मुझे सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया, बोले इसमें जो तुम तैयार कर सकते हो तैयार कर लो। अब उस 5 मिनट में मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूं क्या नहीं, जैसा ऐसा मैंने तैयार कर लिया। जब मेरी बोलने की बारी आई, शुरुआत करा और बीच का मुझे पता नहीं क्या बोला मैंने, और एंड करा ना, तब देखा था सब लोग तालियां बजा रहे हैं, पूरी क्लास पूरी स्कूल तालियां बजा रही है। फिर बाद में उस वक्त थोड़ी बारिश भी आ गई थी, फिर एंड हो गया था उस बात से। फिर सब लोगों ने मेरी तारीफ की, अच्छा बोला अच्छा बोला। फिर जो सर थे, जो सर ने मुझे बोला था, उन्होंने मुझे आगे से बोला क्लास में आके, उन्होंने मेरी तारीफ करी कि तुमने अच्छा बोला, मेरी उम्मीद पे खरा उतरे, तब मुझे बहुत अच्छा लगा था, तब बहुत खुशी हुई थी।
1: जब आपके सर ने आपकी तारीफ की तो आपको बहुत अच्छा लगा, और एक हिडन टैलेंट भी जो आपके अंदर था वो बाहर आ गया अचानक से।
3: हाँ,
1: है ना,
3: मुझे पता नहीं मैंने क्या बोला था।
1: कभी कभी ऐसा भी होता है, हमें पता नहीं होता हम किस चीज में अच्छे हैं, पर अचानक वो चीज आती है तो हम बहुत अच्छा कर जाते हैं। और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है?
3: कि हमें आगे बढ़ना चाहिए।
1: हाँ, और किसी भी चीज से घबराना नहीं चाहिए, ट्राई जरूर करना चाहिए, है ना। तो अप्रिसिएशन,
3: मैंने बस फर्स्ट बार स्कूल में पहली बार बोला था और पहली बार इतना अच्छा लगा मुझे।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है सैंडी, आपने बोला हो, और ये जो आपका हुनर है इसको आप कॉलेज में भी, स्कूल में, हर जगह आप आगे बढ़ाते रहिएगा।
3: हाँ जी,
1: ठीक है। पंकज, आपके साथ ऐसा कभी हुआ जब आपको बहुत अच्छा लगा?
4: हाँ दीदी, जब एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब मैं बहुत सीरियस था, मेरी तबीयत ज्यादा खराब थी, लेकिन उस टाइम मेरे सभी फ्रेंड्स मेरे लिए बहुत परेशान थे और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी कंपनी दी थी जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। सुबह से शाम तक, यहाँ तक कि रात के 11-11 बजे तक वो मेरे पास बैठते थे और मुझसे मस्ती मजाक किया करते थे, जोक्स मार के मुझे हंसाया करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं।
1: फ्रेंड्स तो हमारे लाइफ का सबसे अच्छा सपोर्ट होते हैं, क्योंकि जब टफ टाइम आता है तो इतना वो हमें प्यार देते हैं और मस्ती करते हैं कि वो गम को तो हम भूल ही जाते हैं।

0: हाँ दीदी
1: है ना, इसीलिए अच्छे फ्रेंड्स को हमेशा संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि ये जो फीलिंग है वो आप दूसरों को भी दे पाओ और दूसरों से हमेशा रिटर्न भी ले पाओ।
2: हाँ दीदी,
1: आज हमने बहुत सारी बातें की बच्चों की फीलिंग्स यानी भावनाओं के बारे में। अगली बार फिर से मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे और नन्हे मुन्ने और प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। अगले टॉपिक पे मिलते हैं बच्चों की दुनिया में, तब तक के लिए बाय बाय
3: बाय बाय।

तो अभी हमने सुना बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहो रेडियो पुनेरिया आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आठ मेरा तुम हो, स्वीट हार्ट मेरा तुम हो, ये मैं हूँ तुम्हारे दम से। यू टेल मी समथिंग एंड आई टेल यू समथिंग, खफा न रहो जी हमसे। दिल को लगाया ये तुम्ही ने सिखाया, आई थैंक यू वेरी वेरी मच, वेरी वेरी मच, वेरी वेरी मच मच मच मच। सच सच सच ओ डियर, सच सच आई लव यू वेरी मच।

गुलाब है दोनों खिलके, काहे को है बनी तू आजा मेरी हनी, लुटा तू चमन दिल के। गली उल्फत की ये गुल उल्फत का, आई थैंक यू वेरी वेरी मच, वेरी वेरी मच, वेरी वेरी मच मच मच। सच सच सच ओ डियर, सच सच आई लव यू वेरी मच, वेरी मच, वेरी मच।

0: रुक रुक मत जाना, आई वॉन्ट यू वेरी वेरी मच, वेरी वेरी मच, वेरी वेरी मच मच मच। सच सच सच ओ डियर, सच सच आई लव यू वेरी मच, वेरी मच, वेरी मच। सच सच सच ओ डियर, सच सच आई लव यू वेरी मच, वेरी मच, वेरी।
1: ओ डियर डियर आई लव यू, आई लव यू वेरी मच, वेरी वेरी वेरी मच मच मच। Oh dear, oh dear, oh don't fear, come here, oh dear.

0: लेकिन क्या बिगड़ा? मैंने नहीं, सब कुछ उसी ने बिगाड़ा है बेटा।
1: बुरा
0: क्या बताऊ, सब किस्मत के फेर है बेटा। लेकिन यही मेरे पास नौकर था, आज मैं इसका कर सकता, इसे छुपा छुपा भेजता हूँ।

0: जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम बाजू।

अनुराधा, ओ अनुराधा, क्यों री पगली? अरे इस तरह रोने से क्या होगा? ओ तुम आंसू पोंछ रही हो, मगर मुझे हिचकियों की आवाज तो सुनाई दे रही है। अच्छा सुनो, तुम्हें एक कहानी सुना, बहुत दिन हुए

मगर सबसे ज्यादा दुख जानती हो किसे हुआ था? अनुराधा जैसी एक राधा थी, बिचारी बिचारी रो रो कर कहती थी।

0: सुनार जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।

0: लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: नौ बरस लंबी थी ना।

चल रे अमीरन कई चल रे फकीरे चल रे अमीरन लग तक तक पक चल रे फकीरे जीबी चक धीरे धीरे बिड़ी बिड़ी बिड़ी बिड़ी बिड़ी बिड़ी बिड़ी मेरे ओ बंदरिया।

यूं शुरू हुआ है ये फसाना, हाय हाय, तेरा यूं नजर चुरा के जाना, हाय हाय, यूं शुरू हुआ है ये फसाना, हाय हाय।

रूठ के कहाँ चली ओ मेरी चंपा कली, पलट ए पलट ए पलट तेरा ध्यान किधर भाई, रूठ के कहाँ चली ओ मेरी चंपा कली, कब तलक फिरूंगा मैं इस तरह गली गली, तेरे बिना मेरे दिल की दिल में रही जाए, हाय हाय। यूँ शुरू हुआ है ये फसाना।

0: कबीर दिखाए
1: हाय हाय।
0: यूँ शुरू हुआ है ये फसाना हाय हाय, तेरा यूँ नजर चुरा के जाना हाय हाय। यूँ शुरू हुआ है ये फसाना हाय हाय।

लता जी लोग कहते हैं कि तुम्हें इतना मानती हैं लता जी, तुम्हें उस्ताद समझती हैं, तुम्हें प्यार करती हैं, ये सब मैं समझती हूँ उनका बड़ापन है ना। लता तो लता है, लता जी की तरह मेरी नजर में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। लता जी को अल्लाह ने आवाज दी है, इन लोगों को उनके वालिद साहब से मिला, खुदा की तरफ से उनके कर्म है।

0: आजादी है।
1: क्या कहती हो?
0: आजादी आजादी है।
1: नहीं नहीं सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

мускудай. Прилетела мускудай. Прилетела мускудай.